103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये एफएम शिमला है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 25 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण, 6 बजने को है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इखलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर

0: Mumbai Indians posted 166 for 7 in 20 overs, riding on Tilak Varma's 57 off 42 balls. Today, Punjab Kings will face Delhi Capitals at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। इस समय सुबह के 6:10 हुए हैं, तो आइए करते हैं आज के इस दिन की मंगलमय शुरुआत भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम हिमांजलि के साथ। कार्यक्रम का शुभारंभ आइए करते हैं इस गणपति वंदना के साथ। चल रहा हूँ धूप में तो विनायक तेरी छाया है, शरण तेरी सच्ची है, बाकी सब मोह माया है।

आज सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, तो आइए इस गणपति वंदना के बाद अब आराधना करते हैं भोलेनाथ शिवशंकर की। जी हाँ, जब ना सूझे कोई उपाय तो दिल से कहिए ओम नमः शिवाय।

भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हेमांजलि सुन रहे हैं आप हमारे साथ एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं माता की ये भक्ति भेंट।

0: माता की इस भक्ति भेंट के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।
1: सात सुरों का बहता सागर, सबको कराए अमृत पान, संतों ने सुर के ही द्वारा जग को दिया है दिव्य ज्ञान। स्वर संगीत और काव्य में हृदय वीणा के तार झंकृत करने की अद्भुत और महान शक्ति है। कबीरदास, तुलसी, सूर, रसखान, रैदास और मीराबाई ने अपने भावभीने भजनों द्वारा भक्तिभाव की ऐसी रसवर्षा की है जिसमें भीख कर प्राणी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री राधा रास बिहारी के श्री चरणों में अपना मन लगा सकता है तथा त्रिविध तापों से जर्जरित अंतःकरण के विविध मल को जलाकर उसे स्वर्ण की भांति परिष्कृत और शुद्ध बना सकता है।

आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं FM शिमला की एक और भक्तिमयी प्रस्तुति, मानस गान। गायन स्वर हैं लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और साथियों के। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी ने कलयुग की चारित्रिक विशेषताओं का प्रसंग छेड़ दिया है, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी आंखों देखा ही नहीं अपितु बहुत कुछ भोगा भी था। कलिकाल वैसे तो पाप और अवगुणों का युग है, किंतु उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण की प्राप्ति भी है। वो ये है कि कलिकाल में बिना परिश्रम के ही भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। लीजिए अब पेश है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 93,176 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 78,150 उत्तीर्ण हुए हैं। परिणाम 83.87% रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10वीं की परीक्षा में सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने असफल विद्यार्थियों को निराश न होने और नए संकल्प व कड़ी मेहनत के साथ दोबारा तैयारी करने के लिए प्रेरित भी किया। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनता में अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुकी है। पालमपुर में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया है और केवल झूठे आश्वासन दिए हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी व गवर्नेंस विभाग को ई गवर्नेंस की दिशा में किए गए नवाचारों और नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विभाग के सचिव आशीष सिंगमार और निदेशक निपुण जिंदल ने शिमला में मुख्यमंत्री को ये पुरस्कार भेंट किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने बेसहारा

0: बिच्छू, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पालमपुर में चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पालमपुर शहर का विकास ठप है। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होगा। एफएम न्यूज हेडलाइंस के संग में इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। सुबह के 7 बजने को हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की

0: ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकुम शर्मा की है।
2: बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक जुआरी रहा करता था। वो एक दूषित प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उस व्यक्ति ने कपटपूर्ण ढंग से जुए में ढेर सारा धन जीता। उस धन से उसने अनेक स्वर्णाभूषण खरीदे और उन्हें लेकर अपनी प्रेयसी के घर की ओर चल पड़ा। वो जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था, अतः तेजी से दौड़ने लगा। अचानक उसका एक पांव एक नीची जगह पर जा पड़ा, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वो औंधे मुंह भूमि पर जा गिरा। मस्तक में गहरी चोट आने के कारण उसकी चेतना जाती रही। उसका सारा सामान भूमि पर बिखर गया। जब उसे होश आया तो उसे पश्चाताप होने लगा कि एक स्त्री से मिलने के लिए वो इतना अधीर क्यों हो रहा था। उसके मन में वैराग्य पैदा हो गया। उसने भूमि पर बिखरी सामग्री एकत्रित की, मन में बड़े शुद्ध भाव लिए। वो एक शिव मंदिर में पहुंचा और सारी सामग्री शिवलिंग को समर्पित कर दी। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसे यमदूत यमलोक में ले गए। वहां उसे चित्रगुप्त के समक्ष पेश किया गया। चित्रगुप्त ने उसके सारे जीवन का लेखा जोखा पढ़कर उससे कहा, अरे मानव, तेरा सारा जीवन तो पाप कार्यों में ही बीता है। तुमने तो असंख्य पाप किए हैं, जिनका परिणाम तुझे नर्क में रहकर चिरकाल तक भोगना पड़ेगा। तब उस ज्वारी व्यक्ति ने कहा, आपका कहना सत्य है भगवान, निश्चय ही मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और ये भी निश्चित ही है कि उन पापों की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। पर मेरे द्वारा किए गए किसी पुण्य कार्य पर भी विचार करें, संभव है कि मेरे द्वारा कभी कोई पुण्य कार्य भी किया गया हो। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा एक बार फिर से देखा और बोले, हाँ, तुमने मरने से पूर्व एक बार थोड़े से पुष्प और कुछ सुगंध भगवान शंकर को अर्पित किए थे। इसके फलस्वरूप तुम कुछ देर के लिए स्वर्ग जाने के अधिकारी बन गए हो। तुम्हें 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का शासन और इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा। अब बताओ, तुम पहले अपने पुण्य का फल चाहते हो या अपने पापों का? जुआरी बोला, हे देव, नरक में तो मुझे बहुत लंबे समय तक रहना है, पहले मुझे स्वर्ग का सुख भोगने के लिए भेज दीजिए। तब यमराज की आज्ञा से उस जुआरी व्यक्ति को स्वर्ग भेज दिया गया। इंद्र के जाते ही वो जुआरी स्वर्ग का राजा बन गया। उसने मन में विचार किया, बस अब भगवान शंकर की शरण में जाने के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं जिससे मेरा उद्धार हो सके। अतः उसने उन्मुक्त ढंग से अपने अधिकृत पदार्थों का दान करना शुरू कर दिया। उसने इंद्र का एरावत हाथी महर्षि अगस्त्य को दान कर दिया, उच्चेश्वा घोड़ा विश्वामित्र जी को दे डाला, कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दान कर दी, चिंतामणि रत्नमाला महर्षि कालब को भेंट कर दी, कल्प वृक्ष

डिन ने मुनि को समर्पित कर दिया। इस प्रकार जब 3 घड़ियां समाप्त हुई तब तक वो मुक्त हस्त से दान करता गया। जब इंद्र लौटकर आए तो सारी अमरावती ऐश्वर्य विहीन हो चुकी थी। वो बृहस्पति जी को लेकर यमराज के पास पहुंचे और उन पर क्रोधित होते हुए कहने लगे, धर्मराज, आपने मेरा पद एक जुआरी को देकर बहुत अनुचित कार्य किया है। उसने तो वहाँ की सारी बहुमूल्य वस्तुएं दान कर दी, मेरी अमरावती को तो ऐश्वर्य विहीन कर दिया है। यह सुनकर धर्मराज ने उत्तर दिया, देवराज इंद्र, आप बूढ़े हो गए हैं किंतु अभी तक आपकी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई। उस जुआरी का एक पुण्य आपके 100 यज्ञों से भी कहीं अधिक महान है। जो लोग प्रमाद में ना पड़कर सत्कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं उन्हीं का जीवन धन्य होता है। आपके लिए अब यही उचित रहेगा कि आप उन ऋषियों को धन देकर या उनके चरणों में गिरकर विनयपूर्वक आग्रह करके उनसे अपने रत्नों को मांग लें। वे सब लोग दयालु हैं, मुझे विश्वास है कि वे आपके पदार्थ अवश्य लौटा देंगे। इंद्र वापस अमरावती लौट गए और उन्होंने उन ऋषि मुनियों से प्रार्थना कर फिर से वे वस्तुएं प्राप्त की। उस जुआरी व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन हुआ। उस जुआरी व्यक्ति ने अगले जन्म में दानव कुल में जन्म लिया। दानव कुल में जन्मा वो पूर्व जन्म का पापी जुआरी कोई और नहीं, महादानी विरोचन का पुत्र बलि था, जो अपने पिता से भी बढ़कर दानी सिद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने जब वामन के रूप में उससे 3 पग धरती दान में मांगी तो उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया। यहां तक कि जब वामन ने 2 पगों में समूचे आकाश और पाताल को नाप लिया तो 3रे पग के लिए उसने अपना शीश ही प्रस्तुत कर दिया था।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकुम शर्मा की थी। ...103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आइए आपको बता दें आज की FM हाइलाइट्स।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 7:15 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे जानकारी और मनोरंजन से लबरेज हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग शिमला। सात बजकर 57 मिनट, 8:30 और 9:57 पर एफएम शिमला से आप सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस और समाचार प्रभात के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। हम आपको लेकर चलेंगे ठीक 8 बजे। लौटेंगे एफएम शिमला पर और सुनवाएंगे आपको लोक संगीत 8:32 पर। आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे कानून की बात और 9 बजे हिंदी वार्ता।

किसी खास खूबसूरत जगह की सैर पर आज फिर आपको लेकर चलेंगे कुदरत के रंग कार्यक्रम में 9:30 पर। 10 बजे फिल्म संगीत के तहत हम आपको सुनवाएंगे कुछ बेहतरीन फिल्मी गीत।

ग्यारह बजे कुछ यादगार सदाबहार गीत आपको हम सुनवाएंगे। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम रहेगा 11:05 पर। 11:30 पर आप सुनेंगे हमारे साथ पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। महिलाओं का खास पसंदीदा महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:20 पर। और दोपहर 1:10 पर सुनवाएंगे आपको मस्ती भरे कुछ फिल्मी गाने, म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम।

दोपहर 2 बजे सुनिएगा हमारा नॉन फिल्मी प्रोग्राम सब रंग और 2:30 पर शिखरों के स्वर। युवाओं का खास कार्यक्रम युववाणी लेकर आएंगे 3:30 पर और 4 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत में कुछ बढ़िया बढ़िया से प्यारे प्यारे से गीत।

शाम 4:20 से लेकर 7:05 के दरमियान आप आनंद उठाएंगे विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों का, और 7:10 पर सुनना ना भूलें कृषि जगत कार्यक्रम। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे, और 9:15 पर आपके लिए हम पेश करेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। कौन सी है हमारी आज की फिल्म, जानने के लिए रहिएगा हमारे साथ 103.7 शिमला एफएम पर। 9:30 पर फिल्म संगीत में कुछ बेहतरीन गीत आप सुनेंगे, और 10 बजे चंद दिलकश गजलें हम आपको सुनवाएंगे। 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे कार्यक्रम। तो ये थी जानकारी एफएम शिमला से आज पेश किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। और अब एफएम शिमला पर वक्त हो चला है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला का।

हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम टू एफएम शिमला। जी हाँ, आपके चहेते एफएम शिमला पर आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से खुशनुमा सुबह में, जहां पर फिर एक बार हम आपसे मुखातिब हैं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग शिमला। तो लिसनर्स, आज के इस प्रोग्राम में रोज ही की तरह हम करेंगे बातें प्यारी प्यारी, ढेर सारी कुछ लवली सॉन्ग्स, और साथ ही आपको देंगे कुछ रोचक जानकारी। तो बस कहीं नहीं जाना है आपने, आप तो बस यूं ही रहिए हमारे साथ एफएम शिमला पर, सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए। एफएम शिमला पर आज का ये हसीन सफर आप इंजॉय करेंगे अपनी दोस्त रेडियो एंकर वीना नरवाल के साथ। तो लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम का ये फर्स्ट म्यूजिकल नंबर।

बटवारा फिल्म का ये लवली सॉन्ग आपने सुना। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। वेल, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। यकीनन बिना तकलीफ, बिना प्रयास या बिना कोशिशों के कभी भी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है। कामयाबी की दरकार है लगातार कोशिशें और दृढ़ संकल्प। तो माय डियर लिसनर्स, अगर आपका भी मकसद है ज़िंदगी में कामयाब होने का, तो मेहनत करने को तैयार हो जाइए। रफ्तार भले ही कम हो, पर चलते रहना ज़रूरी है। तो बस चलते जाइए सही राह पर, भरोसा कीजिए अपने बढ़ते हुए कदमों पर, बढ़ाइए अपने आत्मविश्वास को और कीजिए हासिल वो कामयाबी जो सबको लगता है कि आपसे नहीं होगा। वेल, आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ लिसनर्स, आज है 11 मई, साल का 131वां दिन है आज, और इतिहास में इस दिन के नाम पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि आपको जानना चाहिए, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। साल 2000 में 11 मई के दिन ही भारत की आबादी ने 1 अरब का आंकड़ा छू लिया था, जब नई दिल्ली में जन्मी एक बच्ची को देश का 1 अरबवां नागरिक करार दिया गया था। इसके अलावा 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था। और भी कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो कि आज के दिन को खास बनाती हैं। आपको हम बताएं कि 1784 में अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच में संधि हो गई थी। 1833 में अमेरिका से क्यूबेक जा रहे जहाज लेडी ऑफ द लेक के हिमखंड से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूबने से 215 लोगों की मौत हो गई थी। 1940 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की थी, और 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। बात करें 1962 की, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान लिया था। 1965 में बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान में 17,000

लोगों की मौत हो गई थी और 1988 में फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया था। इसके अलावा आपको हम बता दें कि आज का जो दिन है नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है हर साल यानी कि आज ही के दिन 11 मई को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को मनाने के लिए मनाया जाता है। आज के दिन यानी कि 11 मई को देश जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहा है, जो कि उपमहाद्वीप की तकनीकी प्रगति की याद दिलाता है। ये कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो आज के दिन को खास बनाती हैं, और इन घटनाओं के बारे में जब भी जिक्र होता है हमें जानने को मिलता है तो हमारी जो नॉलेज है उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है। और हमारे इस प्रोग्राम में जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी हम आपको देते हैं, तो चलिए चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ। और

ये कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो आज के दिन को खास बनाती हैं, और इन घटनाओं के बारे में जब भी जिक्र होता है हमें जानने को मिलता है तो हमारी जो नॉलेज है उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है। और हमारे इस प्रोग्राम में जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी हम आपको देते हैं। तो चलिए चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ, और अब आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम में एक और लवली म्यूजिकल नंबर। तेजाब फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही रहिए हमारे साथ FM शिमला पर।

वेल, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी। और ये बात जो है 100% ही सच है कि हमारी सेहत जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बेहतरीन साथी भी। अगर इसका साथ छूट जाए तो इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। अगर सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बस अपनी सेहत का सबसे पहले आपको ख्याल रखना है, और उसके लिए अच्छा खाना पीना यानी कि हेल्दी डाइट और डेली एक्सरसाइज के अलावा पॉजिटिव होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आए दिन हमारी लाइफ में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता रहता है। लाइफ में कई तरह के रंग दिखाती है, हर रोज़ किसी नए एक्सपीरियंस से हमें गुजरना होता है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं पॉजिटिवली चीज़ों को देखें, सोचें, समझें और हर सिचुएशन में पॉजिटिवली रिएक्ट करें। तो सिचुएशंस कैसी भी हों, खुद को हेल्दी और पॉजिटिव बनाए रखिए, देखिएगा ज़िंदगी खुशहाल और आसान लगने लगेगी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं अपना चहेता रेडियो स्टेशन 103.7 FM। सुनिए प्रोग्राम का एक और लवली सॉन्ग।

आज है मंडे और मंडे मॉर्निंग जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक और उम्मीदों से भरी हुई होती है, क्योंकि वीकेंड के बाद कुछ न्यू प्लान्स और न्यू अचीवमेंट्स की तरफ हमें बढ़ना होता है। तो ऐसे में माइंड भी एकदम एक्टिव और अलर्ट रहता है। तेज़ कदमों से हम जो है अपने लिए लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त अगर आप भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं तो हम आपको गुड लक विश करते हैं जो भी आपके आज के दिन भर के प्लान्स हैं उन सब के लिए। और घर से बाहर अगर आप जा रहे हैं तो मौसम का भी थोड़ा सा जायज़ा एक बार ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि पहाड़ों में कल रात से तेज़ हवाएं चल रही हैं और हल्की फुल्की बारिश भी सुबह से ही हो रही है। तो ऐसे में ठंड भी कुछ ज़्यादा हो गई है, तो ख्याल रखिए और फिर कीजिए वही जो कि आप करना चाहते हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ FM शिमला पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। और अब बारी है आज के प्रोग्राम के इस आखिरी गीत की।

0: तो लिसनर्स, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद यानी कि ठीक आज 8 बजे समाचार प्रभात के लिए हम आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज। एफएम शिमला पर लौटकर लोक संगीत आपको सुनवाएंगे 8:32 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे कानून की बात और 9 बजे हिंदी वार्ता। 9:30 पर कुदरत के रंग प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आएंगे और 10 बजे सुनना ना भूलिएगा फिल्म संगीत। और एफएम शिमला पर अब वक्त हो चला है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा। ऊना जिले में पंचायत चुनाव में 379,459 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। भाजपा ने सोलन नगर निगम चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 4 कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता निलंबित की है। भाजपा ने कहा है कि पार्टी संगठन, विचारधारा और अनुशासन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 93,176 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 78,150 उत्तीर्ण हुए हैं। परिणाम 83.87% रहा है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की मेरिट सूची में कुल 107 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है, जिनमें 83 छात्राएं और 24 छात्र शामिल हैं। कांगड़ा जिला के निजी स्कूल पहाड़ा की छात्रा अनमोल ने 700 में से 699 अंक लेकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10वीं की परीक्षा में सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने असफल विद्यार्थियों को निराश न होने और नए संकल्प व कड़ी मेहनत के साथ दोबारा तैयारी करने के लिए प्रेरित भी किया। डिजिटल टेक्नोलॉजी व गवर्नेंस विभाग को ई गवर्नेंस की दिशा में किए गए नवाचारों और नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विभाग के सचिव आशीष सिंघमार और निदेशक निपुण जिंदल ने शिमला में मुख्यमंत्री को ये पुरस्कार भेंट किए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सिरमौर जिला में ज़रूरतमंद लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़रूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत जिला में करोड़ों रुपए की राशि पात्र लोगों को आवंटित की जा चुकी है। एफएम न्यूज़ हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 8 बजने को है समाचार प्रभात के लिए, आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजों में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ

0: लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल है। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
5: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
6: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक

0: राजपूत, चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 011-23-01-04-81, 011-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, TVK प्रमुख विजय ने ली CM की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं

खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid the West Asia crisis. Prime Minister Modi to participate in Somnath Amrit Parv in Gujarat today to also inaugurate Sardar Dham Hostel in Vadodara. Assam Governor invites Hemant Biswa Sarma to form new government in the state. Uttarakhand administration urges Chardham Yatra pilgrims and tourists to remain alert and travel safely amid adverse weather conditions. US President Donald Trump rejects Iranian response to US peace proposal as totally unacceptable. And in football, India to take on host China in crucial quarterfinal match in AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 8:30 हुए हैं, लीजिए पेश हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
2: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। उन्होंने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज IPL मुकाबले में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमों के बीच मुकाबला होगा। हालांकि इस रोमांचक मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है। लगभग 22,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में यह मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सिरमौर जिला में ज़रूरतमंद लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़रूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत जिला में करोड़ों रुपए की राशि पात्र लोगों को आवंटित की जा चुकी है। उत्तराखंड प्रशासन ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सावधान रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से आग्रह किया है कि उन्हें यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताज़ा जानकारी और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होगा। ऊना जिले में पंचायत चुनाव में 3,79,459 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में परिवर्तन हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में रात भर बारिश हुई, जबकि जनजातीय जिलों की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने आज से निचले मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है, जबकि 12 व 13 मई को चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। FM न्यूज़ हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।

आशा कंवर की आवाज में अभी आपने ये लोकगीत सुना। कार्यक्रम का अगला लोकगीत लीजिए अब सुनिए रेणु भारद्वाज और साथियों की आवाजों में।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 8:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानून की बात। कार्यक्रम में आज का विषय है विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्रदान करने की योजना। इस विषय पर विशेषज्ञ विक्रांत कौंडल, अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से बातचीत कर रहे हैं श्रीमती सपना ठाकुर।
1: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं प्रदान करने की योजना विषय पर। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं विक्रांत कौंडल जी। आप अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी हैं। विक्रांत कौंडल जी, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: विक्रांत जी, जैसा कि आज का विषय है आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं प्रदान करने की योजना, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है।
2: जी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो व्यक्ति किसी भी आपदा से प्रभावित होता है उसको तत्पर जो भी सहायता चाहिए
1: जी,
2: उस सहायता को पहुँचाने में जो भी कार्रवाई की जाती है वो उस तक जल्द से जल्द पहुँच सके, ये इसका मेन उद्देश्य है
1: जी। इस योजना के अंतर्गत किन लोगों को लाभ प्राप्त होता है?
2: इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है जो कि किसी भी प्रकार की आपदा से ग्रसित है। आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मैनमेड हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं का अगर हम जिक्र करें तो बाढ़, भूकंप, आगजनी, भूस्खलन आदि, और अगर हम मैनमेड आपदाओं का एग्जाम्पल लें तो जैसे कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो जाता है या फिर कहीं भी कोई भी ऐसी फैक्ट्री में कोई आग लग जाती है जिसमें हमारी प्रॉपर्टी और लोगों का नुकसान होता है, तो इस तरह के जो भी डिजास्टर होते हैं उसमें जो भी सेवाएं या सुविधाएं उस वक्त लोगों को एकदम से चाहिए होती हैं तो उन लोगों तक पहुँचना हमारा एक उद्देश्य होता है
1: जी। विक्रांत जी, विधिक सेवा प्राधिकरण क्या सहायता प्रदान करते हैं आमजन को?
2: ये विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में बता पाऊँ
1: जी,
2: तो जैसे हम अगर भारत देश की बात करें तो हमारा जो भारत देश है वो एक वेलफेयर स्टेट है और हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, तो हमारे पास संविधान है और संविधान में हमारा एक आर्टिकल 39A है जो कि ये मैंडेट सरकारों को देता है कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए बनाएंगे जो कि उनको एक समान न्याय और फ्री लीगल एड की सुविधा उपलब्ध करा सके। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने सेंट्रल लेवल पे एक एक्ट को पास किया जिसको हम कहते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ये फोर्स में आया था 9 नवंबर 1995 को
1: जी।
2: तो इस एक्ट के अंदर ऐसे प्रावधान डाले गए हैं जिसमें कि ये जो लीगल सर्विसेज है इसको किस तरह से हमारे नागरिकों तक पहुंचाना है उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। उसी में सेंट्रल लेवल में हमारा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक प्राधिकरण है और उसी तरह से हर स्टेट्स में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के नाम से प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार से जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी काम कर रही हैं और सब डिविजनल लेवल पर तालुका लीगल सर्विसेज कमिटीज काम कर रही हैं। ये सब जो हैं ये एक साथ जुड़ी हुई होती हैं और नालसा की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन इनके द्वारा किया जाता है। आज जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं वो भी उन स्कीम्स में से एक ही स्कीम है
1: जी। विक्रांत जी, जैसे कि बात हो रही है विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं प्रदान करने की योजना, आपदा के समय इस योजना को कैसे लागू किया जाता है?
2: आपदा की स्थिति में जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वो जहाँ जहाँ राहत शिविर लगे होते हैं वहाँ हम विधिक सहायता शिविर आयोजित करते हैं। इन शिविरों के माध्यम से हम वहाँ पर रह रहे लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराते हैं और जो सरकार द्वारा उनको सहायता प्राप्त करने के लिए योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनकी सूचना उनको देते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए जो भी कार्यवाही करनी है, जैसे कुछ एप्लीकेशन लिखनी है या कहीं कोई ऑनलाइन अप्लाई करना है, उस सब के लिए हम उनका सहायता करते हैं
1: जी। क्या इस योजना के अंतर्गत कोई शुल्क देना पड़ता है?
2: नहीं, ये पूरी तरह से निशुल्क योजना है
1: जी। पीड़ित इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं?
2: जो भी पीड़ित व्यक्ति है, आपदा से प्रभावित व्यक्ति है, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं। ये जो प्राधिकरण है ये हर जिला में स्थापित है और हमारा एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है 15100, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राहत शिविरों में लगाए गए जो विधिक साक्षरता शिविर हैं वहाँ भी आप जा सकते हैं और अपनी जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं।
1: विक्रांत जी, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस योजना का संचालन कौन करता है?
2: जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी सेंट्रल लेवल की जो प्राधिकरण है उसको हम शॉर्ट में नालसा कहते हैं, जो कि है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। उसी द्वारा ये सारी जो योजनाएं हैं इसका संचालन किया जाता है।
1: अगर कोई आपदा आ जाती है तो आपदा पीड़ितों को मुआवजा प्राप्त करने में कैसे सहायता दी जाती है?
2: विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ितों को मुआवजा योजनाओं की जानकारी देते हैं, आवेदन भरने में सहायता करते हैं तथा आवश्यक होने पर संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं।
1: जी, तो क्या इस योजना के तहत केवल न्यायालयीन सहायता ही दी जाती है?
2: जी नहीं, इस योजना के तहत अगर कोई न्यायालय से बाहर भी कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी हम मेडिएशन, जिसको हम मध्यस्थता कहते हैं, उसके द्वारा सुलझाने में मदद की जाती है, या कॉन्सिलिएशन जिसको हम सुलह कहते हैं, उस द्वारा भी लोगों की समस्याओं को सुलझाने में काम किया जाता है।
1: तो लोगों को जागरूक करने के लिए क्या इस योजना में कानूनी जागरूकता भी शामिल है?
2: जी हाँ, हम बहुत से कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन करते हैं जिसमें कि अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है और उनको अधिकारों के बारे में बताया जाता है
1: ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और लाभ प्राप्त कर सकें। विक्रांत जी, और अब बात आती है कि इस योजना में स्वयं सेवकों की क्या भूमिका होती है, जो वॉलंटियर्स होते हैं?
2: जी, उनकी भूमिका बहुत अहम होती है क्योंकि जो भी प्राधिकरण हमारा काम कर रहा है वो ग्रास रूट पर, हमारे जो ग्रास रूट में काम करने वाले वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा ही लोगों तक पहुंच रहा है। हमने अपने इस स्कीम में पैरालीगल वॉलंटियर्स को नियुक्त किया हुआ है। उनको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी है कि जब भी कभी डिजास्टर की स्थिति उत्पन्न कहीं भी होती है तो वो जो भी व्यक्ति है उसे, जो आपदाग्रस्त हैं, उनके पास जाकर उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हमारे प्राधिकरण तक पहुंचाएं। ये एक तरह से वो आपदा प्रभावित व्यक्तियों के बीच में और हमारे प्राधिकरण के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं।
1: और हेल्पलाइन के बारे में आपने बताया, फिर भी आपसे जानना चाहेंगे क्या सुविधा रहती है अगर एकदम से कोई आपदा आ जाती है और आमजन सहायता चाहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हेल्पलाइन नंबर क्या है और कैसे उनको डायल करना है, क्या करना है?
2: जी, हेल्पलाइन नंबर आप किसी भी लैंडलाइन या मोबाइल फ़ोन से डायल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वो है 15100। इसमें आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और वो आपको आगे की कार्रवाई का जरिया बताएंगे।
1: जी, और आपदा के बाद पुनर्वास में इस योजना की क्या भूमिका रहती है?
2: जब भी कहीं आपदा आती है तो उसके बाद रिहैबिलिटेशन, जिसको हम पुनर्वास कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अभी हमने हिमाचल में ही देखा, कुल्लू, मंडी और कई ऐसे क्षेत्र थे जहां आपदा ने काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, कई लोगों की जान माल का नुकसान हुआ, कईयों के पास तो जो घर थे वो भी बह गए और जो ज़मीन थी वो भी नहीं रही। ऐसी स्थिति में अब उनको जो सरकार द्वारा मुआवजा राहत राशि प्रदान की जा रही है उसको प्रदान करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया होता है। जैसे उनको अप्लाई करना होता है, कंसर्न्ड पटवारी से रिपोर्ट लेनी पड़ती है, तो उसके लिए आम एक गाँव में रहने वाले नागरिक को इतना पता नहीं होता है कि उसने कहाँ जाना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ से वो मिलेगा
1: जी।
2: तो उस तरह की सहायता के लिए जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं वो उनकी सहायता करते हैं, वो उनको फॉर्म भी मुहैया करवाते हैं, उनको भरने में भी मदद करते हैं और कंसर्न कार्यालय में जमा करवाने में भी मदद करते हैं। और जब ये सब चीज़ें हो भी जाती हैं और उनको पुनर्वास वो मिल भी जाता है, उसके बाद भी अगर कोई समस्या उनको आ रही होती है तब भी वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।
1: कुंडल जी, जैसे कि हमारा एक विशेष वर्ग आता है, बच्चे और महिलाएं, तो बच्चों और महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान रहता है इस योजना के अंतर्गत?
2: जी, जैसे कहीं आपदा हो गई तो वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कई परिवार के जो मुखिया होते हैं, माता पिता होते हैं, वो काल का ग्रास बन जाते हैं, तो जो उनके बच्चे होते हैं उनको संभालने की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण देने में जो भी प्रोसीजर अपनाना पड़ता है वो जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो उसमें सहयोग करती हैं। जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं वो इसकी जिम्मेदारी उठाती हैं और बच्चों को जहाँ भी सेफ रखना होता है वो वहाँ तक उनको पहुँचाया जाता है।
1: जी, और जिस

0: योजना की हम आज बात कर रहे हैं, क्या ये योजना सभी प्रकार की आपदाओं पर लागू होती है?
1: जी हाँ, यह योजना जैसे मैंने बताया था प्राकृतिक और मानव निर्मित हर प्रकार की आपदाओं पर लागू होती है।
0: जी, क्या प्रवासी श्रमिक भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं?
1: जी हाँ, आपदा से प्रभावित अगर कोई भी प्रवासी श्रमिक है तो उसको भी वही सहायता मिलेगी जो एक आम नागरिक को मिल रही है।
0: जी, और यदि दस्तावेज खो जाएं तो क्या सहायता दी जाती है?
1: जैसा मैंने आपको बताया, अगर किसी को दस्तावेज बनाने के लिए फिर से उसको अप्लाई करने के लिए सहयोग चाहिए, कोई फॉर्म भरना है या किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने में सहायता चाहिए, तो वो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और हमारी अथॉरिटीज उसमें काम करती हैं।
0: कुंडल जी, जैसे बात हो रही है आपदा योजना की, तो बीमा दावों में कैसे मदद की जाती है?
1: जैसे कहीं भी आपदा आती है तो उस वक्त प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है और इंसान की जान भी जाती है, तो इंश्योरेंस क्लेम्स जो होते हैं वो भी एक तरह से मायने रखते हैं क्योंकि उसे लोगों को सहायता मिलती है। तो
0: जी
1: इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है, आपको कंपनी में अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम ऐसे व्यक्तियों की सहायता करते हैं अप्लाई करने के लिए, जो भी फॉर्म भरने होते हैं जिस भी कार्यालय में उनको अप्लाई कराना होता है वो हमारा प्राधिकरण उनकी मदद करता है।
0: जी और सबसे बड़ी बात आती है कि जब आपदा आती है तो क्या इस योजना के अंतर्गत मानसिक या मनोवैज्ञानिक सहायता भी दी जाती है? क्योंकि जिनका घर बार बिखरता है तो वो मानसिक रूप से भी पीड़ित हो जाते हैं, तो इस तरह की भी सहायता दी जाती है?
1: अगर हम मुख्यतः बात करें तो यह योजना विधिक सहायता पर केंद्रित है, लेकिन जैसे ही आवश्यकता पड़ती है, कई स्पेशल केस होते हैं, तो अन्य एजेंसियों के साथ भी हम समन्वय कर लेते हैं और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं।
0: जी, तो क्या ये योजना दूरस्थ क्षेत्रों में भी लागू होती है?
1: हाँ जी, ये जो हमारे इंटीरियर एरियाज हैं उसमें भी ये बिल्कुल इक्वली ही इम्प्लीमेंट की जाती है।
0: जी, क्या पीड़ितों को अदालत में जाने की आवश्यकता होती है?
1: हर मामले में अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, कई मामलों का समाधान मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से अदालत से बाहर ही हो जाता है।
0: तो इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं?
1: इसमें हम विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करते हैं, कई हमारे पोस्टर्स हैं, रेडियो और टीवी के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, सोशल मीडिया अभियान चलाते हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ हम समन्वय स्थापित करके लोगों को इसके बारे में बताते हैं।
0: क्या इस योजना में अन्य विभागों के साथ समन्वय होता है?
1: जी बिल्कुल,
0: जी
1: जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन सब के साथ हमारा समन्वय रहता है।
0: इस योजना का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है?
1: बिल्कुल है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य और जिला स्तर पर योजनाओं की जो प्रगति है उसका सुपरविजन या मॉनिटरिंग की जाती है और समय समय पर रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं।
0: क्या इस योजना के तहत कौंडल जी विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं?
1: जी हाँ, विशेष परिस्थितियों में विशेष अभियान जैसे लोक अदालतें, सहायता शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक पीड़ितों को लाभ मिल सके।
0: जी, कुंडल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस योजना में डेटा संग्रहण और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था है?
1: जी, पीड़ितों का जो विवरण होता है या मामलों की जो प्रकृति है, दी गई सहायता या परिणामों का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है जिससे योजना की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।
0: क्या तकनीक का उपयोग इस योजना में किया जाता है?
1: जी, ऑनलाइन पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हेल्पलाइन या डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जाता है।
0: क्या ये योजना अंतर विभागीय समन्वय पर आधारित है?
1: जी हाँ, इसमें जैसे मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए, पुलिस, हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट या पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं, इन सब के साथ समन्वय किया जाता है।
0: विक्रांत जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस योजना के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र है?
1: जी, जो पीड़ित होते हैं वो अपनी शिकायतें विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं जिसका समयबद्ध निवारण किया जाता है।
0: आपदा की पूर्व तैयारी में विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या भूमिका रहती है?
1: विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा से पहले ही जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण या मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपायों के बारे में जानकारी देते हैं।
0: विक्रांत कौंडल जी, आज हमने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं प्रदान करने की योजना, इस विषय पर जानकारी आपसे ली। आप हमारे स्टूडियो में, आपका धन्यवाद। इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का आज का यह अंक ही संपन्न होता है। आगे लेते हैं, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कानून की बात, 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। 9 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता। वार्ता में आज का विषय है नियमितता का अभ्यास श्रेष्ठ गुण। वार्ताकार हैं डॉक्टर

0: कांता देवी, आइए सुनते हैं।
1: नियमितता का अभ्यास एक श्रेष्ठ गुण है, विचार दिशा देते हैं, पर कुशलता सामर्थ्य आदतों से रहती है। वे ही मनुष्य को किसी निर्धारित दिशा में चलने के लिए न केवल उत्साह देती है, परंतु कई बार तो उसे बे अनुरूप करा लेने के लिए विवश तक कर देती है। भले ही परिस्थितियां अनुकूल ना हो, नशेबाजी जैसी आदतें इनका उदाहरण है। स्वास्थ्य, पैसा, यश आदि की हानियों को समझते हुए भी नशे के आदि मनुष्य नशा करते और उसके दुष्परिणाम भुगतते हैं। छोड़ने की बात सोचते हुए भी वे वैसा कर नहीं पाते, कारण कि विचारों की तुलना में आदतों की क्षमता अत्यधिक होती है। अनुपयोगी होते हुए भी वह कई बार प्रबल होती है कि पूरा करने के अतिरिक्त और कोई चारा दिखाई नहीं पड़ता। भले या बुरे जीवन क्रम में जितना योगदान आदतों का होता है, उतना और किसी का नहीं। आदतें आसमान से नहीं उतरती, विचारों को कार्यान्वित करते रहने का लंबा क्रम चलते रहने पर वह अभ्यास आदत बन जाती है और उसे अपनाए रहने में जितना समय बीतता है, उतना ही वह सदृढ़ चला जाता है। वह कालांतर में इतनी गहरी जड़ें जमा लेती है कि उखाड़ने के असामान्य उपाय ही भले सफल हो और उसी पटरी पर गाड़ी लुढ़कती रहती है। आदतें बनाई जाती हैं, भले ही उनका अभ्यास योजना बनाकर किया गया हो अथवा रुझान, संपर्क, वातावरण, परिस्थिति आदि कारणों से अनायास ही बनता चला गया हो। ये आदतें ही मनुष्य का वास्तविक पहचान या चरित्र होता है। मनुष्य क्या सोचता, क्या चाहता है, इसका अधिक मूल्य नहीं। परिणाम तो उन गतिविधियों के ही निकलते हैं जो आदतों के अनुरूप क्रियान्वित होती रहती है। प्रतिफल तो कर्म ही उत्पन्न करते हैं और वे कर्म अन्य कारणों के अतिरिक्त प्रधान आदतों से प्रेरित होते हैं। बुरी आदतें अक्सर दूसरों की देखा देखी या संबंध वातावरण के कारण क्रियान्वित होती और स्वभाव का अंग बनती चली जाती है। मन का स्वभाव पानी की तरह नीचे की ओर लुढ़कने का है। दोस्ती गांठने वाले चमकदार व्यक्तियों में से अधिकांश की आदतें घटिया स्तर की होती है। इनके प्रभाव संपर्क से भी वैसा ही अनुकरण चल पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य बुरी आदतों का शिकार बनता जाता है। यही बुरी आदतों के चुंगुल में जकड़े लोग सारा जीवन घटिया जीवन जीते हैं और दुष्परिणाम सहते हैं। जिस क्रम आदतें अपनाई जाती हैं, उसी रास्ते उन्हें छोड़ा या बदला जा सकता है। रुझान, संपर्क, वातावरण, अभ्यास आदि बदला जा सके तो कुछ दिन हैरान करने के बाद आदतें बदल भी जाती हैं। कई बार मनोबल के सहारे उन्हें संकल्प पूर्वक एवं झटके से भी उखाड़ा जा सकता है, पर ऐसा होता बहुत ही कम है। बाहर से जूझने के तो अनेक उपाय हैं, पर आंतरिक दुर्बलताओं से एक बार भी गुत जाना, उन्हें पछाड़ कर ही पीछे हटना किन्हीं मनस्वी लोगों के लिए ही संभव होता है। दुर्बल मन वाले तो छोड़ने, पकड़ने, आगे बढ़ने, पीछे हटने के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। अविष्ट परिवर्तन ना होने पर उनका दोष जिस तिस पर बढ़ते रहते हैं, किंतु वास्तविकता इतनी ही है कि आत्म परिष्कार के लिए सत प्रवृत्तियों के अव्यस्त बनने के लिए सदृढ़ निश्चय के अतिरिक्त और कोई उपाय है नहीं। जिन्हें पिछड़ेपन से उबरने और प्रगतिशील जीवन अपनाने की वास्तविक इच्छा हो, उन्हें अपनी आदतों का सुधार करना चाहिए और उनमें से जो अनुपयुक्त हो उन्हें छोड़ने बदलने का सुनिश्चित निर्धारण करना चाहिए। भाग्य निर्माता प्रगतिशील महामानवों में से प्रत्येक को यही उपाय अपनाना पड़ता है। अनगढ़ स्थिति में आमतौर से सभी मनुष्य कुसंस्कारी होते हैं। जीव ने क्रमिक विकास के लंबे रास्ते पर चलते हुए मनुष्य स्तर तक पहुंचने में सफलता पाई है। ये सब अनायास ही नहीं हो गया, उद्देश्य के लिए किए गए प्रयत्नों में नीति भी सहायक होती है और ईश्वर की अनुकंपा भी। जीवधारी को उच्च स्तरीय स्थिति तक पहुंचने की अभिलाषा उसे वहां ले आई जहां सृष्टि का मुक्त मणि मनुष्य कहलाने का गर्व गौरव उपलब्ध हो सके। इतने पर भी अनेकों में कुसंस्कारी का अभ्यास अभी भी बना हुआ है, जो निम्न योनियों की विषम परिस्थितियों में भले ही स्वाभाविक रहे।

रहे हैं, पर आज उन्हें अपनाए रहने में हानि ही हानि है। मानवीय तरक्की के मार्ग में अत्यंत छोटी किंतु अत्यंत भयानक बाधा है अनियमितता की आदत। आमतौर से लोग अस्त व्यस्त पाए जाते हैं, हवा के झोंके के साथ उड़ते रहने वाले पत्तों की तरह कभी इधर कभी उधर भटकते रहते हैं। निश्चित दिशा होने से परिश्रम और समय बेहतर बर्बाद होता रहता है। धीमी चाल से चलने की क्षमता रखते हुए भी प्रयत्न से कछुओं ने बाजी जीती थी और उछलने भटकने वाला खरगोश अधिक क्षमता संपन्न होते हुए भी पराजित घोषित किया गया है। सामर्थ्य का जितना महत्व है उससे अधिक महत्वता इस बात की है कि जो कुछ उपलब्ध है उसी को योजनाबद्ध रूप से नियत क्रम व्यवस्था अपनाकर उद्देश्य के लिए नियोजित किया जाए। जो ऐसा कर पाते हैं वे ही क्रमिक विकास के राजमार्ग पर चलते हुए उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। जो इस ओर ध्यान नहीं देते उन्हें योग्यता एवं सुविधा के रहते हुए भी पिछड़ी परिस्थितियों में पड़े रहना पड़ता है। जबकि सुनियोजित जीवनचर्या बना सकने वाले एक के बाद दूसरी पीढ़ी पर चढ़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं जहाँ साथियों के साथ तुलना करने पर प्रतीत होता है कि कदाचित किसी देव दानव ने ही ऐसा चमत्कार प्रस्तुत किया हो, पर वास्तविकता इतनी ही है कि प्रगतिशील ने नियमितता अपनाई, अपने समय श्रम और चिंतन को एक दिशा विशेष में संकल्प पूर्ण नियोजित रखा। इसके विपरीत दुर्भाग्य का परिणाम उन्हें सहन करना पड़ता है, बल्कि लंबी योजना बनाकर उस पर निश्चय पूर्वक चलते रहना तो दूर अपनी दिनचर्या बनाने तक की आवश्यकता नहीं समझते और बहुमूल्य समय को ऐसे ही आलस्य प्रमाद की अस्त व्यस्तता में गवाते रहते हैं। कहते हैं कि लक्ष्य और क्रम बनाकर चलने वाली चींटी शिखर पर्वत पर जा पहुंचती है, जबकि प्रमादी गरुड़ ऐसे ही जहां तहां पंख फड़फड़ाता और बीट करता दिन गुजारता है। अच्छी आदतों में सर्वप्रथम गिनने योग्य नियमितता समय और कार्य की संगति बिठाकर योजनाबद्ध दिनचर्या बनाने और उस पर अरूढ़ रहने का नाम नियमितता है। उसके बन पड़ते ही चिंतन और विचार करने के लिए एक दिशा मिलती है। कार्यक्रम बनाकर चलने से शरीर को उसके साथ रहने की इच्छा रहती तथा प्रवीणता मिलती है। अपनी सुविधा और स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखते हुए अपनी एक नियत दिनचर्या बना लेनी चाहिए और फिर दृढ़ता पूर्वक उसी पर चलते रहना चाहिए। समय का विभाजन ठीक प्रकार से किया जाए और उस कार्यक्रम का कड़ाई के साथ पालन किया जाता रहे तो आलस्य और प्रमाद में यूं ही बर्बाद होते रहने वाला बहुत सा समय बच सकता है और उस बचे समय का उपयोग करके मनुष्य स्वास्थ्य को ही नहीं सुधारता बल्कि उन्नति के अनेकों द्वार खोल लेता है। संसार का एक भी उन्नतिशील व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने अपना दैनिक कार्यक्रम बनाकर समय की बर्बादी को ना रोका हो। आलसी लोग बहुत धीमी गति से इधर उधर चहकते हुए सहज सहज थोड़े से काम में घंटों गुजार देते हैं। कुछ लोग एक काम पूरा होने से पहले नया काम शुरू कर देते हैं और पहले काम को अधूरा ही पड़ा रहने देते हैं। ऐसे लोगों का कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। चाहिए ये कि जो काम समय से किया है उसे ठीक तरह पूरा करके समेट ले, तब दूसरा काम आरंभ करें। 10 अधूरे काम करने की अपेक्षा 2 पूरे काम करना सदा अधिक लाभप्रद सिद्ध होते हैं। समय ही जीवन है, यही हमारी सर्वोत्तम संपत्ति है। भगवान ने अमूल्य पूंजी मनुष्य को दी है और कहा है कि वह इस पूंजी का जिस ओर भी सदुपयोग करेगा उतना ही उसे आशाजनक सफलताएं मिलने लगेगी। रुपया हाथ में हो तो उसके बदले में बाजार में बिकने वाली हर चीज खरीदी जा सकती है। समय भी एक प्रकार का रुपया है, उसे जिस काम में भी खर्च किया जाएगा उस दिशा में उन्नति होने लगेगी। रुपये में दवा भी खरीदी जा सकती है और जहर भी। समय को आलस्य प्रमाद लापरवाही और शोक मौज की बातों में या कुविचारों एवं दुष्कर्मों में खर्च करना जहर खरीदने के बराबर है, पर जो अपना एक एक मिनट बहुमूल्य समझकर उसे कार्यक्रम बनाकर खर्च करते हैं वे अपने जीवन का सच्चा लाभ

0: उठा लेते हैं। काम कम हो या ज्यादा, हर व्यक्ति को नियत दिनचर्या के अनुसार ही उसे पूरा करना चाहिए। व्यवस्थित रीति से नियत समय में ही बहुत काम हो जाता है और अव्यवस्थित कार्य प्रणाली से समय तो बहुत बर्बाद होता है पर काम जरा सा दिखाई पड़ता है। समय की अव्यवस्था का सबसे खराब प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। जिनका नियम नहीं उन्हें अनुशासन भंग करने का दंड प्रकृति देगी ही और उन्हें अव्यवस्था की शिकायत बनी ही रहेगी। पराक्रमों में सबसे अधिक महत्व का वह है जिसमें अपनी अनगढ़ आदतों को सुधारने का श्रेय पाया जा सके। भारी संकल्पों से जूझने और कठिनाइयों को हटाने में दूसरे लोग भी सहायता कर सकते हैं और परिस्थिति वश श्रेय भी मिल सकता है, किंतु अनुपयुक्त आदतों का बदलना केवल अपने निजी पुरुषार्थ के ऊपर ही रहता है। इसलिए इसे प्रबल पराक्रम की संज्ञा दी गई है और ऐसे लोगों को सच्चे अर्थों में शूरवीर कहा गया है।
1: हिंदी वार्ता अभी आपने सुनी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण।

तो चलिए अब आपको बता देते हैं आकाशवाणी शिमला से आज प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी कि 9:30 पर कार्यक्रम सुरबेला में आज आप सुनेंगे पंडित अनिंदो चटर्जी का तबला वादन, ताल एक ताल।

10 बजे आपके लिए लेकर आएंगे कुछ चुनिंदा फिल्मी गीतों के साथ आपका पसंदीदा रिमझिम कार्यक्रम। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे और 12 बजकर 20 मिनट पर महिलाएं सुनेंगे अपना पसंदीदा महिला सम्मेलन कार्यक्रम। दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुनेंगे, जिसमें कुछ बेहतरीन फिल्मी गीत हम आपके लिए चुनकर लाएंगे। दोपहर 2 बजे का समय रहेगा सुनहरी किरणें कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज आप जानेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन और विपणन के बारे में।

लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम हिमगुंजन आप सुनेंगे 2:30 पर, और 2:45 पर सुनेंगे आप फिल्म संगीत। आकाशवाणी शिमला से 3 पेश किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार, और 3:05 पर आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। शाम 4:20 से लेकर 7:05 के दरमियान विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों का आप आनंद उठा सकते हैं। किसानों और बागवानों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत पेश किया जाएगा शाम 7:10 पर। इस कार्यक्रम में आज आप जानेंगे जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव। आठ बजे आप सुनेंगे धारारेख गीत, और 8:30 पर सुगम संगीत होगा। 9:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे गुलदस्ता कार्यक्रम में चंद दिलकश गजलें।

रात 10 बजे आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे हरविंद्र शर्मा का सितार वादन राग विहाग पर आधारित। दस बजकर 30 मिनट पर सुरबहार सुनना बिल्कुल न भूलें। इसमें आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से कुछ यादगार शानदार फिल्मी गीत। तो ये थी जानकारी आकाशवाणी शिमला से आज प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र फिर रिले करेंगे।

0: साथ ही FM शिमला 103.7 MHz और DTH सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का किया आग्रह। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन, कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। प्रदेश में नगर निगम चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान किया तेज। पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आज IPL का होगा अहम मुकाबला। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से 14 मई तक प्रदेश में बारिश और अंधड़ की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से अधिक दबाव का सामना कर रहा है। उन्होंने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से देशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। 7 और 8 मई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में 42,562 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरे। अभी तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 7,396 नामांकन भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की जाँच कल 12 मई को होगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पंचायत चुनावों के लिए मतदान 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। प्रदेश में नगर निगम चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस जहां सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लोगों के बीच प्रमुख मुद्दा बना रही है, वहीं विपक्ष भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल 12 मई से चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से उतरेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल कल हिमाचल दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर नगर निगम क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव करेंगी। पार्टी नेताओं के अनुसार रजनी पाटिल विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी करेंगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कारगर साबित हो रही है। इसी कड़ी में सिरमौर जिला में जरूरतमंद लोगों के लिए काफी मददगार बन रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत जिला में करोड़ों रुपए की राशि पात्र लोगों को आवंटित की जा चुकी है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सिरमौर जिला के नाहन और पांवटा साहिब में जरूरतमंद लोगों के पक्के मकान बनाने के सपने साकार हो रहे हैं। नगर परिषद नाहन में अब तक योजना के अंतर्गत 5,20,00,000 रुपए की राशि लाभार्थियों पर व्यय की गई है, जिसके तहत 335 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य कई मकान निर्माणाधीन है। वही नगर परिषद पांवटा साहिब में 200 आवासों में से 160 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ योजना के तहत करीब 3,50,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। स्थानीय निकायों द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाले 30 जिलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 जिलों को शामिल किया जाना चाहिए। ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदल

0: बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ एक्सएंडल @EIRNews_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच खेला जाएगा। यह मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। हालांकि इस रोमांचक भिड़ंत पर बारिश का साया मंडरा रहा है। मैच से पूर्व कल रविवार को दोनों टीमों ने स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से अंधड़ सहित बारिश हुई, जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से 14 मई तक निचले व मध्यम क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना जताई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज 11 मई से निचले मध्यम व ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश व हिमपात का अनुमान जताया गया है। विभाग के अनुसार 11 से 14 मई तक कई स्थानों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। 12 व 13 मई को 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं चंबा, सोलन, सिरमौर, किन्नौर व लाहौल स्पीति में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 11 से 15 मई तक बारिश व ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमानों में भी 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। लोग गर्मी के मौसम में भी ठंड महसूस करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर तकनीकी विशेषज्ञों और तकनीक प्रेमी युवाओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से नवाचार क्षमता का उपयोग करते हुए भारत के विकास को गति दे रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह दिन सभी को देश की महानता की यात्रा की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और सम्मान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में भी बेटियों का परचम, कांगड़ा की अनमोल ने किया टॉप। पंजाब केसरी के शब्द है, 83.87% विद्यार्थी पास, कुल 107 टॉपर्स में 83 बेटियां शामिल। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, निजी स्कूलों का दबदबा, पहली बार ड्यूल सिस्टम में जून में कंपार्टमेंट संघ, अंक सुधार का मौका। दैनिक जागरण की खबर है, हमीरपुर के संजय वात्सयन को पश्चिमी नौसेना की कमान। दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है, लोकभवन में हिमाचल पंजाब के राज्यपालों की अहम मुलाकात, अंतर्राज्यीय सहयोग पर मंथन। दैनिक भास्कर ने खबर दी है, दिल्ली शिमला हवाई सेवा फिर बहाल, शिमला धर्मशाला के बीच आज से उड़ान। हिमाचल दस्तक ने लिखा है, हिमाचल में पक्षी बढ़ा रहे अपना कुनबा, दर्ज हुई 208 प्रजातियां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का किया आग्रह। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन, कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। प्रदेश में नगर निगम चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान किया तेज। पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल का होगा अहम मुकाबला। और मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से 14 मई तक प्रदेश में बारिश और अंधड़ की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। जी हाँ, 9:30 हो गए हैं और FM शिमला पर अब वक्त हो गया है हमारे उस खास प्रोग्राम का, जिसमें हम आपको लेकर चलते हैं हमारे खूबसूरत हिमाचल के किसी खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर जाकर आप जो हैं एक पल को अपनी सारी टेंशन्स, सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं और प्रकृति की गोद में एक अलग ही सुकून पाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही ख्वाहिशों के साथ दूर दूर से लोग हिमाचल में घूमने के लिए आते हैं और बस यहीं के होके रह जाते हैं। तो चलिए फिर, ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में आज हम आपको बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में, जहां पर हिमाचल में आकर आप घूम सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको ये लवली सॉन्ग सुनाते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कुदरत के रंग 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

किसी अपने को साथ लेकर अगर आप भी हिमाचल घूमना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे यहां पर घूमने की कुछ खास जगहों के बारे में। जी हाँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खूबसूरत हिमाचल जो है खूबसूरत जगहों से भरा पड़ा है, खूबसूरती की यहाँ पर कोई कमी नहीं है और यही देखने के लिए बाहर से जो है दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर अक्सर आते जाते रहते हैं। स्पेशली जो सीजन्स रहते हैं घूमने के वो जो हैं भरे पड़े रहते हैं लोगों से यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि घूमने के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं और आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिनके सामने आपको कुल्लू, मनाली और शिमला भी फेल नज़र आएगा। आपको बता दें कि ये समय जो है इन दिनों आप पहाड़ों में घूमने के लिए अगर आएंगे तो पहाड़ों में सुविधाएं भी आपको मिलेंगी और एक्साइटमेंट तो कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पर इन दिनों मिलेगा। हर रोज़ नई जगहें जो हैं पुरानी होती जा रही हैं, फिर भी कई अनछुई जगहें ऐसी हैं यहाँ पर जो कि सिर्फ यहाँ के लोकल लोग ही अच्छी तरह से जानते हैं और आपको अच्छी तरह से उन जगहों के बारे में बता सकते हैं। ऐसी जगहों पर जाने में रिस्क थोड़ा सा ज़रूर होता है लेकिन रोमांच जो है वो कई गुना ज़्यादा होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल के कल्पा विलेज की। हिमाचल प्रदेश का कल्पा गांव जो है वो किन्नौर ज़िले का सबसे बड़ा गांव है। ये गांव अपने देवदार के जंगलों के लिए जाना जाता है और ये जंगल के पीछे किन्नौर के कैलाश की बर्फ से लिपटी हुई चोटियां भी यहां पर नज़र आती हैं। ये जगह जो है न जाने कितने सेब के बाग यहाँ पर हैं जो कि यहाँ के लोगों के लिए मुख्य कमाई का सोर्स भी है। भगवान महादेव जो कि कैलाश में बसे हुए हैं वो कैलाश शिवलिंग भी यहाँ से देखा जा सकता है। चंडिका देवी का मंदिर भी कल्पा से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे ही कई मंदिर और दर्शनीय स्थल कल्पा गांव के आसपास

मौजूद हैं जो कि आपका मन मोह लेंगे। बसपा नदी के तट पर स्थित सांगला घाटी कल्पा गांव से 57 किलोमीटर दूर है और ये किन्नौर जिले में सबसे आकर्षक घाटी मानी जाती है। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश की ऐसी जगह है जहां रोजगार का कोई और जरिया नहीं है। चारों ओर प्राकृतिक दृश्य और बर्फ से ढके पहाड़ों का मनमोहक नज़ारा जो यहां पर है वो इस घाटी में कदम रखने के बाद ही आपको देखने को मिल जाता है। और ये जगह ऐसी है कि अगर आप यहाँ पर एक बार जाएंगे तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है और पक्षियों की जो यहाँ पर आवाज़ें चहकते हुए आप सुन सकते हैं, उनसे आपका जो मन है एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा और आपका मन नहीं चाहेगा इस जगह से एक बार भी वापस आने को।

खूबसूरत हिमाचल के कुछ खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है कुदरत के रंग। तो चलिए अब बात करते हैं बड़ोग की। बड़ोग जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में कालका शिमला राजमार्ग पर पड़ता है और यह जगह जो है शिमला की ओर आती हुई एक छोटी सी सुंदर डेस्टिनेशंस है जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आती है। ये जगह जो है चारों ओर से चीड़ और बांज के जंगलों से घिरी हुई है जो कि एक अलग ही शानदार एनवायरनमेंट पेश करती है। इस छोटे से गांव से हिमाचल की चूड़धार चोटी का एक शानदार नज़ारा आपको दिखाई देगा। और हिमाचल के मंडी ज़िले में आता बरोथ जो है वो एक अलग ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए। और जब भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का मेन अट्रैक्टिव पॉइंट वो ये जगह जो है हो जाती है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। ये गांव जो है ट्राउट मछलियों के प्रजनन के लिए जाना जाता है, या ये भी आप कह सकते हैं कि ये ट्राउट मछलियों के प्रजनन केंद्र के रूप में कार्य भी करता है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए कई फार्म भी बनाए गए हैं। और आपको हम बता दें कि ब्रोथ नारगू वन्य जीव सेंचुरी भी यहाँ पर है। यहाँ पर कई हिमालयी प्रजातियों जैसे कि हिमालयी गोरल, हिमालयी काले भालू और कई अलग अलग तीतर बटेर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कई तरह के ट्रैकिंग ट्रेल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हिमाचल की कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें आप अपने वीकेंड पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये जगह ज़्यादा महंगी भी नहीं हैं और यहाँ पर टूरिस्ट को तमाम फैसिलिटीज़ भी इजीली मिल जाती हैं। तो बताइए कि आप भाई कब जा रहे हैं हिमाचल के इस छिपे हुए खजाने को खंगालने।

तो लिसनर्स, हिमाचल के इन खूबसूरत जगहों पर घूमने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर जाइए, लेकिन थोड़ा सा ज़िम्मेवार आपको बनना होगा इन खूबसूरत जगहों की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए। यहाँ पर साफ़ सफ़ाई का ध्यान रखिए, या कहीं भी हम जाते हैं तो साफ़ सफ़ाई का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ हो जाता है, और वहाँ के लोकलाइट्स, जितने भी लोकल लोग हैं, उनके जनजीवन और उनका सम्मान हम करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। इन कुछ छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए खूबसूरत हिमाचल के ये खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन।

0: तो लिसनर्स, आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए पेश है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बेचने का बचाने का आग्रह किया है। उन्होंने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। कल 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 व 15 मई को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं और इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश के कुल 31,182 पदों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को मतदान तीन चरणों में करवाया जाएगा। प्रदेश में नगर निगम चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस जहां सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लोगों के बीच प्रमुख मुद्दा बना रही है, वहीं विपक्ष भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रहा है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सिरमौर जिला में जरूरतमंद लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत जिला में करोड़ों रुपए की राशि पात्र लोगों को आवंटित की जा चुकी है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर तकनीकी विशेषज्ञों और तकनीक प्रेमी युवाओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से नवाचार क्षमता का उपयोग करते हुए भारत के विकास को गति दे रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में परिवर्तन हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में रात भर बारिश हुई, जबकि जनजातीय जिलों की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने आज से निचले, मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है, जबकि 12 व 13 मई को चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। FM न्यूज़ हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।

एफ एम शिमला पर आपके लिए हम लेकर आते हैं बहुत सारे एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स एक के बाद एक, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और 11:05 पर पुराने फिल्मों से प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आएंगे। 11:30 पर आप सुनेंगे पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। तो इन तमाम प्रोग्राम्स को एंजॉय करने के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

तेरी चाहत में हम जमाना भूल गए, किसी और को हम अपनाना भूल गए। तुझसे मोहब्बत है सारे जहां को बताया, बस एक तुझी को बताना भूल गए। फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप हमारे साथ एफएम शिमला पर, और आज के सुहाने सफर में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रेडियो एंकर वीना नरवाल। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिलवाले फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं आपको, आवाज है कुमार सानू की।

दिलवाले फिल्म का ये सुपर हिट सॉन्ग आपने सुना कुमार सानू की आवाज में, उदित नारायण की आवाज में। लीजिए अब सुनिए यलगार फिल्म का गीत। बस एक बार आओ मेरे दिल में अपनी मोहब्बत देखने, फिर वापसी का इरादा हम तुम पर छोड़ देंगे।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

फिल्म संगीत में ये बेहतरीन गीत आप सुन रहे हैं हमारे साथ अपने चहेते एफएम शिमला पर। दिल तेरा आशिक, इस फिल्म का गीत लीजिए आप सुनिए कुमार सानू के साथ। इस गीत में आप सुनेंगे अलका याग्निक की आवाज। प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाहकर भी आपको हम भुला ना सकेंगे। तुम ही हो मेरे लबों की हंसी, तुम अगर बिछड़े तो फिर हम मुस्कुरा ना सकेंगे।

साजन का घर, इस फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। इन्हीं आवाजों को एक अलग अंदाज में लीजिए, अब सुनिए रंग फिल्म के इस गीत में। जी हाँ, मोहब्बत का एक रंग जुदाई भी है। दिल जब दिल से जुदा होता है तो मिलने की फरियाद करता है, ना हो हम सफर पास में तो कुछ ऐसे याद करता है।

सुरीले गीतों का ये सुहाना सफ़र आप इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, और अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप FM शिमला सुन रहे हैं। सलामी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपको हमने सुनवाया अलका याग्निक की आवाज़ में।

और लीजिए अगला गीत आपको अब हम सुनवाने जा रहे हैं बाजीगर फिल्म से। इस गीत में आप सुनेंगे विनोद राठौड़ के साथ आशा भोसले की आवाज़।

ये दिल लगी फिल्म के इस गीत में आपने सुनी लता मंगेशकर के साथ कुमार सानू की आवाज। आइए अब आपको सुनवाते हैं हम है राही फिल्म का गीत, जिसमें आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज। काश कोई हमें भी ऐसे चाहे जैसे कोई तकलीफ में सुकून चाहता है। सुन रहे हैं आप FM शिमला 103.7 MHz पर।

धीरे से लबों पे आया है ये सवाल, तू ज्यादा सुंदर है या फिर तेरा ख्याल। मोहरा फिल्म का गीत लीजिए सुनिए पंकज उधास की आवाज में। पंकज उधास के साथ इस गीत में आप सुनेंगे साधना सरगम की आवाज़।

मोहरा फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं आज के इस सफर का ये आखिरी गीत। आवाजें एक बार फिर कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं। फिल्म का नाम है जमाने से क्या डरना।

तो लिसनर्स, इसी गीत के साथ आज के इस सफर से विदा लेने की मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 11 बजने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला, डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में एक समारोह में प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। उन्होंने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत

0: कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। 7 और 8 मई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश भर में 42,562 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरे। अभी तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 7,396 नामांकन भरे गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल 12 मई को होगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पंचायत चुनावों के लिए मतदान 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। प्रदेश में नगर निगम चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस जहां सरकार की योजना और विकास कार्यों को लोगों के बीच प्रमुख मुद्दा बना रही है, वहीं विपक्ष भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल 12 मई से चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से उतरेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल कल हिमाचल दौरे आएंगे। इस दौरान वे धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर नगर निगम क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगी। पार्टी नेताओं के अनुसार रजनी पाटिल विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी करेंगी। चंबा जिला के भटियात उपमंडल के ककीरा लहाडू मार्ग पर बीती देर रात एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 6 पर्यटकों की मृत्यु हो गई है, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए टांडा अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों में 5 गुजरात और चालक प्रदेश के मंडी जिले का निवासी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है, जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि यह क्षण भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से नवाचार क्षमता का उपयोग करते हुए भारत के विकास को गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के समर्पण, नवाचार और दृढ़ता को नमन किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच खेला जाएगा। यह मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। हालांकि इस रोमांचक भिड़ंत पर बारिश का साया मंडरा रहा है। मैच से पूर्व कल रविवार को दोनों टीमों ने स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से अंधड़ सहित बारिश हुई, जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से 14 मई तक निचले व मध्यम क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना जताई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज 11 मई से निचले मध्यम और ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश व हिमपात का अनुमान जताया गया है। विभाग के अनुसार 11 से 14 मई तक कई स्थानों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। 12 व 13 मई को 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं चंबा, सोलन, सिरमौर, किन्नौर व लाहौल स्पीति में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 11 से 15 मई तक बारिश व ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमानों में भी 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। लोग गर्मी के मौसम में भी ठंड महसूस करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: प्रदेश में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कारगर साबित हो रही है। इसी कड़ी में सिरमौर जिला में जरूरतमंद लोगों के लिए काफी मददगार बन रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत जिला में करोड़ों रूपये की राशि पात्र लोगों को आवंटित की जा चुकी है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सिरमौर जिला के नाहन और पांवटा साहिब में जरूरतमंद लोगों के पक्के मकान बनाने के सपने साकार हो रहे हैं। नगर परिषद नाहन में अब तक योजना के अंतर्गत 5,20,00,000 रुपए की राशि लाभार्थियों पर व्यय की गई है, जिसके तहत 335 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य कई मकान निर्माणाधीन है। वही नगर परिषद पांवटा

0: साहिब में 200 आवासों में से 160 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहां योजना के तहत करीब 3,50,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। स्थानीय निकायों द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 PM। नमस्कार।
2: ये थे प्रादेशिक समाचार, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम मैं हूं आपके साथ सुमन और लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम पुराने फिल्मों से। कार्यक्रम के सफर में सबसे पहले आपको सुना रहे हैं निकाह फिल्म का गीत। सलमा आगा की आवाज़ में हसन कमल की बोल हैं और रवि का संगीत है, तो आइए सुनते हैं।

एफएम शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम के सफर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुना रहे हैं सावन को आने दो इस फिल्म से ये गीत यशुदास की आवाज में।

FM शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम पुराने फिल्मों से। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुना रहे हैं भूमिका फिल्म का गीत प्रीति सागर और भूपेंद्र की आवाजों में।

11:30 हुए हैं और अब समय हुआ है कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे हिमाचली लोकगीत। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत

आशा गवर और साथियों की आवाज़ों में सुना अभी आपने ये लोकगीत। एफएम शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ी संगीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको सुना रहे हैं नीलम गंधर्व की आवाज़ में ये लोकगीत।

एफएम शिमला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ी संगीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको सुना रहे हैं कुलदीप सिंह राणा की आवाज में ये लोकगीत।

तो आज के इस कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में फिलहाल इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए FM शिमला। और श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।

प्रभास पाटन पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत पर्व के तहत धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित

0: करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में गतिरोध जारी रहने के कारण प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत में $100 से अधिक बनी हुई है।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया। श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने का भी आह्वान किया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के साथ वर्चुअल बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि उन्होंने सम्मेलन समिति COP31 की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% के वृद्धि होने का अनुमान है। फुटबॉल में FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर वर्ष 2025-26 का ला लीगा खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1-kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the road show. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the

कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है महिला सम्मेलन।

0: महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को कौशल्या और
1: वीना शर्मा का
0: नमस्कार। देखिए बहनों, आज के युग में जो है कैसे हम इंसानियत का रिश्ता कायम रख सकते हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है वीना, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: आज का इंसान जो है बड़ा ही स्वार्थी, धन यानी कि बहुत धन का लालची होता जा रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं में ज़्यादा अंधी दौड़ लगा रखी है, यानी कि दया करुणा संवेदना की भावना जो है कहीं ना कहीं भी ना पीछे छूटती जा रही है।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, अब इंसानियत को भूलते इंसान के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या है कि अत्यधिक स्वार्थ है, भगवान का डर ना होना और संवेदनहीनता होना।
0: जी बहनों, देखिए ना, आज के समय की अगर हम बात करें तो अपने मतलब के लिए ही हम

0: एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बहनों, सभी तो हम कह नहीं सकते कि सभी इस तरह के इंसान होते हैं, कुछ प्रतिशत लोग जो है आज भी इंसानियत की कद्र करते हैं। कैसे? जैसे कि कभी भी बिना देखे आस पड़ोस में हो, आप घर के आसपास रहते हो, कहीं भी किसी को कोई परेशानी आती है, तो जिस इंसान के अंदर दया की भावना होती है वो ज़रूर उस इंसान के घर जाता है और उसको पूछता भी है ना। और जिस इंसान के अंदर कद्र नहीं है इंसानियत की, वो जाता भी नहीं है, वो सिर्फ अपने तक सीमित ही रहता है।
1: जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि पहले के समय में जो इंसानियत के रिश्तों को बड़ी अहमियत दी जाती थी,
0: बिल्कुल,
1: और अब धीरे धीरे वो सब जो है कम होता जा रहा है।
0: जी
1: और वजह है हमारी, जो अच्छी तरह से बहनें जानती हैं कि क्या वजहें हैं, और इसकी वजहें जो है अत्यधिक स्वार्थ और धन भी इसका कारण हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: जब इंसान में ज़रूरतें और लालच बढ़ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने आप को भूल जाता है।
0: बिल्कुल, देखिए ना बहनों, आजकल काफ़ी हद तक दया की भावना जो है वो कम होती जा रही है ना। दूसरों के दुख में जो दर्द जो है वो इंसान को नहीं होता, सिर्फ अपने बारे में व्यक्ति जो है सोचना शुरू कर देता है।
1: जी, और देखिए अब नैतिक पतन भी काफ़ी हद तक जो है इसका जिम्मेदार है, यानी बचपन से जो संस्कारों की कमी होने की वजह है। और देखिए कौशल्या, ये संस्कार जो हमें बचपन में ही दिए जाते हैं कि किसी के प्रति दया भावना रखना कितना ज़रूरी है।
0: और देखिए ना, बचपन से ही एक जो बच्चा है वो इंसानियत की भावना सीखता है, यानी कि संस्कार में ही इंसानियत आती है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: और बहनों, इंसानियत का अर्थ ही हम देखिए हम भूलते जा रहे हैं, है ना, तभी हमारा नैतिक पतन होता जा रहा है, हमारे अंदर जो दया और करुणा की भावना है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है।
1: जी देखिए, हमें सुख दुख में एक दूसरे का सहयोगी बनना होगा, हमें सामाजिक भावना को जागृत करना होगा, और निस्वार्थ भाव से सेवा करना हमारा जो है धर्म होना चाहिए। हर व्यक्ति का सम्मान आदर करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए।
0: जी हाँ, देखिए ना, ये सम्मान हो गया, संस्कार हो गया, आदर हो गया, और हमारे कर्तव्य में ही आता है बिना ये, है ना।
1: जी,
0: हमें अगर हम आसपास में कहीं पर भी रहते हैं, अपने घर से ही बात शुरू होती है बिना, है ना। अगर हमारा घर में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं तो एक अच्छे इंसान का निर्माण होता है ना। अगर आपका बच्चा जो है वो अच्छे संस्कार में पलता बड़ा होता है तो क्या होता है, उससे उसको अच्छे संस्कार आते हैं। जब अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छी इंसानियत भी रहेगी, उसी के अंदर दया का भाव भी रहेगा और करुणा का भाव भी रहेगा ही रहेगा।
1: जी, और देखिए कहा भी जाता है कि जो इंसान इंसानियत को भूल जाता है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होता है।
0: बिल्कुल।
1: और एक व्यक्ति को इंसानियत को पुनर्जीवित करने के लिए सहानुभूति, करुणा और नैतिक मूल्यों को फिर से अपनाना आवश्यक होगा।
0: बिल्कुल, देखिए ना बहनों, हमारे जीवन में सबसे अहम बात होती है इंसानियत। एक अच्छा इंसान तभी बनता है जब इंसान के अंदर इंसानियत है, और इंसानियत के रिश्ते को हमें कैसे कायम रखना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। ये सब तभी संभव होगा जब हम अच्छे संस्कार जो है बच्चों को बचपन से ही देंगे।
1: जी, तो देखिए कौशल्या, हमारी बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्यों ना अपनी बहनों को एक गीत सुनवा दें।
0: जी, खुद भी सुन लें।
1: जी

0: एक ऐसा सफर जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, भावनाओं को शब्द दिए और देश की धड़कनों को अपनी आवाज़ में समेट लिया। जी हाँ, आज का हमारा विषय है आकाशवाणी के 90 वर्षों का गौरवशाली सफर और बदलते दौर में अटूट इसकी पहचान।
1: बहनों, एक छोटा सा रेडियो घर के किसी कोने में रखा होता था, लेकिन उसकी आवाज़ पूरे घर में जीवन भर जो है गूंजती रहती थी और रहती भी है ना।
0: जी
1: सुबह समाचारों की गंभीरता को लेना, दोपहर में ज्ञान विज्ञान के कार्यक्रमों को सुनना और शाम को मधुर गीत संगीत, यही तो है ना वो उस दौर का सबसे खूबसूरत एहसास है।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, आकाशवाणी केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं रहा, बल्कि ये समाज को जागरूक करने, शिक्षा फैलाने और देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे मजबूत माध्यम भी बनी, और इसीलिए आकाशवाणी लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन गई।
1: जी हाँ, देखिए बहनों, वही किसान खेतों के काम करते हुए है ना उसे सुनते थे, है ना, और
0: जी
1: रसोई में हमारी गृहिणियाँ, हमारी बहनें मधुर धुनों के साथ जो है अपना काम करती थी, और बच्चे जब समय आता था कहानियाँ सुनते हैं ना, गीतों वाले कार्यक्रम सुनते, बड़ी बेसब्री से हमारी बहनें और हमारे खासकर किसान भाई बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे अपने कार्यक्रमों का, है ना बिना।
0: जी और बहनों, सन 1936 में शुरू हुई ये यात्रा आज 90 वर्षों की गौरवशाली ऐतिहासिक पहचान बन चुकी है।
1: बिल्कुल
0: ऑल इंडिया रेडियो के रूप में शुरू होकर आकाशवाणी बनने तक इसने समाज को शिक्षा, संस्कृति, समाचार और मनोरंजन से जोड़ने का कार्य किया।
1: जी बिल्कुल। और देखिए ना, देश की जो है आवाज़ के आज की जो दौर के समय में आधुनिक भारत तक आकाशवाणी हर महत्वपूर्ण क्षण की साक्षी रही है। जब देश ने जीत का जश्न मनाया, जब भी तब तक भी इसकी आवाज़ गूंजी, और जब कठिन समय आया तब भी इसने लोगों को हौसला जो है दिया और लोगों का हौसला भी बढ़ाया।
0: जी बिल्कुल कौशल्या। और देखिए ना, महिलाओं के लिए आकाशवाणी ने महिला सम्मेलन, स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा, पोषण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान से जुड़े कार्यक्रमों से जो है महिलाओं को नई सोच, नई पहचान दी। और आकाशवाणी ने न केवल सूचना दी बल्कि समाज को संस्कार भी दिए और लोकगीतों की पहचान दी, क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान दिया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखा।
1: बिल्कुल। और देखिए ना, जब हम परंपराओं की बात करते हैं ना बहनों, तो परंपराओं को भी इसने जीवित रखा है ना। आज की विविधता को एकता में पिरोने वाला कार्यक्रम भी आकाशवाणी ही देता है, और ऑल इंडिया रेडियो से लेकर आकाशवाणी एक का सफ़र जो है एक विश्वास का सफ़र है, सेवा और समर्पण का प्रतीक है ये।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, आज भले ही दुनिया डिजिटल हो चुकी है, लेकिन आकाशवाणी की आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में वही अपनापन रखती है। FM, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम के जरिए भी ये आज भी नई पीढ़ी से जुड़ रहा है।
1: और देखिए ना बहनों, 90 वर्षों का ये सफ़र केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, यादों और विश्वास की यात्रा है।
0: जी देखिए, जैसा कि हमने कहा कौशल्या, कि गीत संगीत पूरे वातावरण को जीवंत बना देता है
1: जी बिल्कुल।
0: और गीत संगीत आपके मूड को भी फ्रेश कर देता है। तो चलिए, आइए अपनी बहनों के मूड को भी फ्रेश कर देते हैं और सुनवाते हैं उनको ये प्यारा सा गीत।
1: जी बिल्कुल।

चंदा से चकोरी पतंग से डोरी तू रहे तो दूर रहे पर तुम ना रहना दूर ओ सनम

0: सामाजिक परंपरा के अनुसार परिवार की नींव माना जाता है ना,
1: बिल्कुल
0: जो अपने अनुभव और ज्ञान से बच्चों को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।
1: जी हाँ, लेकिन देखिए ना वीना, अब कुछ समय जो है वो काफ़ी बदल सा गया है ना।
0: जी
1: बच्चे जो हैं बुज़ुर्गों से दूर होते जा रहे हैं और उनके प्यार से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण कई सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियाँ जो है बच्चों के अंदर ही पैदा होती जा रही हैं, वो भी
0: जी
1: बचपन से लेकर।
0: जी बिल्कुल। और देखिए बहनों, अगर हम बात करें बुज़ुर्गों के साथ दूरी के कई कारण हो सकते हैं ना,
1: जी हाँ
0: जैसा कि बहनों अभी आपको बताया कि संयुक्त परिवारों में पहले बच्चे पलते थे, बड़े होते थे और अपने घर के बड़ों से काम और संस्कार सीखते थे।
1: जी
0: अब परिवार में जो है सिर्फ माता पिता और बच्चे ही रह गए हैं,
1: जी
0: क्योंकि माता पिता कहीं और रहते हैं और दादा दादी नाना नानी अपने घरों में गाँव में रहते हैं, तो ये मुश्किल हो जाता है कि बच्चे उनके पास कैसे जो है संस्कार सीखें।
1: बिल्कुल। और देखिए जब बात आती है बिना, एकल परिवार भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है ना।
0: जी
1: साथ में बहनों, आज के युग में तकनीक और मोबाइल का चलन इतना अधिक हो गया है बिना कि बच्चे और युवा मोबाइल के साथ ही अपना अधिकतर समय गुजारते हैं, है ना।
0: जी बिल्कुल। और देखिए एक कारण ये भी है कि नैतिक मूल्यों की कमी हो गई है। पहले घर के बुजुर्ग बच्चों को बचपन से ही वयस्क होने तक के संस्कार और संरक्षण देते थे,
1: बिल्कुल
0: और उनसे दूर होने पर बच्चे जीवन के कई महत्वपूर्ण मूल्य से जो है वंचित रह जाते हैं।
1: जी हाँ बहनों, देखिए भावनात्मक असुरक्षा भी एक कारण है इसके पीछे, क्योंकि घर पर बड़े बूढ़ों के कारण स्नेह और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। देखिए वीना, जब घर में बड़े बूढ़े होते हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं होता, हमें पता होता है अगर हमें कोई बात नहीं आती तो हम बड़े बूढ़ों से पूछ लेंगे। पर अब क्या हो रहा है कि हमारा परिवार एकल होता जा रहा है, हम जो बिखरते जा रहे हैं, है ना,
0: जी
1: तभी हमारे अंदर जो है क्या है, इस तरह के बच्चों के अंदर जो है नैतिक मूल्यों की कमी आ रही है।
0: जी बिल्कुल। और देखिए कौशल्या, हमें समाधान यही निकालना होगा कि अपने घर में बच्चों और बुजुर्गों को साथ बिठाएं। जब
1: बिल्कुल
0: भी आपको समय मिलता है अपने दादा दादी या उनके नाना नानी के घर जाने का, और तरह तरह की कहानियां उन्हें सुनाना, उनसे बातचीत करना, ये सारी बातें बच्चों को हमारे घर के बड़ों से ही सीखने को मिलता है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा
1: बिल्कुल
0: जब आप अपने बच्चों को जो है उनके दादा दादी या नाना नानी के संपर्क में लाएंगे।
1: जी हाँ। और देखिए ना, बच्चों को बुजुर्गों के साथ बहनों रहने का कुछ समय तो जरूर दें, है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल
1: उनसे बच्चों के अंदर जो है सम्मान की भावना, आदर की भावना, वो सभी बुजुर्गों से ही सीखेंगे और संस्कार जो हैं वो वहीं से उत्पन्न होते हैं बच्चों के अंदर, है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल। और देखिए सबसे अहम बात यह है कि आज का जो टाइम है वो मोबाइल का है ना, और मोबाइल से दूरी बनाएं, क्योंकि आप हर चीज़ का समय निर्धारित करें, अपने बच्चों का समय निर्धारित करें। हमेशा मोबाइल पर ज़्यादा समय बैठना जो है सभी को बुरा लगता है,
1: बिल्कुल
0: और घर के बड़े सोचते हैं कि हमारे साथ भी कोई बात करें, पर जब ऐसा नहीं होता है ना कौशल्या, तो परिवार जो है बिखरने लगता है।
1: बिल्कुल
0: और फिर बात आती है एकल परिवार की, तो ऐसे में बच्चों की भावनाएं जो बड़ों के साथ जुड़ी होती हैं वो टूट जाती हैं,
1: बिल्कुल
0: फिर बस अकेलापन और बच्चों की बुजुर्गों से दूरी हो जाती है।
1: बिल्कुल। देखिए ना वीना, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखो, बच्चों को अपने बुजुर्गों के साथ रहने दें, जैसा आपने कहा, समय
0: जी
1: निर्धारित करें, है ना।
0: जी
1: और तभी हमारे बुजुर्ग जो कई बार अकेलापन महसूस करते हैं, उनको अकेलापन नहीं महसूस होगा जब वो बच्चों के साथ अपना समय बिताएंगे। क्योंकि क्या होता है, अक्सर बुढ़ापे में बिना बुजुर्गों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द जरूर होती है ना। वो अपनी दर्दें सारी भूल जाते हैं जब उनके जो पोता पोती होते हैं ना, है ना, और
0: जी
1: जो भी उनके घर में बच्चे होते हैं उनके साथ खेलते हैं, तो कुछ समय के लिए वो अपनी दर्दों को भी भूल जाते हैं, है ना।
0: जी
1: और बच्चों और बुजुर्गों का देखिए हमें बहनों हमेशा सम्मान करना होगा। यही हकीकत है कि हमारा घर जो है, हम कहते हैं घर घर नहीं रहे। क्यों नहीं रहे घर घर? इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम बच्चों और बुजुर्गों का सम्मान करना हम कम कर चुके हैं।
0: जी कौशल्या, देखिए बुजुर्गों का साथ जो है बच्चों को न केवल पुरानी परंपराओं से जोड़ता है, बल्कि
1: बिल्कुल
0: उन्हें एक संतुलित और संवेदनशील जो इंसान बनाने में भी मदद करता है।
1: जी बिल्कुल
0: तो देखिए कौशल्या, हमारी बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, और बहनों को क्यों ना एक गीत सुनवा दिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: बहनों आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज परवरिश के अंतर्गत। बहनों आज हम आपसे बात करेंगे कि कैसे अब बच्चे जो हैं बचपन से ही बुजुर्गों से दूर होते जा रहे हैं। इसका एक कारण हमारे समाज में एकल परिवार है जिसमें सिर्फ सभी अकेले और अलग अलग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं।
1: जी, और देखिए बुजुर्गों को हमारी भारतीय

0: बहनों देखिए ना, आपसे बातचीत करते हुए पता भी नहीं चला कार्यक्रम में हम कब हम अंतिम पड़ाव में पहुंच गए। और बहनों चलते चलते कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि हमें जो लकड़ी के हमारे घर में फर्नीचर्स होते हैं ना बहनों, उनकी चमक को हमें कैसे बरकरार रखना होता है।
1: जी बिल्कुल, देखिए कौशल्या, लकड़ी की चीज़ों का उपयोग स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा है और उनकी नियमित सफाई बहुत ज़रूरी होती है।
0: जी बिल्कुल।
1: और इनकी गंदगी जो है ऊपरी हिस्सों पर तो दिखती है, उसके साथ जो है कण अंदर भी जम जाते हैं।
0: जी हाँ, देखिए बिना आप बात करते हैं, अगर टेबल कुर्सी घर में हमारे पास लकड़ी के हैं तो उसके लिए क्या हमें उपयोग करना है जिससे वो चमकदार बने। मैंने 2 कप सफ़ेद विनेगर लेना है और 2 कप नारियल तेल, 1 कप नींबू का रस लेना है। अब इसे कैसे हमें सावधानी से इस्तेमाल करना है, सारी सामग्री अच्छी तरह से एक बाउल में मिलानी है, एक सूखे और जो साफ़ कपड़े से फर्नीचर को उसी से साफ़ करना है।

0: फिर एक मुलायम कपड़े से जो है इसको उसमें डुबो कर जो है आपने फर्नीचर को बहुत अच्छी तरह से उस पर जो लगे दागों पर लगाना है जो अभी हमने बताया, और बाद में सूखे कपड़ा से पोंछ कर उसको साफ़ कर लेना। देखिए आपके टेबल कुर्सी कितने अच्छे चमक जाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और बात करें चम्मच और बॉल की, जो कि लकड़ी के होते हैं, तो इनको साफ़ करने के लिए आप क्या करें कि एक बड़ा चम्मच विनेगर और 4-5 बूंद ऑलिव ऑयल या फिर नारियल की बूंदें भी आप डाल सकते हैं। और इसको क्या करना है कि लकड़ी के सारे गंदे चम्मच या बॉल जो है एक बड़े बर्तन में रख दें और इसमें पानी भर दें और इसमें जो है विनेगर डालें और 15-20 मिनट तक पानी में उबलने दें।
0: बिल्कुल
1: और बाद में सभी जो चम्मच और बॉल को अच्छी तरह से पोंछ लें और पूरी तरह से सुखा कर आप जैतून का तेल लगाकर इसे स्टोर कर सकती हैं।
0: जी हाँ, बात करते हैं दरवाजे खिड़कियों की, तो बहनों इसके लिए आपको आधा कप पानी लेना है, आधा कप विनेगर, आधा कप जो है लिक्विड सोप और 7-8 नारियल तेल की बूंदें लेनी है, और मॉइस्चराइजर कोई भी ले सकती हैं, और एक कपड़ा लेना है ना। सारी जो सामग्री को मिलाकर आपको घोल बनाना है, दरवाजे अलमारी के ऊपर जो है इस घोल को कपड़ों से अच्छी तरह लगाना है, बाद में सूखा कपड़ा लेकर आप जो है इसको साफ़ करेंगी तो आपकी जो दरवाजे और खिड़की में जो जमा जमा हुआ मैल है वो देखिए ना कितना अच्छी तरह से निकलेगा, और आपकी जो दरवाजे और खिड़कियाँ जो है वो चमकदार बन जाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और देखिए एक और बात है कि लकड़ी की चमक को बरकरार रखने का जो तरीका है वो क्या है कि आप 2 कप पानी में 2 से 4 बूंदें छोटे चम्मच जो है चाय पत्ती डालें, यानी कि 2 से 4 चम्मच जो है उसे पानी में उबालें और ठंडा करके छान लें। फिर कपड़े को इसमें डुबो कर लकड़ी पर हल्के हाथ से पोंछ लें और लकड़ी नई जैसी चमकने लगेगी।
0: जी हाँ, यानी कि चाय की पत्ती भी देखिए लकड़ी का को साफ करने का काम करती है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल। और देखिए सावधानियां आपको क्या रखनी है वो है लकड़ी को सीधे धूप या फिर नमी के संपर्क में न रखें। पर्दे और डी ह्यूमिडिटी वाला जो उपयोग है वो फर्नीचर की उम्र बढ़ाने में मददगार साबित होता है। और लकड़ी के छोटे छोटे दागों को तुरंत साफ करें क्योंकि लकड़ी इन्हें सोख लेती है।
0: बिल्कुल
1: और छोटे छोटे लकड़ी के सामानों को 1-2 हफ्ते में साफ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
0: जी हाँ, आप देखिए ना कार्यक्रम का गीत सुन लिया जाए।
1: जी

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है हिंदी व अंग्रेजी समाचार। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 1000 वर्ष के लिए भारत की प्रेरणा का उत्सव है। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
2: सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है।

0: अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में पर्यटकों को ले जा रहे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 885 अंक गिरकर 76,443 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said the Somnath Temple stands as a beacon of unwavering faith, divinity and a sacred symbol of the country's eternal soul. He was speaking at the Somnath Amrit Mahotsav in Gujarat.
1: Kartarpur corridor, Bauddha circuit ka vikas, inke jariye desh mein tirth kshetron mein aarthik gatividhiyan badi hain. सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं।
2: Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at the Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गीत हमारा दिल आपके पास है इस फिल्म से। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको सुना रहे हैं अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह, जसविंदर नरोला की आवाज़ों में बादल फिल्म से ये गीत।

दोपहर के 2 बज चुके हैं और FM शिमला पर समय हो गया है कार्यक्रम सब रंग का। कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं कुछ गैर फिल्मी नगमे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंकज उदास की गाई हुई इस गजल के साथ।

103.7 MHz पर आप सभी सुन रहे हैं FM शिमला। 2:15 होने को हैं और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे दोपहर समाचार। कृपया रेले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सो

0: दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
0: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश

0: में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज 2 मादा चीता को छोड़ा।

0: ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: तीस मिनट हुए हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम सबरंग का, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम शिखरों के स्वर का। कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं हिमाचली लोकगीत। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुनपति और लक्ष्मी के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

यह दिन हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और उन सभी लोगों को समर्पित है जो इस देश को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।

कोरोना महामारी के समय भी तकनीक ने मानवता की बहुत सहायता की। ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल पेमेंट्स और वैक्सीन निर्माण ने यह साबित कर दिया कि तकनीक कठिन समय में भी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।

श्रोताओं, आज टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सुबह के अलार्म से लेकर रात तक मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल शिक्षा, अस्पतालों की आधुनिक मशीनें, मौसम की जानकारी, खेती में नई तकनीक, हर जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रभाव दिखाई देता है।

दोस्तों, आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और डिजिटल सेवाओं में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस विस्तार ने पूरे के पूरे विश्व को एक साथ बांध दिया है। इसके कारण ही विश्व एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमाएं बिल्कुल सीमित सी रह गई है। यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ सर्विस सेक्टर, जो कि तकनीक के कारण ही चलता है, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमारे निर्यात में सर्विस सेक्टर का शेयर 50% के करीब पहुंच चुका है और ये आंकड़े हम आपको अप्रैल 2026 के बारे में बता रहे हैं। और ये सब संभव हुआ है तकनीक के विकास के कारण। ई कॉमर्स ने हमारे जीवन को इतना आसान कर दिया है कि हम कपड़ों से लेकर खाने तक को अपने घर तक मंगवा सकते हैं।

स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। आज भारत डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, UPI, 5G और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन दोस्तों, तकनीक तभी लाभदायक है जब आप उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए करें। हमें साइबर सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता और तकनीक के संतुलित उपयोग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि श्रोताओं, अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है। विशेषकर युवाओं के लिए यह दिन प्रेरणा का संदेश लेकर आता है कि वे विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ें और देश के विकास में अपना योगदान दें।

युवा साथियों, अब समय है एक छोटे से प्रेरणादायक संदेश का। तकनीक केवल भविष्य नहीं बदलती, बल्कि सोचने का तरीका बदलती है, जीने का ढंग बदलती है, आपके सपनों का सफ़र बदलती है और तस्वीरों का रंग बदलती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसका सोच समझकर इस्तेमाल करें, कुछ ऐसे कि इसका उपयोग हमारी क्रिएटिविटी को ठेस ना पहुंचाए, हमें सीमित ना करे, आगे बढ़ने दे, ना कि आलसी बनाए। तो आइए इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम तकनीक का उपयोग सकारात्मक कार्यों के लिए करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे और भारत को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी संदेश के साथ मैं पूनम ठाकुर आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे नई उम्मीद के साथ। सुनते रहिए 103.7 MHz आकाशवाणी शिमला के संग। नमस्कार।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। श्रोताओं आपको बता दें, मंगलवार यानी कि 12 मई 2026 को प्रातः 8:45 से आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जाएगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसका इस बार का विषय रखा गया है बदलते मौसम में त्वचा में होने वाले रोग। यदि इस विषय से संबंधित कोई भी आप जानकारी चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें मंगलवार यानी कि 12 मई 2026 को प्रातः 8:45 से 9:15 के बीच में फ़ोन कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर 2808034 या फिर 2808152 पर। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। विषय आपको एक बार फिर से बता देते हैं, बदलते मौसम में त्वचा में होने वाले रोग। फिलहाल चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको ये गीत कैलाश खेर और श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में।

तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब सुमन को दीजिएगा इजाजत और आप सभी यूं ही सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आइए सबसे पहले सुनते हैं चंबियाली कार्यक्रम।

चंप्याली कार्यक्रम सुनने वाले सारे लोगों जो बलदेव नेगी दा नमस्कार। श्रोताओं, अज असी चंप्याली कार्यक्रम के अंदर गलबात करनी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। सौगी सौगी असी गलबात करनी तकनीक का जरा प्रभाव है इस उपर। नमें ताज़ा समाचार तुसें सुनाने कने सौगी सौगी तुसें दा मनोरंजन कराना, शैल शैल लोकगीत सुनाई करी। अज दे कार्यक्रम की शुरुआत बिच तुस कन्ने सांझा करदे अज दे नमें ताज़ा समाचार। प्रदेश विच पंचायत जिहड़े चुनाव हैं तिन्हां वास्ते नां दाखिल करने दी अज आखिरी दिन, जिहड़े से बड़ी संख्या विच प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्र की जाँच कल 12 मई जो होनी ते 14 ते 15 मई जो नामांकन वापस लिते जा सकते। 15 मई जो ही उम्मीदवार जो चुनाव चिन्ह बंडे जाने। प्रदेश की 3754 ग्राम पंचायतों 31,182 पदों वास्ते जिहड़े से 26, 27 ते 30 मई जो तीन चरणों में जिहड़े से मतदान करवाया जाना। मतदान भ्यागा 7 बजे का लेकर दोपहरी 3 बजे तक चलना। इसी विच 4 नगर निगम ते कने कने 47 स्थानीय शहरी निकाय दे चुनाव जो लेकर भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष विच चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एक होर खबर है श्रोताओं कि चंबे जिले के भटियात उपमंडल के तुणुहट्टी लाड़ू मार्ग पर ककीरा दे नेड़े अज तड़के एक गड्डी दे दुर्घटनाग्रस्त होने कने 6 पर्यटकों की मौत हो गई ते 2 बच्चों कने 4 होर गंभीर रूप कने घायल हैं। घायलों जो टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती

जी श्रोताओ, ये लोकी सुने लेख रामपाल दी भाख विच। ते अभी असी अज गल करनी एक विषय पर से है कि भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। श्रोताओ, दिख देखी असा दे मुल्क बिच हर साल जैसे से 11 मई जो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता। मकसद है कि भाई विज्ञान ते प्रौद्योगिकी विच अपने मुल्क दी जड़ी सी उपलब्धियां हैं तिस जो जड़ा से इज्जत कने सम्मान देना है। ये दिन खास करी साल 1998 दे पोखरण परमाणु परीक्षण दी सफलता दी यादाश्त विच मनाया जांदा। इस दे कने भारत दी वैज्ञानिक जड़ी समर्थ्या है तिस दी भी पहचान इस कने से बदी जांदी है। श्रोताओं, इसी दिन भारत की पहली जड़ी से स्वदेशी विमान परियोजना से हंसा 3 ते कने कने स्वदेशी मिसाइल तकनीक की उपलब्धि जो भी याद किया जाता। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिन की शुरुआत साल 1999 तत्कालीन जड़ी से सरकार थी तिस द्वारा जड़े से शुरू किया गया था इसे मनाना। तो ये दिन असा जो श्रोताओं याद दिलाता कि विज्ञान ते तकनीक जो जड़ी हिन से मात्र असा दिखते कि मशीना तिकर से जैसे सीमित नहीं हिन, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संचार, पर्यावरण संरक्षण ते आपदा प्रबंधन बिच भी खासी इस जड़ी से भूमिका निभा दे। अज डिजिटल जमाने बिच दिखते कि भाई अंतरिक्ष खोजा, कृत्रिम बुद्धिमता जिसको AI बोलते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा ते स्टार्टअप संस्कृति जैसे मामले विच भी असा मुल्क जड़े से अगे बधे करता है, जिस विच दिखदे कि असा जड़े से प्रौद्योगिकी दा तकनीक दा जड़े से बड़ा ही बड़ा जड़े से एक रोल है, भूमिका है। इस मौके पर इस आज जड़ी से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों ते खास करी वैज्ञानिक जड़े संस्थान हैं तिना बिच जड़े से मती सारी संगोष्ठियाँ, प्रदर्शनियां, विज्ञान मेले ते जागरूकता कार्यक्रम इस उपलक्ष्य पर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के उपलक्ष्य पर जैसे किए जाते। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नौजवाना जो नवाचार वैज्ञानिका दे अंदर से जैसे आम मनों दे अंदर से वैज्ञानिक सोच ते कने कने जड़े से आत्मनिर्भर मुल्क बनाने वास्ते सबने जो एक जड़े से एक हौसला इस बिच मिलता, जिस मौके असी जड़े से ऐसे ऐसे खास दिन जो जड़े से याद कर दे। तो इन दिनों जो याद करने के कने कने जड़ी जड़ी उपलब्धियां इस क्षेत्र विच जड़े से होंगी तिन्हेरे जो वैज्ञानिक हैं जिन्हें सहयोग इस विच रहा है, जिस कने असा दे मुल्क जड़े से देश है तसेरी जड़े से पूरे विश्व स्तर पर जड़े से एक बखरी पहचान ते जिस बोलते कि एक आत्मनिर्भरता के कने कने दिखते कि भी असा भी एक जड़े से परमाणु शक्ति बनी करी उस परमाणु तकनीक का इस्तेमाल जड़े से दुनिया जो आगे ले जाने वास्ते जड़े से करने दे, जैसे जड़े से एक शब्द लेंदे ते असी वैश्विक जड़े से मंचा पर जड़े से सबने का जड़े जड़े से ताकतवर देश हैं तिन्हें देशों के अंदर असी अपनी एक खास जड़ी से जगह बना दे। तो ऐसे ऐसे जो मामले वास्ते, ऐसे ऐसे टाइम जो जड़े से मनाने वास्ते, ऐसे ऐसे जड़े से वैज्ञानिकों के सहयोग जो जड़े याद करने वास्ते राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जड़े से असा जो जड़े से अपने आप में एक बखरी पहचान करने, एक गौरवान्वित महसूस करने का एक मौका प्रदान करता। तो श्रोताओं, ये थी गलबात राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। अब असी एक होर लोग सुना, फिर असी गलबात करते होर विषय पर।

जी श्रोताओं, राजकुमार दी राज प्रभाकर दी भाग विच इस ने तुसी लोकगीत ते अब असी गलबात करनी श्रोताओं एक होर विषय पर जेडे असी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में गल की ते तिसेरे कने मिलदा जुलदा ही विषय अज असी चुने दा चर्चा वास्ते कि भई तकनीक दा प्रभाव। श्रोताओं अज दिखते कि भी अज असी तकनीकी युग या जमाने विच जिया करते हैं। इस तकनीक कने विज्ञान ने जड़े से इसे जड़ी तरक्की हुई दी है, इस कने मनुवंदी जड़े से जीवन है, जिंदगी है, तिस जो बड़ा ही आसान

और दिख देता भाई डिजिटल भुगतान प्रणाली अस आम मनु नजरिए कने दिख दे कभी जी हाँ UPI नेट बैंकिंग मोबाइल बटुआ जिसे बोल दे ने आर्थिक लेन देन बड़ा सो खाते कने पारदर्शी बनाया है। आज दिख दे कि भाई इस कने स्टार्टअप संस्कृति बिच रोजगार दिन नए नए मौके पैदा किए जाए का दिन किसानी बिच भी ड्रोन मौसम दी जानकारी भविष्यवाणी यानी ते नोई नोई मशीना कने उत्पादन क्षमता भी बधे कर दी है। ते ए कुते न कुते जड़े से असी दिखते कि प्रत्यक्ष कने अप्रत्यक्ष तौर बिच असन दी अर्थव्यवस्था जो जड़े से कुते न कुते सहायक हैं या मददगार हैं। ग्रामीण तरक्की दी अस गलबात कर दे ते छोटे छोटे ग्रां स्तर पर भी दिखते कि भाई ई गवर्नेंस ई शासन ऑनलाइन जड़े से सहूलत दे कने जड़े से प्रशासनिक काम बिच जड़े पारदर्शिता बधी है। ग्राने दा मतलब है कि छोटा मोटा जड़े से प्रमाण पत्र जिस मौके लेने वास्ते पंचायतां या ब्लॉकों के चक्कर कटने पैंदे थे अबे जड़े से ऑनलाइन ही तुसी इसे आवेदन करी करी जड़े से इस प्रमाण पत्र जो जड़े ऑनलाइन ले सकते ते मत सारी मोबाइल ऐपा के माध्यम का जड़े से असी अगर असी किसानी करी कर दिन ते बाजार के जड़े मूल्य हैं असां दी खेती दे मौसम दे कने कने सरकारी मदद जड़ी सी दी जानकारी असी हासिल करे करदे हन तो तीस हिसाब कने जड़े से अपनी असी जड़े कृषि संबंधित गतिविधियां जो जड़े से आगे अपना अमली जामा पहनान दे। अभी देख दे कि भाई इसेरा प्रभाव भौगोलिक स्तर पर भी इस तरीके कने कि भाई इस तकनीक दी ताकत ते सुरक्षा दा एक जड़े से खासा आधार बनी चुकी दी हन। साइबर सुरक्षा कृत्रिम बुद्धिमता अंतरिक्ष तकनीक ते रक्षा तकनीक मुल्क की जड़ी से रणनीतिक क्षमता जो प्रभावित करे करती है। दुनिया स्तर पर दिखते कि भाई डेटा की हिफाजत साइबर हमले ते तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी जड़ी से असन के सामने नोई नोई जड़ी सी चुनौतियां बनी करी उभरी दी हैं। तो दिखते कि भाई ये जड़ा तकनीक का प्रभाव दासी जिस मौके पूरा आकलन कर दे ते मती सारी जड़ी से सहूलियत असी मनो वास्ते बनी दी है या असी मानव समाज के अंदर जड़े बखरे बखरे इदारे हैं चाहे से कोई सरकारी दफ्तर है चाहे से असा दे दिन दैनिक जड़े से कामकाज हैं चाहे से असा दे ग्रामीण स्तर पर जड़े कामकाज हैं चाहे से प्रशासनिक स्तर पर कामकाज हैं चाहे हम असा कोई ऐसा वित्तीय लेन देन बैंकिंग ये रोजमर्रा की जड़े से काम धंधे हैं तिने जो मत सारा सौखा जड़े से आज की तकनीक ने किते दा है। लेकिन मत सारी ऐसी चुनौतियां भी असन के सामने हैं जिस विच डिजिटल विभाजन हले भी जड़े से एक बड़ी बड़ी दिक्कत है जिसको डिजिटल विभाजन यानी डिजिटल डिवाइड जिसको बोलते कि जिते कई ग्रां ते गरीब मनु इन तकनीकी फायदे या सहूलत का जड़े से हले भी वंचित हैं। साइबर अपराध फर्जी सूचना ते डेटा दी जड़ी सी गोपनीयता जैसी मुश्किल भी जड़े से टाइम दे कने कने बधे कर दी हैं। रोजगार दे कुछ पारंपरिक क्षेत्र बिच असी दिखते कि भई जियां ऑटोमेशन आई गई स्वचालन जिस बोलते AI दा उपयोग है तिसदा प्रभाव भी कुते ना कुते जड़े से असां दी जड़े से रोजगार दे उपर जड़े से दिखे करते हैं कि पैया करता है कि जो कि असां दा मुल्क जड़े से एक बोली सकते कि भई एक बड़ी जनसंख्या है जिते जड़े से रोजगार एक बड़ी बड़ी एक समस्या भी है ते असा दिखते कि भाई असा दे जड़े से मुल्क दे अंदर सब ने जो रोजगार मुहैया कराना सरकारां दा इतना ज़्यादा मतलब बश दी गल भी नहीं है पर कुछ ना कुछ ऐसी दिखते कि जा तकनीकों का इस्तेमाल दे कने कने कुछ ना कुछ सिरे असा दे रोजगार पर भी कोई मतलब असर तो सिरा पैंदा से दिखे करते हैं। तकनीक दे उपयोग बिच नैतिकता दे कने कने मानवता मूल्य जो जड़े से बनाई रखना एक बड़ा जरूरी है कि असा जो तकनीक का प्रभाव है ते सेरे जड़े से जिस बोलते कि खरे खरे जड़े सेरे फायदे हैं से अस लेने चाहिए पर ऐसे इस वजह कने जड़े से चुनौतियां हैं तिना का दा सामना करने वास्ते भी अस जो तैयार रहना चाहिए ते असा दे समाज के अंदर तकनीक का प्रभाव दुनियादारी जो अगे बधाने वास्ते आर्थिकी जो अगे बधाने वास्ते रोजगार जो अगे बधाने वास्ते किते जाना चाहिए ते एक एक जिस बोलते कि बैलेंस जैसे अस जो अपने समाज के अंदर तकनीक का उपयोग करने दे टाइम जो अस जो सुनिश्चित करना चाहिए। श्रोताओं ये थी गलबात।

अभी आप सुन रहे थे चंबियाली कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं मंडियाली कार्यक्रम।

सभिनी सुने वारे जो राकेश सिकलानी जी नमस्कार। आज तुसा जो लोकगीत भी सुनाने कने जी मंडियाली व्यंजन।

नूर पकवान। और भाई मधुमक्खी पालन इदी बारे गलबात होनी ता जी देखा सबनी दे पहले आसा माता री बिंटा दे कार्यक्रम मेरी शुरुआत करनी ता जी सुना ए बेंट।

जी तुसे सुनी मातारी भेंट, आवाज़ थी राजेंद्र कुमार शर्मा री। ताजी हूँ असा गलबात करनी भाई मंडियाली व्यंजन और पकवान। भाई असे सब जाना है कने ये जो मंडियाली व्यंजन और पकवान है भाई देशा दुनिया जो प्रसिद्ध है कने भारत री संस्कृति मंज भाई बहुत सारी रीति रिवाज परंपराई कने भाई हिमाचल री संस्कृति मंज देखा एक जो आ सारी संस्कृति से मंडी इलाके री भाई अपनी अलग पहचान ही। भाई हिमाचल री संस्कृति मंज मंडी इलाके री भाई देखा जो ये व्यंजन और पकवान है भाई ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है कने भाई यदि बोली मंज भाई लोकगीत रीति रिवाज भाई पारंपरिक भोज और मंडी जिले जो भी देखा भाई छोटी काशी भी बोला है कने धार्मिक तौरा पर और स्वादिष्ट व्यंजन कठ भाई प्रसिद्ध है आसारा मंडी जिला भाई कने किस भी इलाके री संस्कृति जो समझने कट्ठे भाई सभी दे पहले भाई तिथरा रहन सहन भोजन व्यंजन जो देखा भाई जानना जरूरी हुआ कने मंडियाली व्यंजन मंज पहाड़ारी सादगी भाई प्राकृतिक स्वाद पुरानी जीने री कला दिशा ही भाई कने रहा भाई मंडी रे भोजन मंज देसी घी दही दाला मसाले और ना ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ भाई कारण भी यही है भाई मंडियाली जो व्यंजन है जो भोजन आ से स्वादिष्ट होने के सौगी भाई स्वास्थ्य वर्धक हुआ कने मंडी ला करे भाई पारंपरिक व्यंजन री चर्चा भाई बिना दामा दे भाई अधूरी मनी जाई कने एड़ा भाई देखा दाम हिमाचल री प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन आसे सब जाने भाई ब्याह कारज धार्मिक और देव समारोह मंज भाई ये बनाई जाई कने एड़ा जी भाई और दाम पतला मंज परोसी जाई कने देखा तेस्टा में बढ़िया भी लगा हाँ भाई धाम जो बनाने रा काम खास रसोईयों है ये इना जो भाई बोटी भी बोलाया से कने दामा मंज चौल राजमा मारी दाल कड़ी चने री दाल भाई और मीठा भात सेपू बड़ी और कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाए भाई आ सारे मुल्खा ये दाम भाई स्वाद कठे और प्रेम और मेहमाना रे सत्कार कठे भी देखा बहुत बढ़िया है कने और मंडियाली मंज सेपू बड़ी एक भाई खास व्यंजन कने भाई ये जो सेपू बड़ी आई भाई इधरी जो मांग ही पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा है भाई सेपू बढ़िया भाई देखा एक उड़दारी दाला दे बनाई जाई दाला जो पीसी कने बढ़िया तैयार हो करना पोहा कने पालक और हरी सब्जी वाली ग्रेवी मंज पकाया जा कने रहा भाई एक ही बारी खाने के बाद बार बार खाने जो देखा मन करा कने मदरा देखा भाई मंडीरा बहुत लोकप्रिय व्यंजन आ मदरा चने री दाला दे बनाई जाई कने इधी मंज दही और देसी मसाले रा इस्तेमाल हुआ कने थोड़ी थोड़ी आंचा मंज पकाया जा कने मदरा खाने मंज बहुत स्वादिष्ट हुई कने मंडी रे कई पहाड़ी इलाके मंज भाई एक व्यंजन और बनाया जा हाँ से भी देखा सब जाना है सिड्डू एक प्रसिद्ध पकवान आ भाई गेहूँ रे आटे दे बनाया जा है भाई इधी अंदर बराई देखा भाई अखरोट और दाला री पाई जाई कने इधी जो भाई भापा मंज पकाए और घी कने और भाई चटनी कने जो परोसिया जा भाई कने ये व्यंजन भाई शरीर जोर जादे हैं कने गर्माहट भी दें और सर्दियाँ मंज और ठंडे मौसम मंज ज़्यादातर भाई ये पकवान बनाया जा कने एड़ा भाई मंडी रे जो व्यंजना मंज बाबरू रा एक स्वादिष्ट और जो आ सारा है भाई पारंपरिक पकवान कने देखा भाई और एक चौड़ी सही लगा भाई कने भाई जे भी मन करा भाई तेबे बनाया जा अगर इमली पुदीने री चटनी कने सौगी स्वाद और बधी जा कने भाई देखा पटांडे तासे सब जाना है मंडी इलाके रा भाई देखा ये भी व्यंजन है खास और भाई देखा से घी और शादा कने भी खाई सका है कने मंडी संस्कृति में देखा भाई जो असरी मंडियाली संस्कृति भाई त्यौहार जो देखा खास मनाया जा कने असरे कोई

कोई त्यौहार लग रहे हैं भाई, कने मेले भी लग रहे हैं। हर त्यौहार मंज कोई ना कोई देखा पकवान जुड़ रहा हुआ, कने भाई ब्याह कारज मंज और धामारा बनाया जाना और सामाजिक एकता भाईचारे का प्रतीक है भाई। सब मिली जुली कने भाई धामा जो निभाएं कने आए, सब मिली जुली कने भाई बैठाएं और कने सब ग्राम वाले भाई देखा ईद मंज हिस्सा ले हैं। जेबे कोई भी आसारे ग्राम मंज त्यौहार हुआ कोई भी पर्व हुआ और मैं माना रहा स्वागत हो भाई देखा काफ़ी ज़्यादा आसारे ग्राम मंज देखा मंडी इलाके ज आज भी ये परंपरा माणुआ जो भाई देखा अपनी संस्कृति दे जोड़ी कने रखा ही भाई। कनेड़ा भाई देखा मंडी इलाके मंज ज़्यादातर देखा दाड़ा नाजरा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और अपने डोरिया देखा भाई दाला नाज सब्जियाँ और भाई देखा बिजरी हुई देखा से तरह से पौष्टिक हुई भाई किना से भाई देखा ज़्यादा इस्तेमाल कराएं से बढ़िया भी हुई। नवा जमाना देखा भाई फास्ट फूड का जो चलन आ से ज़्यादा हुई गया, फिर भी देखा भाई मंडी रे माणू भाई और रहा भाई देखा भाई पारंपरिक भोज जो नहीं भूल दिया से कने भाई नौजवान पीढ़ी भी पारंपरिक भोजरी तरफ हो भाई ध्यान लग रही देना कने भाई देखा बड़े बड़े होटल और कई समारोह मंज मंडियाली व्यंजन वो जो पकवान है भाई जो भाई जो परोसे जाए कने बढ़ावा भी देना लग रहे भाई कने इधी दे देश विदेश रे भाणु मंडियाली व्यंजना जो भाई जानी सको भाई यही मकसद आ भाई। कने भाई आसा जो पारंपरिक भोज और संस्कृति जो सेज कने रखना संभाली कने रखना एक भाई देखा आसो जरूरी हो गया भाई। जो आसारी संस्कृति आसारी जो परंपराई और ये आसारी भाई पहचान कने मंडियाली व्यंजन स्वाद नहीं बल्कि भाई आसारी विरासत ही कने और संस्कृति लोक परंपरा रहा भाई देखा जीवंत रूप आ भाई। कनेड़ा भाई देखा व्यंजन एक ही दूजरी संस्कृति जो समझने और सम्मान देने री परंपराई जो कई सदियों से चली आई रही कने मंडियाली व्यंजन भाई आसा जो सादगी और अपनापन भाई कने और देखा प्राकृतिक रूपा से जीने रहा देखा संदेश दे। ताजी ये तुसे जी थोड़ी जी गलबात सुनी जी तासा सुनना जी लोकगीत ताजी सुना ये लोकगीत।

जी तुस सुनया बारामासा आवाज थी गुरुन शरण भारद्वाज और हेमराज चंदेल री। ताजी देखा हूँ भाई आसा भाई गलबात करनी भाई मधुमक्खी पालन। आ सारे मुल्खा भाई ज़्यादातर माणू कृषि बागवानी पर निर्भर है कने भाई किसानी बागवानी दे जुड़ रहे काम काज मंज ग्राम रे माणू भाई अर्थव्यवस्था मज भी दे चलाई भाई देखा ये जो कृषि बागवानी।

कहने भाई किसानी बागवानी कहने सोगी एक और व्यवसाय मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन बेरोजगार माणुआ कट्ठे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रोजगार आ भाई। मधुमक्खी पाल दे भाई काफ़ी ज़्यादा फायदा होना, कने शहद उत्पादन कट्ठे इतने किसान बागवाना री आय बधाने और पर्यावरण संतुलन जो भी देखा भाई मंज देखा है सहायक हुए, कने और किसान बागवाना रे बाग बगीचे मंज भी परागण रा काम करें ये मक्खिया। कने भाई ये जो मधुमक्खिया ही और भाई कने ये जो फला रे डाल बूटिया मंज उत्पादन भी बदा, कने जो देखा बागवानी में जो देखा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी जा। कने एड़ा भाई देखा सभी दे पहले मधुमक्खिया जो रहने कठे लकड़ी रे बक्से री व्यवस्था करनी हुई, कने इन्हा बक्सिया मंज मधुमक्खी अपना छत्ता बनाई और भाई देखा इधी मधुमक्खिया भाई जो बक्से में भाई इध मंज फिर से शहद इकट्ठा कराई भाई। कने भाई गांव रे नौजवान और किसाना जो रोजगार रे नए मौके भाई मिला है दे भाई देखा मधुमक्खी पालन दे। कनेड़ा भाई मधुमक्खिया प्रकृति री बहुत बढ़िया भाई जीवा, ये भाई मानू रे देखा भाई मित्र कीट हुए। कने फूला रे भाई जो फूला रा रस हुआ इध जो इकट्ठा कराएं, कने भाई देखा इधे शहद बना। शहद एक पौष्टिक और औषधीय गुणा दे भरपूर और शहदारा उपयोग भोजन और दवाइया मंजुआ भाई। इधर अलावा मधुमक्खी परागण मंज भी देखा दे काफ़ी ज़्यादा फायदा मधुआ और मधुमक्खियाँ भाई फूलारा रस लई कने एक एक ही फूला दे दूजे फूला जो तक जाई भाई, कने इधे उत्पादन भी बड़ा। कने और मधुमक्खियाँ पालने दे बागवाना जो देखा दोरा फायदा मिला, एक ता देखा शहदारा उत्पादन हुआ, दूजा फसलारी पैदावार भी हुई और भाई देखा तीजेड़ा भाई देखा से मोम जो भी बेच सका इधे मोम भी बना भाई ये छत्ते में मधुमक्खिया रे। मधुमक्खी पालन कट्ठे देखा ज़्यादा जगह जमीना की जरूरत नहीं होंगी, कने इधी जो भाई देखा छोटे स्तर पर भी शुरू कर सका है। मधुमक्खी पालन कट्ठे साफ सफाई सुरक्षा का खास ध्यान रखना भी जरूरी हुआ, कनेड़ा भाई देखा बक्सेरी जांच करते रहना ठीक रहा भाई मधुमक्खिया जो कोई बीमारी तो नहीं लग रही भाई, कने इधी जो कोई इधे बचने रे उपाय भी करने जरूरी हुए, कनेड़ा भाई देखा कोई कीट हुए से भी देखा ना मधुमक्खियाँ भी खाई जाए। शहद भाई देखा इना देखा ये जो मधुमक्खिया ही बहुत बढ़िया शहद बनाए जो भाई एक भाई दवाइया रे काम भी आ। और भाई एड़ा देखा भाई छत्ते अंदर काफ़ी ज़्यादा रसू हाँ कने इधे शहद तैयार हुआ ते भी बड़ी सावधानी कने ये शहद निकालिया जा, कने मधुमक्खी पालन दे काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ भाई शहद जो बेची कने भाई असे फायदा ले सकें, कने शहद जो बाजारा मंज बेची कने डब्बे भी कमाई सकें। और देखा भाई इधर अलावा कने मोमबत्ती और दवाइया और सौंदर्य प्रसादन मंज भी शहदारा इस्तेमाल हुआ, कने इधे देखा ग्राम रे इलाके मंज भाई रोजगार मिल सकें भाई, कने और जो भी रोजगार दे सकें भाई। सरकार भी मधुमक्खी पालन कट्ठे और भाई बढ़ावा देना लग रही, कई सारी योजना चलाना लग रही, प्रशिक्षण अनुदान उपकरण भी दिते जाएँ और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड भी इधर विकास और प्रोत्साहन कट्ठे काम लग रहे करना भाई, कने सो जो भाई देखा इधर जानकारी होनी जरूरी। इधरा मकसद भाई देखा व्यवसाय जो बढ़ाना और रोजगार जो बढ़ाना और किसान बागवानी री आय जो बढ़ाना। मधुमक्खी पालन एक आसान और लाभदायक आ और कने देखा भाई इधरा फायदा भी आसा जो और इध दे जो अर्थव्यवस्था है या सारे मुल्क हरी भाई देखा मजबूती आई और मुल्क हरी प्रगति कट्ठे और देखा भाई यहाँ से योगदान दे सकें, अगर असे अपना देखा भाई सही ढंग रहा व्यवसाय कर गए ता जी देखा थोड़ी जे तुसे गलबात सुनी जी ता उन सुनना जी ऐसा लोकगीत ता जी सुना जी ये लोकगीत।

जी तुसें सुना लोक गीत आवाज थी गोपाल शरण ठाकुर री। तई देखा मंडियाली कार्यक्रम मारा वक्त पूरा होना लग रहा। आ गया देवा नमस्कार।

जी सुनने वाले हाजरा फिर अखबार तुम अपने मनपसंद पंगवाली बोली कार्यक्रम घिन के तुम से भी सुनने वाले के आज के इस कार्यक्रम अंतर अखबार फिर स्वागत करते सुनने वाले जिन तुम से यह पता है कि हाँ कार्यक्रम आकाशवाणी जे प्राइमरी चैनल है मीडियम वेव जस बते तस जो साते साते आकाशवाणी एफ एम चैनल पर भी तक 104.7 मेगाहर्ट्ज़ से फ्रिक्वेंसी है साते साते तुम ये कार्यक्रम डी टी एच त मोबाइल ऐप पर भी सुनते सुनने वाले हैं जो पंगवाली बोली कार्यक्रम है हफ्ते अंत चारों सुमारे बजते शंचरे बेल दे 5 बज के 20 मिनट पर शुरू करते हैं 5 बज के 50 मिनट तक पंगवाड़ी बोलिया कार्यक्रम चलता इस दौरान अस तुम जो डख वोख लाते जे भी दियर विषय बूते जी तस्ते और साथ ही साथ देशी प्रदेशी खास खास खबर और अवल अवल घी तैयारी की आवाज़ अंतर अस छांट के तुम्हारी गीते सुनाते आज भी कुछ ऐसा खास घी तैयारी की आवाज़ अंतर तुम्हारी गीते छांटो रहे और जे डख वोख अस लानी अस्ती से कि अपनी बोली अपनी पछाण तथा जे पंचायती राज वाली संस्था अस्ती और ग्रह तरक्या जो करनी जरूरी है इस बारे गल लानी अस्ती शुरुआत अस अख बेदे दिन लोक गीत जो कते फिर लाते तुम जो डख वोख तो सुनते मिल के इस लोक गीत

जी सुनने वाले राज प्रभाकरे आवाज़ अंतर अभेद्य जिन लोकगीत तुम सुनो उम्मीद करते तुम पूरा आनंद इस कार्यक्रम में नैन लगोरे डख वो खां सा लाणी अस्ती तुम जो अपू बोली अपू पिछाण असा बोलन थोड़ा आसान भी बुतू इठा किसकी अपने बोलिया गल कर लगोरे और अपने जे पिछाण अस्ती से भी कुड़ी ने कुड़ी इस बोली कारण है बनो रही अस्ती लेकिन यह गल सिर्फ असा दी नहीं है सुभियाँ की ततरी सुसर अस्ती जतरी की बते दुनिये मैन जस्ते से अपनी बोलिया पुट जस्ते से फक्र करते और बोलिया जे जरूरी जे पिछाण अस्ती तस वास्ते से दुनिया अंतर कई लड़ाई भी हैं झगड़े भी हैं बड़े बड़े युद्ध भी हैं और आज के टाइम भी अस हेते कि दुनिया अंतर इन्हें मते जगह अस्ती मते समुदाय अस्ते मते जे अस्ते से बोली बोलने वाले मैन अस्ते जे इस खातिर बड़ा भारी कम कर लग रहे अस बोलन दी अस पंगवास्ते पंगवाड़ी हैं बोली अस्ती कुछ मैना है बताने भी खारू लगतू फकर भूत और कुछ मैना छिपाने भी ढब लगी रहा अस कई बार हेते कि जे मैन जे अस्ते से अपने ग्रां अलग अलग चीज़ के रील बनाए बनाए के संस्कृति ना अंतर रोज़ बेर लगाते और से ही आपू बोलिया जस्ते से बो के कन हेरे जस्ते से कुड़ी ने कुड़ी शर्मी थे इसके अस थोड़ू बेर न सुने रही किसकी बोली बचाने वास्ते सिर्फ असा काम नहीं करने लग रहा दुनिया से भी हाँ बड़ी बड़ी संस्थाएं जस्ती जे दुनिया बड़ा संगठन बनी तो जे पूरे दुनिया अक्कने गल करते जड़ी मते देशी के जस्ते से बते देशे जे मुखिया आस्ते से मिली के तड़ी अगर गल करते कि इन्हें बारे से दुनिया कनी बसाने आस्ते और कनों ऐसा काम करने वास्तु कनी दुनिया अंतर अलग अलग तरक्की काम मिली के करने आस्ते कने कने शांति बनाने काम ऐसा मिली के करने आस्ते कने कने इस बते दुनिया के इस धरती के अगर घाय के भी ऐसा बढ़ के भी काम करने आस्ते तने जे यूएनओ वाले के जो संयुक्त राष्ट्र संघ आस्ता तने जे संस्था आस्ती है ना यूनेस्को से भी यानी जस्ते से बचान पुट लगातार काम करने लगो रही और एनू बताते कि जे अलग अलग देशे जे बोलीने वाली जे बोली अस्ती जे भाषा अस्ती तस पुट जे कम कत कत है ना भी पता लगता कि भाई कस जगह से जस्ते से बोलने वाले अभी शर्मीण लगो रहे तने बोलने वाले घटन लगो रहे तो हिमाचले जे चौर अलग अलग बोली जे गणीरी संतर जे यूनेस्को बाड़ेंगे जे अलग अलग सर्वे बूते अलग अलग जे अस्त से ऐसे बारे जानकारी हासिल करते तो साहब जे पंगवाड़ी बोली भी अखनी बोली बच शामिल अस्ती जैसे जे खत्म होने जे खतरा अस्ता तैसे बल्ले बल्ले जस हिंदी अंतर्गत विलुप्त हो गई थी भाई मुकी गई थी भाई मुकने का गार पुठाए तो तै साहब जी अगर अस अपने बोली भी कना रहे थे तो किसके आवे मैं जैसे से ज़्यादा कठिन जगह होने कारण जैसे जनी जनी पुगत हो गई जनी जनी सहूलियत हो गई बेर नसने लगे बेर नसने लगे तो तैड़ी तैन जो पंगवाड़ी बोलने वाले घट रहे ज़्यादातर जैसे से हुरी बोलिया या हुरी भाषा या अंतर जैसे डख बोक करने वाले ज़्यादा रहे और कुछ ऐना भी रिवाज बन गया कि जे हिंदी और अंग्रेजी खारी जानता से थोड़े खरे गणित और जे का अपने बोलिया गल करता से थोड़े पतलियर जने गणित भाई पिछड़े जगाई के ब्यूथ पे तो सावज जो आसा ऐसा कोई अपने अपनी राय भी जस्ते अपने अपनी मनस्थिति से बनी गई थी कि भाई ऐसा ऐना सामने आपू बोलिया ना बोलना भाई अस जैसे अस बते होरी जगाई गणित भाई अस पतल छटोरे मैना बिच गणित जबकि अस भी है जो बराबर हस्ते अस लाण खीण आने जो बराबर आए झोने कपड़े अस भी तेने जो बराबर डबन लगो रहे और घरे भी अस महली के जिन्हें बनाई थे रहे तो फिर बो के अगर

जी सुनने वाले ब्रुटलियस गीत रजनीचंद्र लान लगो थी और सगर बढ़ते थोड़े जिन्हें डक बोख लाते तो हाँ जी हैं जे पंचायती राज वाली जी संस्था ये और तरक्की कम काज जो जुड़ो रही गल। सुबह के पहले तो सुनने वाले हो ये बताना जरूरी है कि हैं जे देश है ऐ ग्राही के देश गणिता देशे अबैदियक बड़ा हिस्सा जस्ता से ग्राएं इलाके अंतर बसता इस वास्ते तरक्की जे देशे तरक्की जे बुनियाद अस्ती तसे जे एक बुनियादी शिल जस्ती से बते ग्रां गणित इस मकसद जो जे पंचायती राज व्यवस्था ते मजबूत करने वाले जस्ते से अभियान खासे चले अलग अलग टाइम पुठा संतर अलग अलग कम भें मैणु के भागीदारी बढ़े तरक्की कम पुटसे भयंके जस्ता से बते हिस्सेदारी भे इस पुट जस्ता से लगातार काफ़ी कम भ पंचायती राज संस्थाएँ या जसपुत अंश लोकतंत्र या फिर पजी तंत्र जस्ता से ऐसे भयंकियाँ जे नुछोटी वाली जे संस्था अस्ती से पंचायती गणिती ग्रां अंतर जनी पंचायत भूति फिर जे ब्लॉक स्तर अंतर पंचायत समिति और जिला स्तर पुट जस्ते से जिला परिषद एच आर जस्ते से खास स्तंभ वाई खास खम जस्ते पंचायती राज बारे एन एस भें के जे माध्यम जे चाहे ग्राएँ तरक्की गल भई जने की सड़क है पानी है साफ सफाई है पढ़ाई गल आई खेती बाड़ी गल आई जलहणु की मजबूती वाली गल अस्ती या छोटे मोटे रोजगार वाली गल अस्ती एने मते कम जस्ते से पंचायती के जे माध्यम जैसे पूरे रीते पंचायती राज व्यवस्था से भयंकर बड़ा जे कम अस बोल सकते कि लोकल जे मैन अस्ते स्थानीय स्तर पर जस्ते से कम काज जे भूता तैसे बारे जस्ते से विचार विमर्श करके सुझाव दी करके इससे से ग्रह में आम मैन भी दे सकता ग्राम सभा के माध्यम जे ऐसे मतलब कि वहाँ की अगर पंचायती राज संस्था अस्ती अगर तना बढ़िया कम अगर अस समझे कि भेज सकनों के भेज सकता तसे जे ग्राम वाले के मिली जुली के आपस बच डख बोक करके आपस बच सलाह मशूरा करके और जे सलाह मशूरा करने डख बोक करने और ग्रां दी की कम बोरा लेड़ी की जरूरी स्तर का कम पहले करना का बाद बच करना ऐसे जस्ते से यानी फैसला करने वास्ते जस्ते से अख खास जे व्यवस्था अस्ती तस्नों बते ग्राम सभा ग्राम सभा ही अंतर से फैसले बुते अगर सच्चाई मने इस पर थोड़ा अमल करे इस पर थोड़ा कम करेल तो जे पंचायती हो रहे जिन मेहनत बुते चाहे से वार्ड पंच अस्ता चाहे से प्रधान अस्ता चाहे उप प्रधान अस्ता ऐसे काम कर दिया अगर कि भाई पंचायत अंतर पूरे ग्रह तरफ इस काम अगर करने तब जैसे अगर न्याने वाले भी पंचायती फैसले करने वाली ग्राम सभा बुते अगर ऐसा समझ गए ग्राम वाले और अगर इस पुट पकड़ मजबूत भई गए तो ग्रह तरक्की कोई ना रोक सकता और ऐसे वास्ते ऐसे इंतजाम किया रहा कि भाई आंस फैसले जस्ते से ग्राम सभा यंत्र करे एज ए ग्राम सभा जे फैसले किए तस पुठागर का काम करे तस वास्ते नुमाइंदे जस्ते से चुनी ते जनु की अचिल चुनी लगो रे जे सुभ्या के छोटे स्तर पर जे नुमाइंदा चुनी तो अपने एक छोटे ग्रां जस वार्ड भी बते जे शब्द पंचायती राज व्यवस्था यंत्र दे रहा वार्ड अंतर जे चुनी रू तो से छोटे जने ग्रां जे हैं अख ग्रह एक ही जगह अस भूते तठणी बारे से सोचता और से तठणी बो के अगर नहीं था पंचायत तकर ग्राम सभा तकर फिर पंचायत तकर फिर तस्के अगर चाहे से पंचायत समिति स्तर तकर या जिला स्तर तकर तस पुजानी या फिर तस्के अगर और जे पंचायत जे बनोरी भूते ऐसे जे नुमाइंदे जे वार्ड वाले से पंच सरपंच और साथ पंचायत वाले जे प्रधान अस्ता उप प्रधान अस्ता या तड़ी जे सरकार एक नुमाइंदा भूता

धारे कुण धारे ब्याई धिया मन मोरिए। राकेश कुमार चसगवाले आवाज अंतर बेद जनू पंगवाली लोक गीत तुम्हें सुनू। सुनने वाली वे घड़ी भी शारकन लगोरी। मूँ करताप सिंह ठाकुर पंगवाली बोली कार्यक्रम पूरे ने दे इजाजत। तुम से भी झमेली नमस्ते जी।

0: कमलेश कुमारी की आवाज में अभी आपने ये लोकगीत सुना। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी, आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए अनेक कदम उठाए हैं और इसके खिलाफ एंटी चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये अभियान एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहाँ पंचायत स्तर पर भी चिट्टा के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
1: प्रदेश में चिट्टा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। हिमाचल सरकार द्वारा एनफोर्समेंट, सप्लाई रिडक्शंस, डिमांड रिडक्शंस तथा हार्म रिडक्शन के सभी पहलुओं में पर एक साथ रूप से कार्य करना शुरू किया है। मुझे गर्व है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा तस्करों एवं इसका नशा करने वालों की पहचान कर अब तक लगभग 12,000 व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश की 3600 पंचायतों में से 234 पंचायतों में चिट्टा के सेवन करने वाले पाए गए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चिट्टे में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है और अभी तक 123 कर्मचारी इन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें से 31 को बर्खास्त कर दिया गया है।
1: जो 123 के करीब सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, पुलिस में 21 कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए थे। पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के 13 है, एजुकेशन के 10 है, बैंकिंग सर्विसेज के 9 है, जेएसबी आईपीएच के 9 है, जो यहां आर्मी और नेवी में काम करते रहे होंगे उनके 8 है, एचआरटीसी के 8 है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 6 है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 6 है। टोटल 122 है, जिसमें से 31 को टर्मिनेट कर दिया गया है। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में लोग शामिल है, जब उनकी एडमिशन्स होगी, हर साल उनका चिट्टे का टेस्ट किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में चिट्टा मुक्त अभियान का दूसरा चरण 1 जून से 20 अगस्त तक चलाया जाएगा। प्रदेश में 4 नगर निगमों सहित 47 नगर निकायों के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर समर्थन जुटाने में लगे हैं। सोलन नगर निगम की कुर्सी को बचाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया और रोड शो के माध्यम से वोट की अपील की। विनय कुमार ने दावा किया कि कांग्रेस को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और नगर निगम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत होगी।
2: डिफरेंट वार्ड में जाने का मौका मिला तो अच्छी पोजीशन में है और लगभग हम 10 से 11 वार्ड यहाँ जीत रहे हैं। हमारे उम्मीदवार है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो दोनों ही बहुत अच्छी तरह से चुनाव को लड़ रहे हैं।
0: उधर कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने दावा किया है कि नाहन क्षेत्र की चारों जिला परिषद सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। वे आज नाहन क्षेत्र के त्रिलोकपुर और बनकला वार्ड से पार्टी प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने के अवसर पर बोल रहे थे। पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार 4 लाख पेंशनरों के पेंशन व भत्ते जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी व अन्य भत्ते नहीं दिए गए हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घनश्याम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों व पेंशनरों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में वित्तीय प्रबंधन चरमरा गया है और महंगाई भत्ते की 15% किश्तें लंबित पड़ी हैं।
3: 16 से लेकर 2021 तक लोग सेवानिवृत्त हुए, उनकी आज दिन तक लीव इन कैशमेंट, उनकी ग्रेच्युटी, उनके जो ड्यूज थे, सरकार ने नहीं दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सरकार पैसे के फजूल खर्ची कर रही है, ये सारे का सारा पैसा प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों और कर्मचारियों का है। इस सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन वो इस तरह से चरमरा गया है कि इस सरकार को यही समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या और क्या नहीं करें। एचआरटीसी के पूर्व कर्मचारी हमारे साथ बैठ, अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है, आज कितनी तारीख हो गई। आप
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात अंधड़ सहित बारिश, जबकि ऊंची

0: टोपियों पर हिमपात हुआ है। ऊना जिले में तूफान के कारण बिजली के 886 ट्रांसफार्मर ठप्प हो गए हैं, जिससे कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
2: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी शिमला है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में अब आप सुनेंगे महास्वी कार्यक्रम।

महासुई कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का मीरा वर्मा रा नमस्कार। उम्मीद करूँ हमारे श्रोता ठीक ठाक हो ले और जी देखो इस ठंड का अपना बचाव करने लग रहे हो ले। देखो ठंड और मौसम तो नहीं था, बशारा महीना तो लगभग जाने ही वाला सब, अभी तो जेठरा महीना होने वाला सब, पर का करना मौसमों का जो ये बदलाव है रुआ, इस वजह से ही हमों के अपना ठंड का खास ख्याल रखना चाहिए। आज कार्यक्रम में मेरे तुसो सही बातचीत करनी, आज असो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिहाड़ा इतने बारे की बात करनी, तिथे अलावा बात करनी मारे हिमाचल के पर्यटन उद्योग और देखो खबरसार और लोकगीत तो होने ही होने। तो सभी तो पहले बात करे लो मैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिहाड़े बारे दी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई के भारतवर्ष दे मनाया जाओ। ये दिहाड़ा 11 मई 1998 के राजस्थानों रे पोखरणों दे भारतों द्वारा सफलतापूर्वक किए गए परमाणु परीक्षणों की यादों दे मनाया जाओ। जेनीरे कारण कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनी गुआ। ये दिहाड़ा देश और प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के सम्मानित करने रही तीन हो। ये महत्वपूर्ण दिहाड़ा नवाचार, स्वदेशी प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विकासों दे भारत और प्रगति के दर्शाओ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिहाड़ा इस बातों के बताओ जे AI, अंतरिक्ष विमान और डिजिटल उपकरणों जी आधुनिक प्रौद्योगिकियां समाजों रे सभी वर्गों के किसा लाभ पहुंचाई सको। भारत 11 मई 1998 के तीन परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए। इथे तुरंत बाद दो और परीक्षण भी किए गए। भारत आधिकारिक तौरों पर परमाणु सक्षम राष्ट्र बनी गुआ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विषय असो समावेशी विकासोरी तई जिम्मेदार नवाचार। ए थीम कई बातें बताओ जे प्रौद्योगिकी रणनीतिक और टिकाऊ उपयोग, नवाचारों तई समावेशी पहुंच, ग्रामीण शहरी और आर्थिक अंतरों के पाटना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना ही नहीं असो, बल्कि ये वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों दे अग्रणी बनने री दिशा दे भारत री यात्रा रा प्रतीक असो। वैज्ञानिक इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों रे योगदानों के मान्यता दियो। स्वदेशी और किफ़ायती प्रौद्योगिकियों के बढ़ावा दियो। उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टमों के बढ़ावा दियो। नवाचारों के रक्षा, अंतरिक्ष जय प्रौद्योगिकी और संचारों के उजागर करो। प्रौद्योगिकी विकास बोर्डों द्वारा नवाचारों दे उत्कृष्टता के मान्यता देने री तई हर साल इनाम दिए जाओ। स्वदेशी प्रौद्योगिकी रा व्यवसायीकरण, MSME प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इथेरी श्रेणियां सो। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह दे अक्सर नई पहलों रा शुभारंभ शामिल हो, जिसे कि स्वदेशी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी समाधान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल, डिजिटल मैपिंग और शासन प्लेटफॉर्म ए

अमरनाथ शर्मा और साथी री आवाज़ होता तुसे ये लोकगीत सुना। ये बात कर लेनी मारे पर्यटन उद्योग और हिमाचल और बारे दी। हिमाचल प्रदेश दे पर्यटन उद्योग अर्थव्यवस्था री रीढ़ असो, जो राज्य री GDP दे लगभग 7% योगदान दियो। एक क्षेत्र रोजगार, बागवानी और परिवहनों के बढ़ावा दियो। हिमाचल प्रदेश दे पर्यटन क्षेत्र रा विस्तार होने लगी रहा और एक क्षेत्र दे रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि दे महत्वपूर्ण योगदान देने लगी रहा। ये अनुमान लगाया जाने लगी रहा जे व्यवसायों री स्थापना, बुनियादी ढांचे रा विकास और रोजगार सृजन सही राज्य रे सामाजिक आर्थिक विकासों पर गहरा प्रभाव पड़ना। पर्यटनों दे कृषि, बागवानी, मुर्गी पालन, हस्तशिल्प, परिवहन और निर्माण जे व्यवसायों रे साथी तालमेलों रे माध्यमों साई और आर्थिक क्षेत्रों के भी सहायता प्रदान करने की क्षमता आसो। पर्यटनों पाए होने वाला खर्च कई लेन देनों के बढ़ावा दियो, जनी सही संबंधित व्यवसायों साई वस्तुओं और सेवाओं री मांग बढ़ो, जनी सही रोजगारों री संभावना भी बढ़ी जाओ और अर्थव्यवस्था पाए सकारात्मक प्रभाव पड़ो। कसी क्षेत्रों रा पर्यटन विकास स्थिति रे संसाधनों पाए निर्भर करो। पर्यटन उद्योगों द्वारा पर्यावरण संसाधनों पाए बढ़ते प्रभावों के देखते हुए पर्यावरणों रे अनुकूल पर्यटनों के प्रोत्साहित करना ये भी पहले दो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ओगवास हो। हिमाचल प्रदेश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सो। घरेलू पर्यटक कई कारणों से इस पहाड़ी राज्य दे आओ, जिसे कि शांति और सुकून का अनुभव करने, मैदानी इलाकों री उमस भरी गर्मी दो बचने, आराम करने या तीर्थ यात्रा करने री दें के आओ। और ही देशों रे पर्यटक भी इथेरे ऐतिहासिक महत्व रे कारण इस पहाड़ी राज्य रे किनारे के आकर्षित हो। साहसिक पर्यटक, पर्यटन, ट्रैकिंग, कैंपिंग और खेल पर्यटन जे नए पर्यटन क्षेत्र विकसित किए गोया सो, जो घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों री दी के उपयुक्त सो। राज्य सरकारें यात्रा और पर्यटनों के बढ़ावा देने री दी कई पहल शुरू की सो। हिमाचल प्रदेशों दे रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, आइस स्केटिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग और हेली स्कीइंग जी कई बाहरी गतिविधियाँ पर्यटकों के आकर्षित करो। राज्य री राजधानी शिमला पर्यटकों रे बीचे लोकप्रिय असो। कालका शिमला रेलवे एक पर्वतीय रेलवे असो, जनी के यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया असो।

शिमला भारतोरी स्कीइंग रीतिंग के भी एक प्रमुख आकर्षण आसो। और पहाड़ी स्टेशनों दे मनाली, किन्नौर, कसौल, पार्वती घाटी, चंबा, कुल्लू, किन्नर कैलाश और कसौली शामिल आसो। धर्मशाला भी अपने तिब्बती मठों और बौद्ध मंदिरों रीतिंग के प्रसिद्ध आसो। कई ट्रैकिंग अभियान भी इथ्यो ही शुरू हो। राज्य दे पांच शक्तिपीठ आसो चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, ब्रजेश्वरी माता मंदिर, श्री चामुंडा देवी और नैना देवी मंदिर। हिमाचल प्रदेश नौकायन, मछली पकड़ना और घुड़सवारी रीतें के भी जाना जाओ। राज्य दे दुनिया रे कुछ सभी दो ऊंचे पर्वतीय दर्रे भी असो। रोहतांग दर्रा, बाराला चाला, कुंजुमला, बोरासु दर्रा और हमता दर्रा। हिमाचल प्रदेश रे स्थानीय लोग देवी देवताओं की पूजा कर देवे कई तरह रे त्यौहार मनाओ। हिमाचल प्रदेश दे 2000 तो ज़्यादा गाँव असो। एती, कुल्लू दशहरा, सुजानपुर रियोली, चंबारा मिंजर, रेणुका जी मेला, लोहड़ी, हल्दा, फागली, लोसर और मंडी शिवरात्रि जे त्यौहार मनाए जाओ। इसे भी एती सारा साल स्थानीय मेले और त्यौहार चले होंदे रहो। हिमाचल प्रदेश दे लगभग 6000 मंदिर असो। इनों बिचों दो एक प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर भी असो। ये मंदिर बोला जाओ जे भाई पाथरों साई बना हुंदा 20 मीटर ऊंची संरचना सो। जनी रे बारे दे स्थानीय लोगों रा मानना सो जे ए बिजली के आकर्षित करो। पर्यटनों रे सकारात्मक प्रभावों दे रोजगार सृजन, स्थानीय उद्यमशीलता के समर्थन और बुनियादी ढांचे दे सुधार और आगंतुकों और मेजबान समुदाय रे बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी शामिल सो। जब ये पर्यटन सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों रा समर्थन करो तो ये प्राकृतिक वातावरण और जैव विविधता री रक्षा देवी सहायक हो सको। पर्यटन उद्योग, होटल, परिवहन, गाइड और स्थानीय हस्तशिल्प जे क्षेत्रों दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों सही बड़े पैमाने पाए रोजगारों रे मौके प्रदान करो। विदेशी और घरेलू पर्यटकों रे घूमने साथी स्थानीय अर्थव्यवस्था के भी बढ़ावा मिलो और विदेशी मुद्रा अर्जित हो जो कि देश और आर्थिक विकासों दे मदद करो। तो जी ये तो थी बातचीत पर्यटन उद्योग और हिमाचल और बारे दी। ये भी सुनो तुसे ये लोकगीत।

बिमला चौहान और आवाज़ होता तुसे ये लोकगीत सुना बारिया सौ आज की खबर सारा री। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों दे देश और सभी स्कूलों दे भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन करला। एक सप्ताह रा ये शिविर भारतीय भाषाओं दे बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों के जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन री बातचीत और संस्कृति री सराहना पाए केंद्रित होना। इथेरा उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा रे दृष्टिकोणों के बढ़ावा देना असो। प्रदेशों दे पंचायत चुनाव री तई नामांकन दाखिल करने रा आज आखिरी दिहाड़ा असो। 7 और 8 मई के नामांकन दाखिल करने री प्रक्रिया रे दौरान प्रदेश भर दे 42,562 उम्मीदवार अलग अलग पदों री तई नामांकन भरे। नामांकन पत्रों री जांच 15 मई के की जानी और इसी दिहाड़े चुनाव चिन्ह आवंटित भी किए जाने। पंचायत चुनावों री तई मतदान 26, 28 और 30 मई के 3 चरणों दे करवाया जाना। मतदान भैंस रे 7 बजे तो शुरू होई रो दोपहर 3 बजे तई के चलना। प्रदेशों रे अधिकांश भागों दे काल बादल छाए हुंदे रोए। प्रदेशों दे मई रे दूजे सप्ताह दे भी ठंड बरकरार असो। मौसम विभागों रे अनुसार आज यो दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जनी सही 15 मई तई प्रदेशों रे ज़्यादातर भागों दे बारिश अंधड़ और ओलावृष्टि रा अनुमान असो। विभागों रे अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों दे इथेरा ज़्यादा असर देखने के मिलना। मौसम विभाग आज 11 मई के चंबा कांगड़ा कुल्लू मंडी और शिमला री तई येलो अलर्ट जारी किया असो। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड काल 10वीं री सालाना परीक्षा रा परिणाम घोषित करी दिता। इस साल 93,176 विद्यार्थी ये परीक्षा दीती थी जनी बीचों दो 78,150 उत्तीर्ण होए। 8,433 विद्यार्थियों री कंपार्टमेंट आई और जबकि 6,569 असफल घोषित किए गया सो। इसी तरह परीक्षा परिणाम 83.87% रुआ सो। स्कूल शिक्षा बोर्ड इस साल परीक्षाओं रे संचालन री तई प्रदेश भरो दे 2,384 परीक्षा केंद्र बनाए थे। पहली बार परीक्षा केंद्रों री लाइव मॉनिटरिंग भी की गई। बोर्डो रे अध्यक्ष बताया जे आगामी 17 दो परीक्षा केंद्रों दे ऑडियो वीडियो कैमरे रे माध्यमों सही निगरानी रखने री योजना सो। तो जी ए तो थी खबर सार और ए भी सुनो तुसे लोकगीत।

ये थे महासुई कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कुल्लूई कार्यक्रम।

नमस्कार जी, रघुनाथ महाराजारी जय जयकार। हाँ, साक्षी ठाकुर तुम्हार सभीरो स्वागत करू आकाशवाणी रे यू कुलवी कार्यक्रम जी। तेजी सौंस के बोजी गए 6:35 ते समय सा अपने कुलवी कार्यक्रम रा ते आज के ऊ मारे कार्यक्रमन हम आगल बात करनी दुई महत्वपूर्ण विषय गए। जे तमनजे पहलो विषय आसा सेंज घाटी रो शांगड़ एक प्रमुख पर्यटन स्थल, होर मारो दूजो विषय आसा कुडूरी श्रेयोलसौर जिला रो इतिहास। तेजी कार्यक्रमारी शुरुआतन सभी ने पहले तमा सभी ले पेश सा एक शुभलो कुलवी लोकगीत टिंकुरी आवाजन। तेजी मोजोलिया एवं शुभले लोकगीतारो।

तेजी शुभले मणु तुम्हें सुंदे लागे देसा कुलवी कार्यक्रम ओसके मारे कार्यक्रम रे पहले पड़ावन हमा गलबात केरनी सेंस घाटी रे शांगड़ पर्यटन स्थला रे बारे जेणु कि हम असोभी के पोतो आसा कि हिमाचल प्रदेश बे देभूमि बोला होर इधारी बादी ह्यूआ सोंगे ढोकी दी चोटी बोंदी नदियां होर शांत वातावरण कजेऊ भी अपनी ओर आकर्षित किया। कुड़ू जिले ने कोई शोभले पर्यटन स्थल आसा जेता मंजे मनाड़ी कसौल मलाणा होर नगर आदि आसा पर औज हमें जीव जगारी गल केरते लागे देसा सौदोख जेई लगसा ओ भीड़ भाड़ा के दूर प्रकृति रे बेगे ही करीब शांत होर सुंदर गांव आसा जे तो नाव सा शांगड़। शांगड़ कुल्लू जिले रे सेंज घाटी ने स्थित सा और जगह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का आगू बसी दिया सा। शांगड़ारी सभी ने बड़ी पहचान एवरे विशाल हरो मैदान सा जुण के उस सुपने जणो दिशा सारी ओर लांबे लांबे देवदार रे पेड़ मैदान आगू पहाड़ारी श्रृंखला बिचा दी हरो मैदान होर चारी ओर शांति अदृश्य मनाबे मोहल्या। जे भी कोई माणू पहली फेरी शांगड़ पूजा तेऊ ए हो लागा कि सौ कोई चित्रकला भित्री पूजो गो। इधरी बागरी इतरी स्वच्छ होर ताजगी भरी होआ कि मन प्रसन्न हो जा। शहरारी भाग दौड़ शोर शराबो होर तनावा के दूर औजेगा मानसिक शांति देने आड़ी सा। शांगड़ा तेणी पूजने रो सफर भी बड़ो शोभलो सा। कूड़ू या मंडी के सेंज घाटी री ओर डेवने आड़े रास्ते जी बोंदी नदी पहाड़ गए बसे दे होसे होसे ग्राउ खेच सेवारे बगीचे होर पहाड़ी संस्कृति री झलक भालने ले मेड़ा। सड़क यात्रा रे दौरान हर मोड़ा गोहे प्रकृति रो नवो रूप भालने ले मेड़ा। शांगड़ा रो बड़ो मैदान एव ग्राउ रो मुख्य आकर्षण आसा। एव बोला कि ओ मैदान देव देवते री भूमि आसा इता तेणी इधी मंजे खेती भी नहीं होआ। ओ मैदान इतरो समतल सोरलो होर सुंदर आसा कि दूरा के भाड़ी फेरी लागा कि केवे हौरी रंगारी चादर छई दिसा। भाव सेऊ इधी मंजे खेला पर्यटक घूमा होर लोग बेशी करे प्रकृति री सुंदरता रो आनंद लिया। शांगड़ सीधो पर्यटन स्थल नाई सा बल्कि अपनी धार्मिक मान्यता ले भी मानो दो सा। इधी मंजे शंगचूड़ महादेव रो मांदर सा जेऊ इधारे लोग श्रद्धा संगे मोना। ओ मांदर पारंपरिक हिमाचली शैली जी बणो दो सा। लाकड़ी री सुंदर शोभली नक्काशी होर पहाड़ी वस्तुकला एवं होर भी खास बनावा। स्थानीय लोगारी मान्यता सा कि शंगचूड़ महादेव लोगारी रक्षा केरा होर न्याय भी दिया। इधी मांजे कोई धार्मिक कथारी भी प्रचलित सा। लोग दूरा दूरा के दर्शन करदे इच्छा होर अपनी मनोकामना बे मांगा। शांगड़ ग्रांवरी संस्कृति बेगे समृद्ध सा। इधर लोग सरल मेहनती होर अतिथि सत्कार केरने आड़े होआ। जै कोई पर्यटक इधी मंजे इच्छा तेऊ अपने पौनारो अनुभव होआ। ग्राउं रे माणू तिनारो मुस्कुराई होर हसदी हसदी स्वागत किया होर अपने रीति रिवाज संगे भी परिचित करावा। तेजी शोभले माणुओं इधारे पारंपरिक घर लाकड़ी होर पाथरा संगे बोने दे होआ। इना घोरारी बनावट मौसमारे अनुसार होआ। शेड़े के बसावा तेणी घोराबे मजबूत बनावा। छोता गोए स्लेट होर शिला लागी दी होआ जुण हिमाचलारी पहचान होआ। शांगड़ाबे घूमने रो सभी नबोड़िया समय मार्चा पूरी जूना तेणी होर सितंबरा पूरी नवंबरा तेणी माना। गर्मी जी इधी मौसम सुहावना रोआ। जेबी मैदाना जी गर्मी होआ तेबी शांगड़ ठंडी बागरी होर हरियाली संगे राहत दिया। संगे सर्दी जी इधी मंजे ह्यों भी पोड़ा जुण एव होर भी शोभलो बनावा। शोभले माणू जे तो मैं ट्रैकिंग वे पसंद किया ते शांगड़ तोमाले शानदार जगह आसा। इधा के कोई ट्रैकिंग मार्ग निकला आसपासारे जंगला होर पहाड़ी जी ट्रैकिंग केरी करे तो मैं प्रकृति रे होर भी करीब जाई सोका।

शुणे जोतारे सीडुआ कुड़ुदेशारी कहानी तिलादेवेरी आवाजन और शुभलो कुलवी लोकगीत तमें सभी ए भी शुणो। तेजी शुभले मणुओ कार्यक्रम रे दूजे पड़ावन हाऊ तमा लेई करे चालनी कुड़ु जिले री एक एही रहस्यमय पवित्र होर अद्भुत जयगारी ओर जे तो नाऊ शुणी करे ही मन शांत रोमांच होर आस्थारे भावासंगे जागी जा। ओसको मारो चर्चारो दूजो विषय आसा कुड़ु जिलेरी श्रेयोलसोर जिलारी इतिहास। ओ झील सीधी एक प्राकृतिक जलाशय नहीं सा बल्कि ओ लोककथा धार्मिक विश्वास सांस्कृतिक परंपरा होर प्राकृतिक सुंदरता रो एक अद्भुत संगम आसा। हिमालय रे कुणेन बसेनी ओ झील सौदी ओरी लोगारी श्रद्धा जिज्ञासा होर आकर्षण रो केंद्र रह दी आसा। शुभ लेमाणु श्रेयोलसोर झील समुद्र तला के लगभग

तिसो मिटरारी उंचाईन स्थित सा। ओ जैगा कुडूहूर शिमलारी सीमारे नीड पहाड़ी क्षेत्रन इच्छा। जलोड़ी पासा के लगभग 5 किलोमीटरारी पैदल यात्रा केरी करे ऐसा जिला तेनी पूजा। रास्ते जी घोणे बोण ठांडी बागर पहाड़ारी शांत हुर प्रकृति री शोभली सटा इदि मंजे इच्छने आड़े यात्री रे मनाबे मुँह लिया। जगह जगह माणू ऐसा जिला रे करीब पूजा ते ही एक नुखी आध्यात्मिक अनुभूति महसूस हुआ। तेजी हब है भी हमें गल बात करनी ऐसा जिला रे इतिहास रे बारे। स्थानीय मान्यता अनुसार श्रेयसर झील बेगे प्राचीन आसा। एहो बोला कि ओ झील देव देवते री कृपा के बोणी दी आसा। कोई बुढ़ले एहो बोला कि पहले वक्त ने इदी मंजे ऋषि मुनि तपस्या केरा थी। ओ जगह शांत पवित्र होर प्रकृति ऊर्जा संगे भौरी दी आसा। एहू कारण के इदी साधु संत ध्यान होर तपस्या ले इच्छा थी। समय संगे ओ स्थान लोगारी आस्था रो केंद्र भी बोणी गह। श्रेयसर झील संगे सभी ने प्रसिद्ध कथा जुड़ी दी आसा। माता बूढ़ी नागणी री झीला रे किनारे माता बूढ़ी नागणी रो मंदिर स्थित सा। स्थानीय लोगा रो विश्वास ओ आसा कि ओ झील माता बूढ़ी नागणी रो निवास स्थान आसा। होर माता एवं क्षेत्रावे दुष्ट शक्ति के बचावा होर इदि बोसा। उस भी श्रद्धालु इदि मंजे इच्छी करे माता रे दर्शन केरा होर सुख समृद्धि री कामना भी केरा। ऐसा झीला री एक होर अद्भुत विशेषता आसा कि ओ बेगे ही स्वच्छ हो। एहो बोला कि झीला दी एक भी पाच नहीं टेक दो। ज्यो कि कोई भी पाच झीला न पैठा ते ही अभिनावरी एक चेलू झीला के एवं पाचा होर गंदगी बागले काढ़ी दिया। स्थानीय लोग एवं चेलू बे माता रो दूत माना जबकि वैज्ञानिक दृष्टि के ओ सेलू री आदत भी होई सोका। श्रेयसर झील गोलाकार ने आसा होर चारी बाखे घोणे जंगला के घिरी दिया सा। झीला रो पानी इतरो शांत होर स्वच्छ दिखाई दिया कि तिथ मंजे आसपास रे पेड़ा रो प्रतिबिंब साफ दिशा। दूत के समय जब भी सूरजरी पहली किरण झीला गोय पौड़ा ते दृश्य अत्यंत मनमोहक हुआ। यह जानिया कि प्रकृति स्वयं पूजा के दी लागी दिशा। शुभले माणु पहल के वक्त ने इदि तेणी पूजनो बेगे मुश्किल हुआ थी। लोग जंगला होर पहाड़ा रे रास्ते पैदल हांडी कोरे इदि पूजा थे। ते भी श्रद्धालु हर वर्ष बड़ी संख्या ने इदि मंजे इच्छा थी। एता के हमें थोक लागा कि ऐसा जिला रो धार्मिक महत्व कितरो ज्यादा सा। लोग मुश्किलाई प्रवाह किए बगैर माता रे दर्शन कर दे निकला थे। कुड़ू होर आसपास रे क्षेत्र रे लोग अपने देव देवते री यात्रा रे दौरान श्रेयसर जिला बे विशेष स्थान दिया। कोई स्थानीय देव देवते री शोभा यात्रा भी इदि मांजे इच्छा। मेड़े होर धार्मिक उत्सव रे वक्त ने इदि पारंपरिक वाद्य यंत्र बाजा लोकगीत भी गा होर श्रद्धालु पूजा अर्चना भी केरा। अदृश्य हिमाचलारी जीवित संस्कृति रो सुंदर उदाहरण आसा। इतिहासकार एहो माना कि हिमाली जिला सदी ओरी धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रह दिए सा। श्रेयसर झील भी तिना प्राचीन परंपरा रो इतिहास आसा। ओ स्थान सीधो पर्यटनालय नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी आसा। शोभले माणु आधुनिक वक्त ने जे भी शौकी बोणी होर पर्यटन बोड़ो ते जलोड़ी पास होर श्रेयसर झील इन दुईरा नाव दूरा दूरा तैनी पूजो। ट्रैकिंग प्रेमी प्रकृति प्रेमी फोटोग्राफी होर श्रद्धालु बड़ी संख्या ने इदि मंजे आंदे लागे ते भी ओ स्थान अपनी शांत होर पवित्र पहचान बनावे दी आसा। माता बूढ़ी नागणी रे मंदरारी वास्तुकला भी ध्यान देने योग्य आसा। ओ पारंपरिक पहाड़ी शैली ने बोणी दी आसा जित लाकड़ी होर पाथरा रो सुंदर उपयोग केरोनो सा। मंदरारी छत नकाशी होर संरचना हिमाचली कलारी झलक दिया। ओ मांदर सीधो पूजा रो स्थान नहीं आसा बल्कि स्थानीय शिल्प कला रो भी प्रतीक आसा। श्रेयसर झील रो नाव भी रोचक आसा। एहो माना कि स्थानीय बोली रे शब्द संगे मैडी करे ऐसा झील रो नाव बणो। लग लग लोग ए माना कि माता बूढ़ी नागणी रो इथ दी बास आसा होर पवित्र जल होर नागणी संगे
ਇਸਾ

जिला बे जोड़ा। अजील पर्यटन मानचित्रागोय एक प्रमुख जगह बनी दिया सा। कुड़ू डेवने आड़े अनेक पर्यटक जुलूड़ी पासा संगे संगे श्री उलसर जिला भी बाल देडिया। इदी पूजी कोरे सी सीधे सुंदर दृश्य ही ने बाड़ा, जबकि इधारी आस्था और संस्कृति भी महसूस केरा। जे तो मैं दोती छे के जिला आगू पूजे ते इधारो वातावरण भेगे शांत हुआ। बागरीनी ठंडक, पेड़ारी खुशबू, चेलू चेलीरी शुभली आवाज होर जिलारी स्थिरता मनावे छू लिया। शायद ओ ही कारण होनो कि पुराने वक्त ने ऋषि मुनि इस जगह वे तपस्या तेणी उपयुक्त माना थी। सर्दी री जे भी उरी पोरी ह्यों पोड़ा ते भी ओ क्षेत्र होर भी शोभलो लगा। शेतो ह्यों हरे हरे पेड़ होर मंजे शांत झील, ओ दृश्य के उस स्वर्ग के कम ने जानिया। शोभले माणु कुड़ूरी और श्रेयसर झील सीधो पानी रो तालाब नाई आसा। ओ इतिहास आसा, आस्था आसा, प्रकृति सा, हमारी संस्कृति सा होर हिमाचलारी आत्मा रो एक सुंदर रूप आसा। तेजी जे तो मैं कुड़ू और देवण रो अवसर मेड़ो ते श्रेयसर जिला भी जरूर भाड़े। तिथि पूजी करे तो मैं जानो कि किले हिमाचला बे देवभूमि बोला। तेजी ओ संदेशा सी थी कार्यक्रम रो दूजो पड़ाव भी मुकी गो। हैवे पेश सा तो मसो बिले एक होर शुभलो कुलवी लोकगीत अमर राठौरारी आवाजन।

0: तेजी एवं शुभले कुलवी लोकगीत संगे कार्यक्रमरा हुई गया वक्त छके मेल में नई जानकारी सी थी तेप तेणी साक्षी ठाकरा विद्या इजाजत नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कुल्लूई कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Maha Puja followed by the Kumbh Abhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrit Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiva. In a social media post after the visit to the temple, Prime Minister Modi said, 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi said the door

0: कृषि और बागवानी के जो उनके कार्य है वो समय रहते पूरे करें। मौसम में दिन प्रतिदिन जो है वो परिवर्तन होता है,
1: जी
0: कभी जो तापमान है वो अधिक हो जाता है, कभी तापमान इतना नीचे चला जाता है कि जो हमारी सब्जियां है या फल पौधे जो भी लगे हैं उसमें काफी नुकसान उसके कारण हो रहा है। और बीच बीच में प्रदेश के कई हिस्सों में जो है, कई क्षेत्रों में जो है भारी ओलावृष्टि हो रही है, उससे जो है तापमान है वो इतना गिरा है कि जो हमारी फसल है वो अच्छे से बढ़वार नहीं ले रही।
1: जी हरे कृष्ण जी, आपने बहुत ही बढ़िया जो जानकारी है किसानों को दी है, क्योंकि ओलावृष्टि ने बहुत सारे क्षेत्रों में जो किसान और बागवान भाई बहनों को नुकसान पहुंचाया है,
0: जी
1: जो आपकी गुठलीदार जो फसलें हैं उन्हें भी बहुत सारा नुकसान पहुंचा है,
0: जी
1: लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यह सब कुछ हो रहा है। ऐसे में हमें यह भी समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है।
0: जी
1: तो किसान साथियों, आज काम की बातों के तहत हमारा जो विषय भी रहने वाला है जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव, इस विषय
0: जी
1: में आपसे बात करेंगे।
0: और हर रोज की तरह हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों को इस कार्यक्रम में लोकगीत से भी मनोरंजन करवाएंगे।
1: और साथ ही साथ सुनवाएंगे जानकारीपूर्ण बातचीत, जिसका विषय रहेगा वनों को आग से कैसे बचाएं। कार्यक्रम में अधिक जानकारी देंगे धर्मचंद शर्मा, व उनसे बातचीत करेंगी निशा शर्मा।
0: जी तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं काम की बातों में जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव के बारे में। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन आज मानवता के सामने आने वाले सबसे गंभीर मुद्दों में से एक मानी गई है। जलवायु परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं, इसका मतलब है कि मौसम में हो रहे बदलाव, जैसे कि आजकल हम महसूस कर रहे हैं कि तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है और बारिश की अनियमितता, जैसे अधिक या कम वर्षा का होना, लंबे समय तक सूखा रहना, ग्लेशियरों का पिघलना, साथ ही बर्फबारी में गिरावट, ये सभी जलवायु परिवर्तन के संकेतक माने गए हैं।
1: जी किसान साथियों, जलवायु परिवर्तन क्यों होता है यदि इसकी बात की जाए, तो किसान साथियों जलवायु परिवर्तन की मुख्य वजह ग्लोबल वार्मिंग है।
0: जी
1: ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि धरती की सतह का औसत तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण होती हैं। ये गैसें धरती से निकलने वाली इन्फ्रारेड रेडिएशन, मतलब यानी कि अवरक्त विकिरणों को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।
0: जी और किसान भाइयों, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि का मुख्य कारण औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल का अधिक उपयोग और वाहनों की संख्या में दिन प्रतिदिन हो रही वृद्धि इसके मुख्य कारण माने गए हैं। इसके अलावा कृषि भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत है, और साथ ही ये बताना भी जरूरी है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 30 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा आजकल यूरिया का खेतों पर बहुत अधिक उपयोग हमारा किसान कर रहा है, जो NOx यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन करता है, और नाइट्रस ऑक्साइड को भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और ये सभी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है और जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
1: किसान साथियों, ये तो बात हुई कि क्यों जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अब बात करते हैं कि अब तक तापमान में कितनी जो वृद्धि है वो हुई है। किसान साथियों, पिछले कई दशकों में तापमान में काफी वृद्धि हुई है। IPCC आंकड़े बताते हैं कि लगातार बढ़ती मानव गतिविधियों के कारण 19वीं शताब्दी के बाद से वैश्विक औसत तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, और वर्ष 2050 तक इसके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है। किसान साथियों, सुनने में यह आंकड़ा बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन श्रोताओं को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता हुआ माना जाता है। एक शोध के अनुसार यदि वातावरण का तापमान औसत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो इससे गेहूं की पैदावार 17% तक कम हो जाती है।
0: जी
1: तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बढ़ता हुआ तापमान कृषि के लिए कितना गंभीर है।
0: बिल्कुल सही कहा जय जी आपने, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कृषि के संदर्भ में जानना क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी भी हम थोड़ी सी बातें किसान और बागवानों से कर लेते हैं। वैसे तो जलवायु परिवर्तन से समस्त विश्व काफी चिंतित है, लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 60% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 90% ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। इसके साथ ही भारत में किसान कई पीढ़ियों से खेती के लिए मौसमी बरसात पर निर्भर रहते हैं। भारत में लगभग 2/3 कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, और कृषि की उत्पादकता वर्षा एवं उसकी मात्रा पर

0: निर्भर करती है। खेती की गतिविधियां फसल के चयन द्वारा की जाती है, जो जलवायु मिट्टी संसाधन को बाधित कर सकता है। फसल के विकास जो जलवायु मिट्टी संसाधन उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। जलवायु परिवर्तन से रोपण और कटाई के कार्यक्रम को बाधित कर सकता है, फसल के विकास के चरणों को प्रभावित भी कर सकता है और फसल के खराब होने का खतरा बढ़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पैदावार कम हो सकती है और फसल की गुणवत्ता कम होने की संभावना रहती है। इसलिए खेती का उत्पादन और उत्पादकता पूरी तरह से जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर है और इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कृषि के संदर्भ में जानना जो है हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए अति आवश्यक होता है।
1: किसान साथियों, बात करते हैं जलवायु परिवर्तन किस तरह से कृषि को प्रभावित कर रहा है। किसान साथियों, जलवायु परिवर्तन से कृषि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों ही से प्रभावित होती है।
0: जी
1: औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। किसान साथियों, पिछले कई दशकों से तापमान में काफी वृद्धि हुई है। फसलों को एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है और वायुमंडल का तापमान बढ़ने से उनके उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है
0: जी
1: और उत्पादन में भी कमी आती है। किसान साथियों, बढ़ते हुए तापमान से जो सबसे अधिक प्रभाव रबी फसलों जैसे कि गेहूं, सरसों, जौ और आलू को पड़ेगा, क्योंकि इन फसलों को कम तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान के कारण फसलें जल्दी पक जाती है, जिससे दाने छोटे और सिकुड़े होते हैं और उत्पादन कम होता है।
0: जी
1: जैसे कि आजकल गेहूं की फसल एक हफ्ते पहले ही पककर तैयार हो जाती है। इसके साथ ही जो बागवानी फसलें तापमान की वृद्धि से प्रभावित हुई है, जैसा कि हम देखते हैं कि सेब की खेती अब अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर संभव है। क्लाइमेट चेंज के कारण भारत में गेहूं की उत्पादकता वर्ष 2050 में 20% और 2080 में 47% तक कम होने का पूर्वानुमान जो है ये बताया गया है,
0: जी
1: और खरीफ मक्का की उत्पादकता वर्ष 2050 में 18% और 2080 में 23% तक कम होने का पूर्वानुमान जो है वो भी बताया गया है।
0: जी किसान भाइयों, बात करते हैं जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना जाता है कृषि का, और हमारी जो कृषि है वर्षा पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश कम होने से जल संकट उत्पन्न हो रहा है। पिछले एक दशक के दौरान समूचे उत्तर भारत में हर साल औसतन भूजल स्तर पर 1 फुट नीचे जो है इसका स्तर गिर रहा है, जिसके लिए मानवीय गतिविधियां ही जो है वो जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। साथ ही भारत के जल स्रोत तथा भंडार तेजी से सिकुड़ रहे हैं, और जिसके कारण फसलों की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। मिट्टी या मृदा पर इसके जो प्रभाव है उसकी अगर हम बात करें तो रासायनिक खादों का बहुत उपयोग हमारा किसान कर रहा है, जिससे मिट्टी की जैविक कार्बन तो कम हो ही गए हैं, साथ ही मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और पोषक तत्व काफी प्रभावित हो रहे हैं, और भूमि क्षरण और जल प्रदूषण जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी काफी प्रभावित हो रही है और मिट्टी में लवणता जो है वो बढ़ रही है।
1: किसान साथियों, जलवायु परिवर्तन का कीट और रोगों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। खेतों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीड़े और बीमारियां भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुई है।
0: जी
1: नए नए कीट जो फसल पर आ रहे हैं, उनके जीवन चक्रों में बदलाव आ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों और रोगाणुओं में वृद्धि होती है। गर्म जलवायु में कीट पतंगों की प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कीटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और तापमान बढ़ने से फफूंदजनित रोग के बढ़ने की संभावना भी अधिक होती है, जिसका कृषि पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है।
0: जी और जय जी, अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए किसान क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन ने खेती और खेती के तरीके को बहुत ही प्रभावित किया है। हमारी खेती पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन प्रभाव को कम करने के अनेक उपाय हैं, जिनको अपनाकर हम कुछ हद तक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अपनी खेती को बचा सकते हैं, तो हमारा किसान इस ओर ध्यान दे। जय जी, ये तो ही जानकारी जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव के बारे में। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं किसान और बागवान भाई बहनों को परशुराम तोमर की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान साथियों, परशुराम तोमर की आवाज में आपने सुना यह प्यारा सा लोकगीत। अब कार्यक्रम में समय हो चला है जानकारी पूर्ण बातचीत का, तो आइए सुनते हैं वनों को आग से कैसे बचाएं इस बातचीत का पुनः प्रसारण
1: जी।
0: और कार्यक्रम में अधिक जानकारी देंगे धर्मचंद शर्मा व उनसे बातचीत करेगी निशा शर्मा
1: जी।
2: किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हमारे साथ हैं धर्मचंद शर्मा जी। धर्मचंद जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: आज हमारा जो विषय है वो है वनों को आग से बचाएं। तो धर्मचंद जी हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वनों में जो आग लग जाती है उस आग लगने के कारण क्या क्या है।
3: मैम, ये जो वन है हमारी एक बहुमूल्य संपदा है, इसको बचाना हम सभी भारतीयों का मूलभूत जो हमारा कर्तव्य है। वनों की आग में जो लगने के कारण है, इसमें सबसे पहले कारण है लापरवाही का
2: जी।
3: लापरवाही से मतलब है जैसे

0: जलते हुए बीड़ी सिगरेट को फेंकना जंगल के बीच। और नंबर दूसरा कारण हो सकता है जो है हमारा, ये कांच के शीशे के टुकड़े जो हम जो वेस्ट होते हैं उसको जंगल के बीच में फेंक देते हैं। जैसे आजकल का जैसे मई और जून का जो सबसे उच्चतम तापमान जो हमारे सूर्य से मिलता है उसके फोकस से जो है जंगल में की पत्तियों में आग लग जाती है। और तीसरा कारण जो है ये बांस के जंगल जहाँ है वहाँ जो है बांस के पेड़ टकराते हैं हवा से और उनसे भी घर्षण से जो है चिंगारी पैदा होती है, उससे भी जंगल में आग लग जाती है
1: जी।
0: अगला जो कारण है ये है गडरियों के द्वारा, जो हमारे भेड़ बकरी पालक किसान लोग हैं जिनके पास काफी सैकड़ों की संख्या में जो है भेड़ बकरियां होती हैं, वो जंगलों में ही उनका रहना रहता है, रात को भी जंगलों में ही रहते हैं और उनका जो है लगातार जीवन जंगलों में ही निकलता है। तो रात को खाना बनाने या अन्य जैसे सर्दियों के दिनों में सेकने के लिए भी लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो जंगल में लकड़ियां जो जलाते हैं उनका खुला रहना और हवा से उनकी चिंगारी उड़ करके जंगल में जो है आग लगा देती है, ये भी एक कारण है। अगला जो कारण है वाहनों के द्वारा जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके जो साइलेंसर से भी चिंगारी निकलती है। अगर जंगल के बीच से भी हमारे बहुत ज्यादा रोड हैं जो गाड़ियां वहां से चलती हैं, उनके साइलेंसर से भी चिंगारी निकल के जंगलों में आग लगती है। जो अगला कारण है वो है बिजली के तारों के द्वारा, जैसे जंगल के मध्य से अगर बिजली की सप्लाई या बिजली की तारें जो 11 के भी 32 के भी या HT LT की लाइंस जो गुजर रही होती हैं उनमें भी एक भारी आंधी तूफान आने से तारें या तो आपस में मिल जाती हैं, उनका नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाता है और चिंगारी निकलती है और उनमें जो है बहुत बड़ा विस्फोट भी होता है। तो वो चिंगारी निकल करके जंगल में जो बर्निंग मटेरियल है, पत्तियां है, घास है या चीड़ की पत्तियां हैं, उनमें जल्दी तुरंत आग पकड़ते हैं और ये कारण भी हो सकता है। कि इसके अलावा जो खंभे भी अगर ज्यादा तूफान आ जाए तो बिजली के खंभे भी गिर जाते हैं जिससे ये जंगल में आग लगती है।
1: जी, तो देखिए शर्मा जी, वनों में आग लगने के बहुत से कारण जो हैं आपने बताए। इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसी भी कारण से अगर वनों में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं?
0: हाँ मैम, ये वनों की आग को बुझाने में हमारे कौन कौन से उपाय हैं जो हम तरीके अपनाते हैं, तो इसको सबसे पहले तो वन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होता, बहुत ज्यादा एरिया में फैला होता है, तो इसके लिए अगर आग बुझानी है तो हमें मैन पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ये तरीके हैं जिनसे हम इतने आदमी भी नहीं जुड़ा सकते कि भी उस आग को काबू कर सके। और वनों को जो है गर्मी के जो मौसम से पहले पहले ही अगर वनों में हम फायर लाइन बना करके जो जिससे हम उस आग को काबू कर सकते हैं। फायर लाइन का तात्पर्य है कि जैसे हम एक बीच में एक कोई 12-15 फुट का एक स्टेप बना दिया जिसमें हम कंप्लीट उसको जो है खाली कर देते हैं और उसको एक एरिया जो है काट देते हैं, अगर नीचे से कहीं से आग लगते हुए आ रही हो तो वहां फायर लाइन तक पहुंचते पहुंचते उसको आगे बिल्कुल क्लियर मिलेगी, साफ सुथरी मिलेगी, वो आग वहां बुझ जाती है। दूसरा तरीका है काउंटर फायर कर करके, जैसे जंगल काफी एरिया में फैला है या हिली टेरेन में है, जैसे ढलानदार एरिया में है जंगल, नीचे से आग अगर जल करके आ रही हो काफी दूरी पर हो तो उसके ऊपर हम अपने लोगों को जैसे फॉरेस्ट के फायर वाचर, फॉरेस्ट गार्ड या फायर सर्विस के लोगों की भी सहायता लेकर के उसमें जो हम एक जो है काउंटर फायर कर देते हैं। जैसे आग नीचे से आ रही हो तो हम बीच में एक स्पेल ऐसा बनाते थे, कतार बांध करके जितने भी वहां जंगल में फायर वाचर हैं या फायर फाइटर्स हैं उनके कतार बांध करके उसमें हम छोटे से एरिया में अपने आप ही एक आग लगा देते हैं और साथ उसको फायर विटर के द्वारा, चाहे वो फायर विटर ये मैनुअल हो, चाहे हम जैसे हम झाड़ियों हरी टहनियों के फायर विटर बना करके एक कतार में खड़े हों थोड़ा आग लगा लें, कोई 15-20 फुट का एरिया जो है एक स्टेप हम पूरा काट करके उस एरिया में आग लगा करके उसको बुझा देंगे ताकि नीचे से जो आग जल के आ रही हो उसको आगे जलने के लिए कोई भी बर्निंग मटेरियल नहीं मिलेगा क्योंकि वो एरिया तो जला दिया होता है और आग वहीं ही रुक जाती है। ये भी एक तरीका है आग को बुझाने का। जो तीसरा जो उपाय है, तरीका है हमारा, ये है कि वनों में हम तालाब वगैरह इत्यादि का भी इसके अंतर्गत भी हम वन सरोवर बना करके बरसात का पानी है उसमें इकट्ठा करके उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं जहां कहीं जरूरत हो वनों की आग को बुझाने के लिए। इसके अतिरिक्त मिट्टी और रेत ये इत्यादि के द्वारा भी हम इस वनों की आग को बुझा सकते हैं।
1: जी,
0: तो ये तरीके हुए वनों की आग को बुझाने के, काउंटर फायर करके और फायर लाइन काट करके और वनों में बना करके पानी के सरोवर बना करके।

0: तालाब बना करके।
1: जी। तो देखिए, वनों में अगर आग लग जाती है तो आग बुझाने में किन-किन परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है?
0: हाँ मैम, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। वनों की आग को बुझाने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वन काफ़ी एरियो में, काफ़ी कई हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होता है। तो जैसे ही उस आग को काबू करने के लिए भी हमें एक छोटे छोटे पार्ट बना करके ही काटना चाहिए। जैसे कोई एक एरिया जहाँ कोई मकान इन्वॉल्व हो रहे हों, बीच से हो सकता है जंगल के बीच में मकान होते हैं, तो उनके बीच हम उस एरिया को काट करके उसमें जो है उसी एरिया को बचाएं जहां मकान जो है उसकी गिरफ्त में आ रहे हों।
1: जी
0: और नंबर दो, जो वनों की आग में सबसे मुश्किल होता है हमारे, क्योंकि वहां कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है और ट्रांसपोर्टेशन, रोड की कोई भी व्यवस्था नहीं होती जंगल के, कहीं जहां कहीं हुए वहां तो हम जंगल को बचा भी सकते हैं, जहां रोड की व्यवस्था नहीं है वहां बहुत मुश्किल आती है। नहीं तो हो सकता है जहां रोड की व्यवस्था हो वहां फायर टेंडर, जो फायर व्हीकल्स हैं हमारे, वहां उनको ले जा करके पानी की बौछार फेंक करके भी जो है उस आग को काबू कर सकते हैं। तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और अवंडेंट जो बहुत भारी मात्रा में फ्यूल्स होता है, पत्तियां होती है, घास होता है, ये और लकड़ी भी होती है सूखी हुई, तो इनसे बहुत ज्यादा परेशानी रहती है हमें इस आग को बुझाने में।
1: जी तो शर्मा जी, देखिए, वनों में आग लग जाती है तो जो आप लोग वनों में आग बुझाने का कार्य करते हो, इसके अलावा जो ग्रामीण होते हैं नजदीक के, क्या वो भी मदद करते हैं?
0: हाँ जी मैम, ये अक्सर हमें देखा है, थोड़ा ग्रामीण अगर उनको इस विषय में उनको थोड़ा जानकारी दी जाए, अवेयरनेस लाई जाए कि भी ये वन हमारे हैं, हम इन वनों से लकड़ी का, घास पत्ती का और ये पूरा फायदा उठाते हैं कि हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने वनों को, जिससे हमारे घास पत्ती के अतिरिक्त हमारे फ्यूल वुड और ताज़ा हवा, तरोताज़ा हवा, और ये बारिश लाने में भी बहुत ही कारगर हैं ये हमारे पेड़ पौधे, तो उनको हम बचा के रखें और ये हमारी बहुत ही बहुमूल्य संपदा है।
1: जी तो देखिए शर्मा जी, वनों में आग लग जाती है तो जो हमारे ग्रामीण हैं एकदम से घबरा जाते हैं, जो वनों के नजदीक रहते हैं, वनों के नजदीक उनके घर हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ ग्रामीण लोगों के लिए मैंने अक्सर ये मैं देखा है, जो गांव में लोग हैं उनके नज़दीक अगर जंगल हैं, उनका एक सबसे बड़ा जो उनके लापरवाही का जो कारण रहा कि वो अपने एक छोटे से फायदे के लिए, जैसे आग लगने का एक कारण जो कि वो अपने एक छोटे से फायदे के लिए कि अगर मेरा ये जंगल अगर साफ होगा उसमें वो आग लगा देते हैं, क्योंकि उससे मुझे जो है हरी घास या ताज़ा घास निकलेगी और वो मेरे पशुओं को खिलाने के काम आएगी।
1: हाँ जी
0: तो ये उनकी गलत धारणा है लकड़ी से, ताज़ा हवा से।
1: जी तो शर्मा जी, देखिए, ऐसी स्थिति में हमारे जो ग्रामीण हैं वो क्या कर सकते हैं?
0: हाँ अगर आग लग जाए किसी भी ग्रामीण के सराउंडिंग में या घरों के नज़दीक या कहीं भी उनको आग दिख जाए, तो इस स्थिति में सर्वप्रथम जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है ग्रामीण लोग हैं,
1: जी
0: ग्रामीण लोग कोशिश करें और इसके साथ साथ वो तुरंत जो फॉरेस्ट के फायर वॉचर्स, फॉरेस्ट गार्ड, वीट गार्ड, BO और RO तक फोन करें और तुरंत इसके साथ साथ ही फायर ब्रिगेड को भी, अगर वहाँ रोड की व्यवस्था है तो तुरंत फायर ब्रिगेड को भी सूचना दें कि फ्लाई जगह में इधर जो है जंगल में आग लगी है। जितना जल्दी रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा नुकसान भी उतना ही कम होगा, और ये ध्यान रखें कि ये हमें जो है तुरंत सूचना दें।
1: जी
0: जब जब कभी भी हो ये कभी भी लापरवाही ना करें कि कोई जलती माचिस की तिल्ली या जलता कुछ आग जंगल में हमने खुले में रख दी। नंबर दो, जो भी बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं ये इंश्योर करें, अगर जंगल के रास्ते से वो निकल रहे हो तो ये इंश्योर करें कि अगर बीड़ी सिगरेट पी रहे हो उसको पूरे रूप से, पूर्ण रूप से उसको बुझा करके ही आगे चलें, ना
1: जी
0: कि खुले जंगल में फेंक दें। और जितना भी कांच के टुकड़े या दूसरे शीशे के टुकड़े हैं कोई भी हो उनको कभी भी जंगल में ना फेंके।
1: जी
0: और दूसरा, जो विशेषकर जो हमारे भेड़ बकरी पालक हैं जिनका पूरा जीवन जंगल में ही निकलता है, और वो ध्यान रखें कि जहाँ कहीं भी वो रात को वहाँ रह रहे हों, जहाँ वो अपनी रात निकालते हों या वहाँ लकड़ी का प्रयोग करते हों जलाने के लिए या खाना पकाने के लिए या सेंकने के लिए भी, तो ये ध्यान रखें कि जब वो सो जाते हैं उससे पहले पहले ही आग को पूर्ण रूप से बुझा दें। और बिजली की तारों का, विशेषकर इसमें भी डिस्टेंस है बिजली की तारों का, वो एक उपयुक्त जो उचित दूरी उसमें रखें, और खंभे जो खड़े करते हैं उनमें भी विशेष करके मजबूती से उनको जो है खड़ा करें, ताकि हल्के से या थोड़ी सी हवा तूफान आने से ही वो गिर जाए और उनमें चिंगारी निकल के जंगलों में आग लगे।

0: तो ये कुछ उपाय हैं, कुछ टिप्स हैं जिससे हम इस अमूल्य वन संपदा को बचा सकते हैं।
1: जी, तो देखिए शर्मा जी, हमारे जो किसान बागवान हैं, हमारे जो ग्रामीण हैं, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वनों को आग से बचा सकते हैं।
0: हाँ
1: जी, तो इसके अलावा देखिए, आप अंत में हमारे किसान बागवान और हमारे ग्रामीण भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ वनों के साथ साथ, जैसे वनों के बीच ही हमारा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का बहुत सारा क्षेत्र जो है वनों से घिरा हुआ है और मकान भी वनों के बीच में है। हो सकता है जंगल से आग बढ़ती हुई कहीं मकान के नज़दीक मिली, और ऐसे हादसे हमने कई बार देखे हैं और ऐसी आगें भी बुझाई हैं जिससे जंगल से लपटें निकली और सीधी मकान की दूसरी मंजिल ने या पहली मंजिल ने सीधी लकड़ियों ने आग पकड़ ली और उसमें आग लग गई और आग से पूरा घर तबाह हो गया।
1: जी
0: तो ये जानकारी रहेगी कि कभी भी अपने जो जंगल क्षेत्र में, जंगल के एरिया में जिनके भी मकान हैं, वो अपने 20 मीटर के एरिया, सराउंडिंग एरिया तक बिल्कुल उसको नीट एंड क्लीन, जिसको अपने बिल्कुल साफ सुथरा, कोई झाड़ियाँ, सूखा घास या कोई चीड़ की पत्तियाँ, जो पाइन ट्रीज जो लीव्स हैं, इनके जो पत्तियाँ हैं ये बहुत तेजी से आग को बढ़ाती हैं, ये सारा एरिया एकदम साफ सुथरा रखें।
1: जी
0: और दूसरा, अगर घरों में कहीं आग जो लग भी जाए तो उस वक्त हमें संयम नहीं खोना चाहिए, बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए, तुरंत कोशिश करें क्योंकि मौके पर वही फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। हो सकता है आग एक छोटी सी आग से शुरुआत हुई है, वो कभी एकदम भयंकर आग नहीं होती। अगर उस आग को इनिशियल स्टेज पे ही, प्रारंभिक स्थिति में उसको बुझा दिया जाए तो
1: जी
0: वो आग तुरंत काबू हो जाती है। अगर वहां घबरा गए या भाग गए कभी इस आग
1: हाँ
0: लगी,
1: जी हाँ
0: तो
1: जी
0: वहां वो आग एक बहुत भयंकर रूप धारण कर सकती है और पूरे जान और माल का नुकसान कर सकती है।
1: जी यानी कि संयम की बहुत आवश्यकता है।
0: जी मैम,
1: जी, तो देखिए धर्मचंद शर्मा जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी, वनों को आग से कैसे बचाएं इसके बारे में। इन सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
2: किसान भाई, अभी आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी सुनी, विषय था वनों को आग से कैसे बचाएं। धर्मचंद शर्मा से बात कर रही थी निशा शर्मा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस ज्ञानवर्धक जानकारी से अवश्य ही लाभ उठाएंगे। और अब जय जी, चलते चलते किसान और बागवान भाई बहनों को फिर से सुनाते हैं एक प्यारा सा लोकगीत। गायक कलाकार है तारा कोमल।

0: किसान साथियों, तारा कोमल के गाए इसी लोकगीत के साथ अब कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है।
1: कल हम फिर मिलेंगे एक नया विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान का दूसरा चरण 1 जून से शुरू करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला सब्जी मंडी व्यापारिक जिला परियोजना व सिटी सेंटर परियोजना हमीरपुर के कार्यान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश। नगर निगम व शहरी निकायों के चुनाव के लिए प्रचार तेज। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल। चंबा जिला के भटियात उपमंडल में ककीरा के पास वाहन दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मृत्यु, 4 अन्य घायल। और बीती रात अंधड़ व वर्षा से प्रदेश के कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित। ऊना जिला में 800 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए अनेक कदम उठाए हैं और इसके खिलाफ एंटी चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान का दूसरा चरण 1 जून से 20 अगस्त तक चलाया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां पंचायत स्तर पर भी चिट्टा के खिलाफ

0: कार्रवाई की गई है।
1: प्रदेश में चिट्टा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। हिमाचल सरकार द्वारा एनफोर्समेंट, सप्लाई रिडक्शंस, डिमांड रिडक्शंस तथा हार्म रिडक्शन के सभी पहलुओं में पर एक साथ रूप से कार्य करना शुरू किया है। मुझे गर्व है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां पंचायत स्तर पर चिट्टा तस्करों एवं इसका नशा करने वालों की पहचान कर अब तक लगभग 12,000 व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश की 3600 पंचायतों में से 234 पंचायतों में चिट्टा के सेवन करने वाले पाए गए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चिट्टे में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और अभी तक 123 कर्मचारी इन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें से 31 को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है।
1: जो 123 के करीब सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, पुलिस में 21 कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए थे। पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के 13 है, एजुकेशन के 10 है, बैंकिंग सर्विसेज के 9 है, जेएसबी आईपीएच के 9 है, जो यहां आर्मी और नेवी में काम करते रहे होंगे उनके 8 है, एचआरटीसी के 8 है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 6 है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 6 है। टोटल 122 है, जिसमें से 31 को टर्मिनेट कर दिया गया है। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में लोग शामिल है, जब उनकी एडमिशन्स होगी, हर साल उनका चिट्टे का टेस्ट किया जाएगा।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिमला में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को एंटी चिट्टा अभियान के क्रियान्वयन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य जगत सिंह नेगी और अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिमला में सब्जी मंडी केंद्रीय व्यापारिक जिला परियोजना और हमीरपुर में प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार विश्व स्तरीय व्यापारिक और आर्थिक केंद्र विकसित कर रही है। उन्होंने आज शिमला में शहरी विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने, संस्थागत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक व्यावसायिक स्थलों, स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं व ग्रीन ब्लू सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से ये परियोजनाएं स्थायी राजस्व सृजन की दिशा में सहायक साबित होंगी। मुख्यमंत्री ने विभाग को इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 12 व 13 मई को कर्नाटक के मैसूर में आयोजित होने वाली पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए वे आज मैसूर पहुंचे, जहां कर्नाटक विधानसभा के अधिकारियों ने उनका परंपरागत व भव्य स्वागत किया। बैठक में राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश व लोकसभा के वरिष्ठ अधिकारी और 6 राज्यों के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस दौरान समिति विधानमंडल निकायों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों का एक समान मॉडल विषय पर मंथन करेगी। चंबा जिले के भटियात उपमंडल के तुनुहट्टी लाहड़ू मार्ग पर ककीरा के पास आज तड़के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 पर्यटकों की मृत्यु हो गई है और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मृतकों में गुजरात के 5 पर्यटक जबकि चालक मंडी जिले का निवासी था। ये पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे और मनाली से डलहौजी जा रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 4 नगर निगमों सहित 47 शहरी निकायों के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर समर्थन जुटाने में लगे हैं। सोलन नगर निगम की कुर्सी को बचाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया और रोड शो के माध्यम से वोट की अपील की। विनय कुमार ने दावा किया कि कांग्रेस को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और नगर निगम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत होगी।
2: डिफरेंट वार्ड में जाने का मौका मिला तो अच्छी पोजीशन में है और

0: लगभग हम 10 से 11 वार्ड यहाँ जीत रहे हैं। हमारे उम्मीदवार है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो दोनों ही बहुत अच्छी तरह से चुनाव को लड़ रहे हैं।
1: राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि मौजूदा राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण आम जनता त्रस्त है। पालमपुर नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान आज उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और महंगाई व अव्यवस्था से लोग दुखी हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि नगर निगम चुनाव में लोग भाजपा की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और भाजपा इन चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। नुक्कड़ सभा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान का आग्रह किया। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के आज अंतिम दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। मंडी जिला के विभिन्न उपमंडलों में आज जिला परिषद चुनाव के लिए करीब 123, सोलन में करीब 29 और ऊना जिला में 31 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे। कल 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। भाजपा चार नगर निगमों के चुनाव को लेकर अलग अलग संकल्प पत्र लाएगी। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि ये केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि सभी नगर निगमों के क्षेत्र के समग्र विकास का विजन डॉक्यूमेंट होगा। पार्टी ने दावा किया है कि ये संकल्प पत्र जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान कल 12 मई को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी में, भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार पालमपुर में और प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल धर्मशाला में संकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे। पार्टी ने दावा किया है कि नगर निगम चुनाव में जनता विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही की राजनीति को चुनते हुए भाजपा को समर्थन देगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात अंधड़ सहित बारिश, जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। ऊना जिले में तूफान के कारण बिजली के 886 ट्रांसफार्मर ठप्प हो गए हैं, जिससे कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित है। हालांकि विभाग के कर्मचारी बिजली बहाल करने में जुटे हुए हैं। जिले में कई स्थानों पर पेड़ गिरने से निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से 14 मई तक निचले व मध्यम क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना जताई है। पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार 4 लाख पेंशनरों के पेंशन व भत्ते जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी व अन्य भत्ते नहीं दिए गए हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में वित्तीय प्रबंधन चरमरा गया है और महंगाई भत्ते की 15% किश्तें लंबित पड़ी हैं।
2: 16 से लेके 2021 तक लोग सेवानिवृत्त हुए, उनकी आज दिन तक लीव इन कैशमेंट, उनकी ग्रेच्युटी, उनके जो ड्यूज थे, सरकार ने नहीं दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सरकार पैसे के फजूल खर्ची कर रही है, ये सारे का सारा पैसा प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों और कर्मचारियों का है। इस सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन वो इस तरह से चरमरा गया है कि इस सरकार को यही समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या और क्या नहीं करें। HRTC के पूर्व कर्मचारी हमारे साथ बैठ, अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है, आज कितनी तारीख हो गई आप।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान का दूसरा चरण 1 जून से शुरू करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला सब्जी मंडी व्यापारिक जिला परियोजना व सिटी सेंटर परियोजना हमीरपुर के कार्यान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश। नगर निगम व शहरी निकायों के चुनाव के लिए प्रचार तेज। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल। चंबा जिला के भटियात उपमंडल में ककीरा के पास वाहन दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मृत्यु, 4 अन्य घायल। और बीती रात अंधड़ व वर्षा से प्रदेश के कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित। ऊना जिला में 800 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप

0: सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, yeah. चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।
6: भारत माँ पर जब जब भी संकट आया, ऋषियों, मुनियों, विद्वानों और वीरों ने एक ही सपना देखा और उसे साकार किया।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
2: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा
1: FM।

आकाशवाणी एफएम शिमला आपने ट्यून किया है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बजे हैं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। नमस्कार दोस्तों, रात के इस सुहाने सफर में आप सबका स्वागत है और आज का ये रात्रि प्रसारण का सुरमई सफर आप तय करेंगे शैलजा चौहान के साथ। दोस्तों, बीते पलों की वो मीठी यादें जो कभी धुंधली नहीं।

पर थी। उन्हीं यादों को हम शुरू में पिरो कर लाए हैं। आइए फिर से जी लेते हैं वो पुराने दिन उन्हीं मधुर दिनों के साथ, और उन्हीं मधुर दिनों के साथ हम जिएंगे और सुनेंगे प्यारे प्यारे से गीत। ऐसे ही अनमोल लगभग के साथ हाजिर है कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं शमशाद बेगम के गाए इस गीत के साथ। फिल्म है 12 o'clock। गीत लिखे हैं मधुर सुल्तानपुरी ने और संगीत OP नैयर का।

लीजिए दोस्तों, अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में छाया फिल्म से। गीत है राजेंद्र कृष्ण के और संगीत सलील चौधरी का।

0: आप बने रहिए आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, आपको प्रोग्राम के बाकी के गीत सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत। दोस्तों अब समय है एक और सुरीले नगमे का जो अपने दौर का पहचान रहा है। हेमंत कुमार की आवाज में लीजिए सुनिए जाल फिल्म का ये गीत, साहिल धवन के बोल, एस डी बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। मंगलवार यानी 12 मई 2026 को प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बदलते मौसम में त्वचा में होने वाले रोग। श्रोताओ, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मंगलवार यानी 12 मई 2026 को प्रातः 8:45 से 9:15 के बीच फ़ोन नंबर 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म है मैं चुप रहूंगी। गीत राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत चित्रगुप्त का।

दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में शहीद फिल्म का ये गीत। प्रेम धवन के बोल हैं और प्रेम धवन का ही संगीत।

0: दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी गीत लीजिए सुनिए सहरा फिल्म से, इसे गाया है मोहम्मद रफी ने, हसरत जयपुरी के बोल हैं रामलाल का संगीत।
1: लगी मस्त नजर की कतार, हा हा हा, मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पांव, इन प्यार की राहों में, ओ इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए, तक में जिगर है बहार, मस्त नजर की कतार, मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पार, इन प्यार की राहों में, हो इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए, जख्म जिगर है बहार, हो मस्त

क्या थी अदा इस पे पिता हम तो हुए सवार। ओ मस्त नजर की कटार, मस्त नजर की कटार, अरे दिल के उतर गई पार।

अभी आप सुन रहे थे भूले बिस्तरे गीत 103.7 मेगाहर्ट्ज पर. आप है आकाशवाणी FM शिमला के साथ. 8:30 हुए हैं. लीजिए सुनिए फिल्म संगीत. दोस्तों, रात के सुहाने समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ दिल को छू जाने वाले यादों से भरे हुए गीत. तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल जले फिल्म के इस गीत के साथ. आवाज़ उदित नारायण की, जावेद अख्तर के बोल, अनु मलिक का संगीत.

दोस्तों, अब आ रही है एक और खूबसूरत नगमे की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। फिल्म है कच्चे धागे, बोल है आनंद बख्शी के और धुन तैयार की है नुसरत फतेह अली खान ने।

दोस्तों फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ @9 रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें,

0: प्रधानमंत्री ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: For the season of Kharif 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित

0: की गई है।
1: टू द अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
2: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई।

0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decade's biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।

आकाशवाणी एफएम शिमला आपने ट्यून किया है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 9:16 हो चुके हैं। लीजिए कार्यक्रम सुनिए एक फिल्म से। दोस्तों हमारी आज की फिल्म है दिल एक मंदिर। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, दिल एक मंदिर फिल्म 1963 में बनी और एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन श्री वी श्रीधर ने किया था और इसकी कहानी राज बलदेव राज ने लिखी। फिल्म में राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, राजकुमार और महमूद ने अभिनय किया और इनके साथ कुट्टी पद्मनी, शुभा खोटे, मनमोहन कृष्ण, अचला सचदेव और नागेश आदि कलाकारों ने भी काम किया। फिल्म के लिए गीत शैलेंद्र ने और हसरत जयपुरी ने लिखे और संगीत शंकर जयकिशन ने दिया। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सूची में 5वें स्थान पर रही। दोस्तों, ये फिल्म श्रीधर की तमिल फिल्म नैनीजल और आलम की रीमेक है। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस फिल्म का अगला गीत।

दोस्तों 11वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राजकुमार ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता था इस फिल्म में, और अर्जुन देव रश्क ने सर्वश्रेष्ठ संवाद का पुरस्कार जीता। मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और राजेंद्र कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मनोनीत किया गया था। इसके साथ ही कुट्टी पद्मनी को भी सम्मानित किया गया था। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। मंगलवार यानी 12 मई 2026 को प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है बदलते मौसम में त्वचा में होने वाले रोग। श्रोताओं, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मंगलवार यानी 12 मई को प्रातः 8:45 से 9:15 के बीच फ़ोन नंबर 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। सूचना समाप्त हुई। पर आप है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। रात के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन। दोस्तों, हर गीत किसी न किसी एहसास का आईना होता है। कहीं मुस्कुराहट, कहीं इंतजार, तो कहीं दिल की कहीं आवाज। इन्हीं खूबसूरत जज्बातों के साथ शुरू हो रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सिलसिला फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। जावेद अख्तर के बोल हैं शिव हरी का संगीत।

0: दोस्तों, प्रोग्राम के बाकी के गीत आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन। दोस्तों, गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हर नगमा दिल की किसी न किसी बात को ज़रूर बयां करेगा। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं जुदाई फिल्म का ये गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, कभी मुस्कान बनकर तो कभी याद बनकर ये गीत हमेशा हमारे साथ रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और दिलकश नगमा, प्रेम बंधन फिल्म से आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला से आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन। प्रोग्राम का अगला खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में। फिल्म है एक ही भूल।

दोस्तों आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं हम घर फिल्म से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गुलजार के बोल राहुल देव वर्मन का संगीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। रात के 10 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं गजलें।

दोस्तों, रात की खामोशी, चांदनी का हल्का सनूर और दिल को छू लेने वाली गज़लों का साथ, इन्हीं हसीन लम्हों के साथ सज चुकी है गज़लों की महफिल। इस महफिल का आगाज़ कर रहे खूबसूरत गज़ल के साथ, जिसे आवाज़ दी है अनूप जलोटा ने,

0: दोस्तों, कार्यक्रम की बाकी गजलें आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
2: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं गजलें। दोस्तों, हर शेर जैसे दिल की दबी हुई बात को आवाज़ दे जाता है। ये पेशे खिदमत है अगली गजल भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में।

सांस की नरमी, लफ्जों की मिठास और एहसासों की रवानी, इन्हीं रंगों से सजी है हमारी ये महफिल। सुनिए एक और दिलनशी गजल छाया गांगुली की आवाज़ में।

दोस्तों, हर गज़ल अपने साथ कोई ना कोई जज्बात ज़रूर लेकर आती है। कभी मोहब्बत, कहीं तन्हाई, तो कहीं मीठी सी याद। अब सुनते हैं अगली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे गजली 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। रात के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सदाबहार नगमे। इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे आकाशवाणी FM शिमला से। नगमे वही, अंदाज वही, और यादों का वो सुनहरा दौर, दिलों पर राज करने वाले वो सदाबहार गीत जो आज भी उतने ही ताज़ा है जितने अपने दौर में थे। पुरानी फिल्मों के अमर गीत, महान गायकों के दिलकश आवाज़ों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं पहला गीत अपना देश फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल, आर टी फरमन का संगीत।

दोस्तों, पुराने गीतों की मिठास कभी कम नहीं होती। हर बार सुनने पर ये और भी अपने से लगते हैं। सुनते हैं अगला नगमा अप्रैल फुल फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की, हंसराज जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमें। दोस्तों, संगीत का ये सुहाना सफर चलता रहेगा जहां हर गीत अपने साथ यादें लेकर आता है। पेश है अगला प्यारा सा गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। फिल्म है वक्त, साहिल धर्मी के बोल, रवि का संगीत।

सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से। दोस्तों, हर दौर बदल गया लेकिन इन गीतों का जो जादू है वो आज भी बरकरार है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनिए राजकुमार फिल्म का ये गीत, आवाज़ें सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जय किशन का संगीत।

दोस्तों, शुरू की मिठास और पुराने गीतों का जादू, यही तो है सदाबहार नगमे की पहचान। सुने कार्यक्रम का आखिरी गीत, बहारें फिर भी आएगी फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

दोस्तों, सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 MHz पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। रात के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।